ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 57 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। सुप्रभात आगरा।

0: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रातः के 6 बजे हैं। अब आप आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10

0: करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्री कृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिस्टर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाणी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सवेरे के 6:05 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ऋतु बदले, समय बदले, समाज की व्यवस्था बदले, मगर भक्तों का आराध्य कभी न बदले। आकाश पर छाए घने मेघों का बादलों से मयूर को नाचने पर बाध्य कर देता है। बिजली चमके या बादलों की स्वर्ण रेखा दमके, भक्त तो अपने आराध्य के कृपा में भीगने को तत्पर रहते हैं, और यही भक्तों के प्रेम का समर्पण है, यही उनकी भक्ति का दर्पण है।

मंगल महर्षि हनुमान अपने भक्तों का सदैव मंगल ही करते हैं। अष्ट सिद्ध और नौ निधियों के दाता पवन पुत्र महाबली हनुमान की जय जयकार हो।

0: दुख भंजन है नाम तुम्हारा, पवन पुत्र हनुमान, संकट मोचन कार्य तुम्हारा, कृपा करो हनुमान। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। इसमें आज आपने शोभा जोशी, प्रीति सागर, रतन मोहन शर्मा और साथियों के स्वर में भजन सुने। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं चिंतन। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार।
1: इतिहास के इस युग में पुरुष का वर्चस्व है, वो एक ऐसी संस्कृति गढ़ रहा है जिसमें शक्ति का बोलबाला है। नारी का स्थान इस संस्कृति में गौण है। यही कारण है कि आज संस्कृति में संतुलन नहीं और वो एक युद्ध से दूसरे युद्ध की ओर जा रही है। वर्तमान संस्कृति की प्रेरक शक्तियां विनाश की

0: शक्तियां हैं। हर ओर मानव जीवन की आहुति दी जा रही है। तेज रफ्तार से दौड़ने वाली ये एकांक की संस्कृति जगह जगह पर दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। समय आ गया है कि नारी अब संस्कृति में हस्तक्षेप करे। नारी का दायित्व धरती के समान है, जो न सिर्फ वृक्ष के बढ़ने में मदद करती है बल्कि उसके विकास को सही सीमा में भी रखती है। वृक्ष के चारों ओर शाखाएं फूटती हैं, लेकिन उसके सभी गहरे बंधन धरती में होते हैं और वहीं से वो जीवन पाता है। नारी मानव संबंधों का केंद्र है। परिवार ही मुख्यतः उसका संसार है। यहाँ वो व्यक्ति को सही अर्थों में व्यक्ति बनाती है। ये कार्य वो प्रेम और स्नेह के माध्यम से करती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पारिवारिक जीवन ही नारी का जीवन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शक्ति और संगठन ये अलग मानवीय संसार ही नारी का संसार हैं। ये मानवीय संसार परिवार से बाहर भी जीवन की अनेक गतिविधियों में देखा जा सकता है। शक्ति के गर्भ में पुरुष को सब मानवीय चीज़ों और रिश्तों का मानवीय मजाक उड़ाने की आदत हो गई है। यही कारण है कि आज नारी भी ऊंची आवाज में ये कह रही है कि वो नारी नहीं है। वो शक्ति और संगठन के क्षेत्र में खुद को पुरुष के समान सिद्ध करना चाहती है। उसे मानव जाति की जन्मदाती या गृहस्थ को चलाने वाली कहा जाता है तो उसके सम्मान और अभिमान को ठेस लगती है। उसे इस दुखद मानसिक स्थिति में लाने के लिए पुरुष ही जिम्मेदार है। आधुनिक संस्कृति ने अपने धन और शक्ति के कारण नारी का संसार उससे छीन लिया है। घर धीरे धीरे दफ्तर में बदलता जा रहा है। पुरुष मानो सारे संसार पर अधिकार जमाने पर आमादा है। नारी के स्थान उसकी भूमिका के संबंध में वो चिंतित नहीं। नारी का घर बिखर रहा है, लेकिन वो स्वयं बिखरी या टूटी नहीं है। पुरुष के अत्याचारों के बावजूद वह जिंदा है।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 8 आप सुनेंगे संसद में आज होने वाली कार्यवाही की समीक्षा। रात 9:30 कार्यक्रम होगा चर्चा का विषय है और रात 10 हम प्रसारित करेंगे संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल

कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद 6:35 पर हम प्रसारित करेंगे श्री रामचरित मानस गान। खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 7:15 आज हम आपको सुनवाएंगे श्री रतनलाल की वार्ता। विषय रहेगा कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी, महिलाओं में दूध का पर्याप्त मात्रा में न होना। वार्ताकार होंगी डॉक्टर कहकशां खान। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुनेंगे 7:31 पर। पूर्वाहन 11:00 कार्यक्रम होगा आज के कलाकार। ये कार्यक्रम आज अभिनेता संजय दत्त पर केंद्रित होगा। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे 11:30 पर। इस कार्यक्रम में आज के विषय हैं गुरु बिन ज्ञानन उपजे गुरु बिन मिटेन मोक्ष। दूसरा विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता जरूरी। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर संसार दिन में 1:15 पर। इसमें आज हमारी बहनें सुनेंगी चर्चा। विषय रहेगा प्रोजेक्ट टाइगर। क्रम रहेगा मेरी माटी मेरा देश, बात पते की। इसी कार्यक्रम में सुश्री निमृता सिंघल की कहानी प्रसारित की जाएगी। शीर्षक होगा गौरी।

युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:30 बजे हमारे युवा श्रोता सुनेंगे चर्चा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। वार्ता प्रसारित की जाएगी शिक्षा जगत में नई पीढ़ी के नए दृष्टिकोण, वार्ताकार होंगे सुश्री ऋतिका यादव। क्रम रहेगा आइए जाने जीने की कला और चलते चलते। ग्रामीणों कार्यक्रम में 6:00 बजे हमारे किसान भाई सुनेंगे वार्ता, विषय रहेगा समावेशी शिक्षा के आयाम। वार्ताकार होंगे राधा परमार। मंडी भाव बताए जाएंगे, मौसम की जानकारी दी जाएगी और चर्चा की जाएगी, विषय रहेगा रसायन मुक्त खेती। मजदूर मंडल कार्यक्रम में 6:30 बजे आप सुनेंगे चर्चा, विषय रहेगा टाइगर दिवस। इसी कार्यक्रम में काव्य पाठ प्रसारित किया जाएगा, कवि होंगे श्री समीर मिश्रा। क्रम रहेगा आज का प्रश्न ज्ञान सागर, कुछ सेहत टिप्स दिए जाएंगे और फिल्मी गाने भी प्रसारित किए जाएंगे। विविधा कार्यक्रम में 7:10 पर हम प्रसारित करेंगे श्री प्रकाश पंत की वार्ता, विषय रहेगा गुरु पूर्णिमा का सांस्कृतिक महत्व। कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश 7:31 पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर डॉक्टर विद्या निवास मिश्र जन्म शताब्दी वर्ष में उनको समर्पित विशेष परिचर्चा, विद्या निवास मिश्र विचार और विरासत। इसमें भाग लेंगे डॉक्टर राम स्नेही लाल यायावर, डॉक्टर शशि तिवारी, डॉक्टर जय सिंह नीरद और डॉक्टर नीलम भटनागर। कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड।

सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो

सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगी। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचान कर सीता जी सकुचा गई और सोचने लगी कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। संगीत संयोग थे सतीश भाटिया। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी आगरा से यह प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री रतनलाल की वार्ता। विषय है कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव।
1: किसान भाइयों, आप भलीभांति जानते हैं कि फसल को कीट आदि के प्रभाव से बचाने हेतु कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशकों का प्रयोग घरेलू मक्खी मच्छर, कागज कृमि, खटमल आदि के मारने में तथा फसलों पर लगने वाले कीटों जैसे माहू, चैंपा तथा तनाछेदक, फली छेदक कीट एवं अन्न भंडारण में लगने वाले कीटों जैसे घुन, पई, खपरा, सुंडी आदि में किया जाता है। कीटनाशकों का प्रयोग फसल पर तभी करना चाहिए जब फसल को हानि पहुंचाने वाले शत्रु कीट बहुतायत से हो गए हों तथा फसल को हानि की संभावना हो, अन्यथा एक दो शत्रु कीट दिखाई देने पर कीटनाशक

कीटनाशकों का प्रयोग हमारे मित्र कीटों जो कि शत्रु कीटों के लार्वों आदि को खा जाते हैं भी साथ में मर सकते हैं। फसल चक्र अपनाकर भी कीटनाशकों का प्रयोग कम किया जा सकता है तथा फसल कीटों के प्रकोप से बची रहती है। इसके अतिरिक्त कीटनाशक के फसल पर प्रयोग के बाद के अवशेष भी हमारी फसल यानी साग सब्जी पर भारी पड़ सकता है। अतः कम से कम तथा आवश्यक होने पर ही कीटनाशकों का प्रयोग करना उचित रहता है। कीटनाशक बाजार में विभिन्न ट्रेड नामों से मिलते हैं। कीटनाशकों की खरीद में सावधानी बरतना अति आवश्यक है। सरकार ने विभिन्न कीटनाशकों की तीव्रता को दर्शाने हेतु विभिन्न रंग को शीशी ट्यूब या डिब्बों पर प्रदर्शन करने का आदेश दिया है, जो कि बाजार में मिलने वाले कीटनाशकों के डिब्बों शीशी या ट्यूब पर बना होता है। जैसे कि लाल रंग अत्यधिक जहरीला, पीला अधिक जहरीला, नीला कम जहरीला तथा हरा सबसे कम जहरीला कीटनाशक दर्शाता है। विभिन्न रंगों के निशान कीटनाशकों पर दर्शाने का यही तात्पर्य है कि किसान भाई इनका प्रयोग करते समय उचित सावधानी बरतें तथा उनके हानिकारक प्रभाव से बचें। यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि सभी कीटनाशक विष हैं, अतः इनका प्रयोग खेती में समय पर तथा भली भांति सोच समझकर तथा निश्चित मात्रा में ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य तथा पशुधन के जीवन को भीषण खतरा संभवतः मौत के रूप में भी हो सकता है। किसान भाइयों, आपको कीटनाशक खरीदते समय बरतने वाली सावधानियों के बारे में भी अवगत करा दें। आप देख लें कि कीटनाशक पंजीकृत मान्यता प्राप्त दुकान से ही खरीदें। रसायन केवल सीलबंद शीशी बोतल या डिब्बों में ही खरीदें। सामान्यतः खुला कीटनाशक न खरीदें। कीटनाशक के डिब्बे या शीशी पर उसकी उत्पादन तिथि तथा समाप्ति की तिथि अवश्य जांच लें। खरीदे गए कीटनाशक की छपी हुई रसीद अवश्य ले लें, जिस पर आपके द्वारा खरीदे गए कीटनाशक का बैच नंबर व उत्पादन तथा समाप्ति की तिथि भी उक्त कीटनाशक के डिब्बों या शीशी पर अंकित के समान ही हो। इस प्रकार आप गलत कीटनाशक की खरीद से बच सकेंगे। सीलबंद कीटनाशक के प्रयोग करने पर भी यदि कीटनाशक प्रभावकारी नहीं है तो इसकी शिकायत आप उक्त कीटनाशक निर्माण कंपनी तथा कृषि अधिकारी को निवारण हेतु कर सकते हैं तथा उचित मुआवजा मार्गदर्शन हेतु भी पा सकते हैं। कीटनाशकों को गांव ले जाते समय अन्य अनाज फल साग सब्जी या सवारियों के साथ ढुलाई न करें। रास्ते में कीटनाशक शीशी आदि के अकारण दुर्घटनावश टूटने से कोई दुर्घटना हो सकती है, जिससे बचें। कीटनाशकों को ठंडे हवादार कमरे में स्टोर करें। कीटनाशकों के रखरखाव में नमी से भी दूर रखने की सावधानी बरतना चाहिए। बच्चों तथा पशुधन से भी दूर रखना चाहिए। कीटनाशकों का प्रयोग निश्चित मात्रा में तथा फसल पर आवश्यकतानुसार करना चाहिए। प्रयोग के समय बरतने वाली सावधानियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कीटनाशक की निश्चित मात्रा फसल का क्षेत्रफल आंकलन छिड़काव के लिए कर लेते हैं। उक्त कीटनाशक में मिलाने हेतु पानी की व्यवस्था रखते हैं। कीटनाशक को ड्रम या बाल्टी में घोलने हेतु कीप से डालना चाहिए। अपना मुंह भी हवा के रुख से दूर रख तथा अंगूठे से नाक मुंह तथा सिर ढक कर रखना चाहिए। निश्चित मात्रा में घोल बनाने हेतु उसे किसी लकड़ी की डंडी आदि से सावधानीपूर्वक हिलाना चाहिए तथा ध्यान रहे कि कीटनाशक घोल के छींटे आदि आपके शरीर पर न पड़े। पशुधन तथा छोटे बच्चों को इस क्रिया के दौरान दूरी रखना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। वैसे भी कीटनाशकों को पशुधन तथा छोटे बच्चों की पहुंच से दूर ताला चाबी में सुरक्षित रखना हितकारी है। कीटनाशकों का प्रयोग केवल संभवतः सुबह शाम ही करें। तेज धूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आपका कीटनाशक घोल तैयार है। सिर पर नाक तथा मुंह पर अंगूठा बांध लेना चाहिए तथा फसल पर छिड़काव हवा के रुख के अनुसार करना चाहिए। छिड़काव करने से पहले अपने हाथों पर दस्ताने या पॉलिथीन लपेट लेना अच्छा रहता है। कीटनाशक छिड़काव या बुरकाव करने के बाद उपकरणों जैसे रबर ट्यूब, पंप, बाल्टी आदि को साफ कर लेना चाहिए। पानी से भली भांति धोना चाहिए। अपने हाथ पैर भी साफ पानी से धोकर

0: साबुन से हाथ मुंह तथा संभव हो तो नहा लेना चाहिए। उपकरणों की सफाई तालाब में नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पशुधन को नुकसान हो सकता है। खाली शीशी तथा डिब्बे आदि खेत में 3-4 फीट नीचे गड्ढे में दबा देना चाहिए। यदि कीटनाशक प्रयोग के समय किसी मानव या पशु पर असर हो गया है तो मरीज को तुरंत उस स्थान से साफ जगह लिटा दें। पानी के छींटे मारने चाहिए। सांस लेने में दिक्कत हो तो उसे कृत्रिम सांस मुंह द्वारा दें। डॉक्टर को भी आवश्यकतानुसार अवश्य बुलाएं। मरीज को साबुन का पानी या एक चुटकी सरसों खिलाकर उल्टी करा दें तथा पानी, चाय या काफ़ी पिला दें। मरीज को विटामिन के मुंह से खिला सकते हैं या इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लगवा सकते हैं। अतः किसान भाइयों, कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानी बरतकर हानिकारक प्रभाव से बचा जा सकता है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री रतनलाल की वार्ता। विषय था कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आपको एक बार फिर याद दिला दें, आज पूर्वाह्न 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार। ये कार्यक्रम आज प्रसिद्ध अभिनेता संजय दत्त पर केंद्रित होगा।

सदाबहार फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे गीतांजलि कार्यक्रम में सुबह 8:45 पर और सुर सरिता कार्यक्रम में सुबह 10:00। पुराने फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे गीत मंजूषा कार्यक्रम में सुबह 9:25 पर। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत हम प्रसारित करेंगे 11:30 पर। इस कार्यक्रम में आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता जरूरी।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 6:55 होने को ही अब आप संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में बारी

0: लोकसभायाम् अद्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकस्य 20-26 इत्यस्य चर्चा पुनः आरप्स्यते। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि सन्ति। तेषु दोषसिद्धानां कृते अधिकतमः 10 वर्षीयः कारावासः, 10 कोटिरूप्यकपर्यन्तः अर्थदण्डः तथा सम्पत्त्यधिग्रहणञ्च सम्मिलितमस्ति। डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः विधेयकं प्रस्तुत्यनन्तरम् अवदत् यत् एतन्नूतन विधेयकं राष्ट्रस्य यूनां भविष्यस्य संरक्षणे प्रशासनस्य दृढसंकल्पं प्रतिबिम्बयति। चर्चायां भागं गृह्णन् कांग्रेस दलस्य सांसदः केसी वेणुगोपालः शिक्षाक्षेत्रे व्यापक परिष्कारस्य परीक्षाव्यवस्थायाञ्च समग्रपरिवर्तनस्य आवश्यकतां प्रतिपादितवान्। अन्यैरपि अनेकैः सदस्यैः चर्चायां सहभागिता कृता, किन्तु चर्चा अपूर्णैव जाता। अनन्तरं पीठासीनाधिकारी सन्ध्यारायः सदनस्य कार्यम् अद्य प्रातः 11 वादनपर्यन्तं स्थगितवती। उच्चतम न्यायालयेन ह्यः उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंग प्रकरणमधिकृत्य देशव्यापी विरोध प्रदर्शनेषु छात्राणाम् आरक्षकाणाञ्च आघात सम्बद्धानाम् आरोपाणां विषये सम्यक् निष्पक्षञ्च अन्वेषणम् आवश्यकम्। न्यायालयेन विरोध प्रदर्शनकाले गृहीतानाम् 18 वर्षात् न्यूनवयस्कानां तेषां छात्राणां मुक्त्यादेशः प्रदत्तः येषां पूर्वम् आपराधिकाभिलेखः नास्ति। न्यायालयेन सम्बन्धिताधिकारिभ्यः वैद्युतक अंकीय साक्ष्याणां संरक्षणमपि निर्देशितम्। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायां त्रिन्यायाधीशपीठं प्रदर्शनकाले आरक्षकबलस्य कथितानुचितबलप्रयोगसम्बद्धानां याचनानां श्रवणम् अकरोत्। न्यायपीठेन दिल्ली प्रशासनाय अभिलिखितानां FIR इति प्रकरणानाम् अन्वेषणं निरन्तरं कर्तुम् अनुमतिः प्रदत्ता। तथापि न्यायप्रक्रियायाः प्रवर्तनकाले प्रदर्शनरतानां छात्राणां विरुद्धं किमपि कठोरनिर्णयं न कर्तव्यमिति निर्देशः प्रदत्तः। सर्वोच्चन्यायालयस्य आदेशानुसारं तथा अवैधरीत्या नीट परीक्षापत्र प्रकाशनस्य विरुद्धं प्रदर्शनानां विषये सर्वेषां पक्षाणां मूल्यांकनं कृत्वा पश्चिमबंगाल प्रशासनेन विरोध प्रदर्शनेषु सम्मिलितानां छात्राणां विरुद्धं किमपि कार्याचरणं न स्वीकर्तुं निश्चितम्। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलिका हरजिंदर कौर महिलानां 71 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। अपरञ्च भारतीय मुष्टियोद्धा एम जादुमणि सिंहः ग्लास्गो नगरे पुरुषाणां 55 किलोग्राम भारवर्गे प्रागुपान्त्यचक्रे मुआले मुएंगो इत्येनं पराजित्य न्यूनातिन्यूनं कांस्य पदकं सुनिश्चितवान्। अनेन असौ उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 406.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और नमस्कार लखनऊ में अब बारी है कि स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बेहतरीन जानकारियां प्राप्त कर ले। तो आइए सुनते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हमारा आज का विषय है ऐसा कुछ जो देखने में जितना साधारण है उतना ही प्रभावशाली भी। हम बात कर रहे हैं ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की, एक ऐसा घोल जो शरीर को निर्जलीकरण से बचाकर जीवन रक्षक बन सकता है, विशेषकर और बरसात के मौसम में जब डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी और नमक की कमी
3: देने के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित शासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि भारत की जनता प्रत्येक निर्णय और नीति के केंद्र में रहनी चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक

0: लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को एक क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई। पीठासीन अधिकारी संध्या रॉय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान दिया है। BIMCO, ICS, Seafarer, वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार अब वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत का 12.16% का हिस्सा है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाजरानी मार्गों को प्रभावित कर रहे बढ़ते भू राजनैतिक तनावों के बीच संघर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलबीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. He emphasized the need to break both horizontal and vertical silos within the government so that departments function in close coordination and deliver integrated outcomes. The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. Union Minister Dr. Jitendra Singh moved the bill for consideration and passing in the House yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years.

0: fines of up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Moving the bill, Union Minister Dr. Jitendra Singh said the new legislation reaffirms the government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country.
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, A, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
0: Delhi government has approved the Delhi Lakshmi Yojana DLY, marking a significant step towards the economic empowerment and social security of women. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. The United States Central Command has said that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, forces launched multiple ballistic missiles last night in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the West Asia region. In a social media post, the U.S. Central Command said all Iranian missiles were successfully intercepted and the U.S. forces remain vigilant and at high state of readiness. The death toll in the brutal state crackdown in the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK has risen to 30 in the past 2 days, with many more injured. According to the local group Joint Awami Action Committee, JAAC, the Pakistani military fired on tens of thousands of peaceful protesters, killing 25 people on Monday and 5 more on Tuesday. The POJK is currently engulfed with a wave of protest against the Pakistani authorities since months. Pakistan's military and authority has been accused of inciting violence by disrupting peaceful protest, carrying out mass arrests and imposing a severe communication blockout by shutting down the internet to cut the region from the rest of the world. The unrest in POJK has spread to Mirpur after deadly violence in Rawalkot, with several social media accounts alleging that Pakistani security forces opened fire on civilians during the fresh protests. At the ongoing Commonwealth Games CWG 2026 in Glasgow, Gulveer Singh scripted history by becoming the first Indian athlete to win a medal in the men's 10,000-meter race event after claiming a silver. The reigning Asian champion clocked 27.49.78 at the Scotstown Stadium to finish behind Australia's Kee Robinson. However, Harjinder Kaur also added a silver to India's medals tally in women's 69-kilogram weightlifting event. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 7:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर कहकशां खान की वार्ता। विषय है महिलाओं में दूध का पर्याप्त मात्रा में न होना।
3: महिलाओं में दूध का पर्याप्त मात्रा में न बनना आजकल एक आम समस्या हो गई है। इसका कारण जानने के पहले मैं शॉर्ट में ये बताना चाहूंगी कि नॉर्मली दूध बनता किस प्रकार है, किस स्टेप में कमी रह जाने से दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है। नॉर्मली दूध बनना डिलीवरी के बाद ही शुरू होता है, लेकिन इसकी तैयारी प्रसव के पहले से ही शुरू हो जाती है। दूध बनने की फिजियोलॉजी को हम 4 स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले मेमोजेनेसिस, इसमें ब्रेस्ट की ग्रोथ बढ़ जाती है, ब्रेस्ट का साइज गर्भवती होने के साथ ही बढ़ने लगता है। ब्रेस्ट में दूध का बनना और सिक्रीट होना, जिसे हम लैक्टोजेनेसिस कहते हैं। वैसे ब्रेस्ट की एक्टिविटी तो गर्भावस्था से ही बढ़ जाती है, कभी कभी गर्भावस्था में ही कोलोस्ट्रम सिक्रीट होने लगता है और प्रसव के बाद यही अधिक मात्रा में रिलीज होता है। दूध निकलना प्रसव के तीसरे चौथे दिन बाद ही सक्रिय होता है। इस समय ब्रेस्ट दूध से भर जाते हैं और टेंस टेंडर वार्म हो जाते हैं। गर्भावस्था में ही प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है जो कि दूध बनाने के काम आती है, पर दूध का रिलीज होना शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण रुका रहता है। प्रसव के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की शरीर में कमी होने लगती है, इससे प्रोलैक्टिन हार्मोन की एक्टिविटी शुरू हो जाती है और दूध का सिक्रेशन शरीर में पाए जाने वाले अन्य हार्मोन से भी बढ़ता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इस तरह हम कह सकते हैं कि दूध की पर्याप्त मात्रा में होने के लिए शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन्स अति आवश्यक हैं। दूध का इजेक्ट होना या निकलना, जिसे हम गैलेक्टोकाइनेसिस कहते हैं, बच्चे के दूध पीने से शरीर में सकिंग रिफ्लेक्स होता है। इस क्रिया से दूध निकलता है। यह सकिंग रिफ्लेक्स शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा बढ़ा देता है जो कि मिल्क इजेक्शन और मिल्क लेटडाउन में हेल्प करता है। दूध का सिक्रेशन निम्न कारणों से कम हो जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट में दर्द होने से, दूध का अत्यधिक मात्रा में जम जाना या किसी साइकिक कंडीशन में। शरीर में दूध का बनना शुरू हो जाने के बाद अगर इजेक्शन बंद हो जाए तो ब्रेस्ट एंगॉर्ज हो जाते हैं और दूध का आगे बनना भी कम हो जाता है। गैलेक्टोपोएसिस, जिसे मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, दूध के बनते रहने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प करता है। बच्चे का दूध पीना, जिसे सकलिंग कहते हैं, दूध के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। इमोशनल डिस्टरबेंस होने से भी दूध का बनना कम हो जाता है। दूध का प्रेशर बढ़ जाने से भी दूध का बनना कम हो जाता है। इसलिए समय समय पर बच्चे को दूध पिलाते रहने से यह सही मात्रा में बनता रहता है। मिल्क प्रोडक्शन प्रसव के पहले हफ्ते में दूध की पर्याप्त मात्रा करीब 200 से 300 ml एक दिन में होती है और दूसरे हफ्ते के आखिर तक यह मात्रा बढ़कर 120 से 180 ml हर फीडिंग में हो जाती है। महिलाओं में दूध का पर्याप्त मात्रा में न बनना, अधिक कमजोरी, खून की कमी, समय समय पर दूध का न पिलाना, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिन महिलाओं में प्रसव ऑपरेशन के द्वारा होता है वह समय पर दूध नहीं पिला पाती हैं, कुछ दवाओं से और खाने पीने में परहेज से भी इन महिलाओं में दूध की पर्याप्त मात्रा नहीं पाई जाती है, वह महिलाएं इमोशनल डिस्टरबेंस की वजह से भी दूध ठीक से नहीं पिला पाती हैं। गर्भवती महिलाओं में प्रॉपर सलाह न मिलने पे, खासकर पहले बच्चे में ठीक से गाइडेंस नहीं मिल पाता है, ऐसी महिलाएं दूध नहीं पिला पाती हैं, जिससे इसका पर्याप्त मात्रा में बनना भी कम हो जाता है। दूध की पर्याप्त मात्रा में बनने के लिए कुछ तरीके और सलाह गर्भावस्था से ही इस्तेमाल करने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को दूध पिलाने के लाभ बताते रहने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ब्रेस्ट की देखभाल, कोलोस्ट्रम, जो शुरुआत का दूध होता है, इसे निकालने का तरीका बताना चाहिए। प्रसव के बाद बच्चे को 3-4 घंटे के अंतर पर 3-4 मिनट के लिए दूध से जरूर लगाना चाहिए। प्रसव के बाद खाने पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पौष्टिक आहार, जिसमें तरल पदार्थ की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अधिक मात्रा में दूध और प्रोटीन युक्त पदार्थ खाने के लिए देना चाहिए। दूध के एंगोजमेंट ना हो सके, इसके लिए दूध पिलाने से पहले मैनुअल एक्सप्रेशन, यानी कि हाथ से कुछ दूध पहले दबाकर निकाल देना चाहिए। इससे ब्रेस्ट का एंगोजमेंट कम हो जाता है। इस प्रकार समय पर सही सलाह मिलने से, थोड़ा सा खान पान पर ध्यान देने से तथा बच्चे की समय पर नर्सिंग करने से यह आम समस्या का आसान हल निकाला जा सकता है।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कहकशां खान की वार्ता। विषय था महिलाओं में दूध का पर्याप्त मात्रा में न होना। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं समूह स्वर में ये देशभक्ति परक गीत।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं समवेत स्वर में देशभक्ति परक गीत। 7:18 हुए हैं। देशभक्ति गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, प्रतीक्षा कीजिए।

0: मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम भावना विकसित करने पर विशेष बल देते हुए अधिकारियों से साझा उद्देश्य की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार के भीतर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाकार दोनों प्रकार की कार्यगत बाधाओं को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और एकीकृत एवं प्रभावी परिणाम सुनिश्चित कर सकें। जन केंद्रित सुशासन का महत्व बतलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के नागरिक ही सदैव शासन व्यवस्था के केंद्र में रहने चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि हर निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर कल लोकसभा में चर्चा हुई। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्यवाही को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कल कई बार बाधित हुई। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के सभी जिलों को कुल 2 करोड़ तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महाअभियान में मिशन से जुड़े 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तिरंगों का निर्माण करेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल नीट मुद्दे पर प्रदर्शन के मामले में गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्यवागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, PCR और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है।
3: अधिवक्ता कल्याण निधि की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाते हुए पहले किसी विद्वान अधिवक्ता के दिवंगत होने पर मात्र 1.5 लाख मिलते थे। हमने कहा भी 1.5 लाख बहुत कम राशि है, इस राशि को हमने 5 लाख रुपया किया। हम लोगों ने इसके जो कॉर्पस फंड है इसको हमने

0: 500 करोड़ रुपए का ही कॉर्पस फंड आपका बना दिया है। ये राज्य सरकार कोई भी रहे, इसके ब्याज से ही सारा काम चलेगा। अब तक हम 4000 ऐसे अधिवक्ताओं के परिवारजनों को 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध करवा चुके हैं।
1: प्रदेश भर में आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर विविध आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
2: सनातन दर्शन विचार एवं संस्कृति में गुरु शिष्य के रिश्ते को प्रतिष्ठित करने वाला पावन पर्व गुरु पूर्णिमा गोरक्षपीठ के लिए विशेष होता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव वह अवसर होता है जब गोरक्षपीठाधीश्वर शिवावतार एवं नाथ पंथ के आदि गुरु महायोगी गोरखनाथ सहित पीठ के अपने पूर्ववर्ती गुरुजन की पूजन स्तुति करते हैं। इसके बाद वह अपने शिष्यों और गोरक्षपीठ के श्रद्धालुओं को स्नेहाशीष से अभिसंचित करते हैं। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: आज से ही भारतीय जनता पार्टी वाराणसी से देशव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू करेगी। इसमें मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित कई प्रमुख लोग शामिल होंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पवित्र सावन माह के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए आने वाली महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए वाराणसी नगर निगम महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग आवास, शौचालय और फीडिंग रूम की व्यवस्था करेगा। अमरोहा में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हाईवे पर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक वाहनों की गति सीमित कर दी जाएगी। यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए हाईवे की एक साइड आरक्षित रहेगी। हापुड़ में भी कांवड़ यात्रा को लेकर 30 जुलाई से कांवड़ मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। मेरठ में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भारी वाहनों के लिए यातायात परिवर्तन लागू किया जा रहा है। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया कि हल्के और मध्यम श्रेणी के वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन 4 अगस्त की मध्य रात्रि से लागू होगा और 12 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। मेरठ के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच अयोध्या, बिजनौर, संभल, सुल्तानपुर, गौतमबुद्ध नगर और सहारनपुर समेत आसपास के जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम भावना विकसित करने पर दिया विशेष बल। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है यह विधेयक। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिग छात्रों को रिहा करने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर मांगा जवाब। और गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार ने उठाए हैं प्रभावी कदम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे तो कभी भी

0: किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और आज नमस्कार लखनऊ में आपके साथ हूं मैं नंदिनी मिश्रा। फिलहाल नमस्कार लखनऊ में अब समय हो गया है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। तो आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोता हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बांसुरी वादन। कलाकार है रवि राज शंकर। पहले सुनिए आपका बांसुरी पर बजाया राग हिंडोल।

7:34 हुए हैं। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सभी सुनने वालों को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। ये है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा है और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की जो परंपरा है, ये सदियों से चली आ रही है और हम ये मानते हैं, विश्वास करते हैं कि गुरु हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है। गुरु की महिमा अपरंपार है, क्योंकि गुरु हमारी अज्ञानता को दूर करते हैं। गुरु एक दीपक की तरह है और हमारा जीवन एक अंधकारमय मार्ग की तरह। तो जब हमारे जीवन में गुरु के रूप में जब कोई दीपक प्रकाशित होता है, तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन के मार्ग भी प्रकाशित हो जाते हैं। यूं तो गुरु का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बड़ा यानी दीर्घ, और अगर हम इस शब्द की व्याख्या करें तो ये भी कहा जाता है कि गो का अर्थ है अंधकार यानी अज्ञान, और रू शब्द का या अक्षर का जो अर्थ है वो है प्रकाश, प्रकाश रूपी ज्ञान। और इस तरह हम ये कहते हैं कि गुरु एक ऐसा प्रकाश है जो हमारे जीवन को प्रकाशमय करता है। गुरु के महत्व के बारे में संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस गान में लिखा है कि गुरुबिन भवनिध तरही न कोई, जो विरंच संकर सम होई। गुरु के बारे में एक श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भले ही कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों ना हो, पर वो गुरु के बिना भवसागर यानी

जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। कहते हैं कि जब से धरती बनी है उसी समय से गुरु का महत्व इस धरती पर है। आप चाहे वेद देख लीजिए, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता, इन सभी में गुरु के महत्व को दर्शाया गया है और उनका गुणगान किया गया है। यूं तो जब हम जन्म लेते हैं और जन्म के बाद जब थोड़ा सा समझते हैं तो हमारी माँ सबसे पहली गुरु होती है, उसके बाद हमारा पिता भी गुरु होता है। जब हम स्कूली शिक्षा के लिए जाते हैं तो वहाँ शिक्षक भी गुरु के समान ही माने जाते हैं और गुरु के समान ही उनको सम्मान दिया जाता है।

गुणगान किया गया है। यूं तो जब हम जन्म लेते हैं और जन्म के बाद जब थोड़ा सा समझते हैं तो हमारी माँ सबसे पहली गुरु होती है, उसके बाद हमारा पिता भी गुरु होता है। जब हम स्कूली शिक्षा के लिए जाते हैं तो वहाँ शिक्षक भी गुरु के समान ही माने जाते हैं और गुरु के समान ही उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन आज जो गुरु पूर्णिमा है तो यह हम उन गुरुओं की बात करते हैं जो हमें अपने जीवन में ईश्वर से जोड़ते हैं और उनका साक्षात्कार कराते हैं। शिक्षक हमारे लिए एक किताबी ज्ञान देते हैं, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, करियर को बनाने के लिए, सफल होने के लिए कुछ जो मानक हैं उनके आधार पर हमको शिक्षा देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो गुरु पूर्णिमा आज जो मनाई जाती है ये उन गुरुओं के सम्मान में है जो हमें ईश्वर का दर्शन कराते हैं, ईश्वर का ज्ञान कराते हैं और हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, हमारे स्वयं के बारे में वो बताने का प्रयास करते हैं। और असली गुरु वही है जो हमें अपने बारे में बताए। जिस दिन हम अपने बारे में जान जाएंगे, सीख जाएंगे कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, क्यों आए हैं, जब इतना सारा कुछ जान जाएंगे तभी हमारा ये जीवन सफल होता है। आज 29 जुलाई है और 29 जुलाई को हर साल हमारे यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देना, और बढ़ावा देने का प्रयास ये होता है कि इनका शिकार ना हो, अवैध शिकार बिल्कुल ना हो, किसी तरह का व्यापार ना हो और जो बाघों को नुकसान पहुंचाया जाता है उसको रोका जा सके। हमारे यहाँ पिछले कई वर्षों से निरंतर प्रयास हो रहे हैं और पिछले कुछ समय से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। 2010 में रूस में जो सम्मेलन हुआ था उसमें यह घोषणा की गई थी कि बाघ आबादी वाले देश 2022 तक बाघों की संख्या को लगभग दोगुना करने का प्रयास करेंगे। और इसी उद्देश्य को अगर ध्यान में रखा जाए तो भारत ने यानी अपने देश ने बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिसका हमें बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। साल 1973 में केंद्र सरकार ने बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया था और साथ ही शुरू किया था प्रोजेक्ट टाइगर। इसका उद्देश्य था देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करना। और प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू हुआ तब हमारे पास केवल 9 बाघ अभयारण्य थे, आज हमारे पास 58 बाघ अभयारण्य हैं। इस परियोजना के 53 साल पूरे हो गए हैं और इस बीच 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नामक एक वैधानिक निकाय की स्थापना भी की जा चुकी है। साल 2013 में शुरू गई कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा और इसके अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और जो लक्षित प्रजातियां थी उनके प्रभावी प्रबंधन के लिए जो न्यूनतम स्टैंडर्ड थे, मानक थे जो तय किए गए थे वो भी लगभग सभी पूरे किए गए और ये संरक्षण क्षेत्रों में मानकों के उचित मूल्यांकन को बढ़ावा भी देता है। देश में प्रत्येक 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विभिन्न राज्यों के वन विभागों और भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ साझेदारी में बाघों की गणना भी की जाती है। वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारे देश में 3600 से अधिक बाघ हैं जो वैश्विक संख्या का 75% हैं। शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में बाघों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। इसके अलावा झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पश्चिमी घाटों में भी बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि कहीं कहीं कुछ

अब भी आई है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है और इसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड का स्थान आता है। बहुत साफ है कि सरकार के समर्थन से ऐसे ऐसे प्रयास हो रहे हैं जिनसे इस वन्य जीव की संख्या में वृद्धि हो रही है, और ये आशा है, ये उम्मीद है, और अगर हम संकल्प ले लें तो ये निश्चित है कि आने वाले दिनों में बाघों के लिए अच्छे होंगे और उनकी संख्या में वृद्धि दर वृद्धि होगी।

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम।

0: आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा के साथ। एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद खास सूचनाएं खास आपके लिए।
1: सूरज की खिलती पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा कर आप सभी का स्वागत है।
2: गाता एक राम
3: भक्ति संगीत, प्रादेशिक संगीत, विविध भारती FM के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद DTH सेवा के संग।
1: आज की देश के किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी DTH के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप।
3: बस DTH सेवा का उठाए लाभ।
1: आपकी हर सांस के साथ साथ DTH सेवा 24 घंटे रहे आपके पास।
3: डिजिटल क्वालिटी का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, DTH सेवा है जहां।
0: आसपास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। श्रावण मास का महीना शुरू हो चुका है और पहला सोमवार 3 अगस्त को है। श्रद्धालु मास के दूसरे सोमवार को कांवड़ चढ़ाते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा कर निकलते हैं और इस वर्ष शहर में मेट्रो के साथ ही CM ग्रिड और नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं। बैरिकेटिंग के साथ सड़कों पर जगह जगह खुदाई की जा रही है। इसके मद्देनजर यातायात पुलिस ने इस बार सावन के प्रत्येक सोमवार के लिए मार्ग परिवर्तन के साथ ही विशेष व्यवस्था की है। प्रत्येक रविवार से मार्ग परिवर्तन की व्यवस्था लागू की जाएगी और मंदिरों के आसपास भारी वाहनों के आने पर प्रतिबंध रहेगा। इस वर्ष सड़कों की खुदाई और बैरिकेटिंग के चलते श्रद्धालुओं को अधिक परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जाम के हालात बन सकते हैं। इसके मद्देनजर यातायात पुलिस ने इस बार मार्ग परिवर्तन के साथ ही वैकल्पिक मार्ग के प्रयोग का भी सुझाव दिया है। इसके साथ ही व्यवस्था बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग ग्वालियर हाईवे जयपुर हाईवे में शहर से आने वाले वाहनों का मार्ग परिवर्तित रहेगा। DCP यातायात के अनुसार रविवार की रात से प्रत्येक चौराहे पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। आगामी कांवड़ यात्रा सावन मास के सोमवार एवं इस अवधि में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक पर्वों को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस लाइन में अधिकारियों की बैठक की गई। इसमें जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, इन्होंने श्रद्धालुओं को सुविधा, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बिजली विभाग को कांवड़ यात्रा पर परिक्रमा मार्ग में झूले तारों को दुरुस्त करने, नगर निगम को निर्बाध पेयजल और प्रकाश और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस आयुक्त के अनुसार कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। शिव मंदिर और परिक्रमा मार्गों पर मीट की दुकानों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। DJ की ऊंचाई और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मानकों का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए 2026 नियम अधिसूचित किए हैं। इसके अंतर्गत कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के पद पर भर्ती के लिए 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। देर रात जारी की गई एक अधिसूचना SSB जनरल ड्यूटी ग्रुप सी पदों से संबंधित 2011 के भर्ती नियमों का स्थान होती है। सशस्त्र सीमा बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF में से एक है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक सीमा सुरक्षा बल है। इसे 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल और 699 किलोमीटर लंबी

भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में नोडल बल द्वारा पूर्व अग्निवीरों के आरक्षित 50% रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। दूसरे चरण में शेष 50% रिक्तियों और पहले चरण में अधूरी रह गई रिक्तियों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए 50% रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी। पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50% रिक्तियों के लिए समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार नोडल बल द्वारा भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 01/2022 के अंतर्गत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम करीब 4.5 वर्ष बाद मंगलवार को जारी कर दिया। लिखित परीक्षा 15 विषयों में 3529 पदों के लिए कराई गई थी, लेकिन अंग्रेजी में पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्न पूछने का प्रकरण हाईकोर्ट में विचाराधीन होने से अंग्रेजी विषय के 557 पदों का परिणाम जारी नहीं किया गया था। शेष 14 विषयों के 2982 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। आयोग की वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से परिणाम देखे जा सकते हैं। भारतीय रेलवे में चिकित्सीय कारणों से अपनी मूल नौकरी बदलकर वैकल्पिक पदों पर भेजे जाने वाले हजारों रेल कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। अब वे पुरानी सेवा के अनुभव के आधार पर बिना किसी रुकावट के विभागीय परीक्षा में शामिल हो सकेंगे और प्रमोशन के साथ अपने करियर में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करेंगे। मेडिकल डीकैटेगराइज्ड होने से ठीक पहले पुरानी यूनिट में दी गई सेवा को भी विभागीय परीक्षाओं की पात्रता के लिए जोड़ा जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले रसोइये अब 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्याह्न भोजन प्राधिकरण प्रबंधकारिणी की 31वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह भी तय किया गया है कि रसोइये शिक्षकों की भांति संबंधित शैक्षिक सत्र की समाप्ति तक काम करते रहेंगे और अगले शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से पूर्व नए रसोइयों का चयन तय किया जाएगा। बैठक में एमडीएम में बच्चों को प्रत्येक शुक्रवार सूजी का हलवा दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। पोषण स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बैठक में पीएम पोषण योजना से आच्छादित सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक दिन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग ने रेलवे और मेट्रो क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों, इंजीनियरों, तकनीकी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 12 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑनलाइन तकनीकी प्रशिक्षण कोर्स शुरू किए हैं। ये सभी कोर्स ऑनलाइन और वीडियो आधारित हैं। इनकी अवधि 75 से 120 मिनट के बीच होगी। भारत के प्रतिभागियों के लिए प्रत्येक कोर्स की फीस ₹200 है और विदेशी प्रतिभागियों के लिए $100 निर्धारित की गई है। जनपद के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी 4 अगस्त की रात 12 बजे तक राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ने प्रयागराज वेरावल प्रयागराज स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। ट्रेन प्रयागराज से 6 अगस्त से 24 सितंबर तक प्रत्येक गुरुवार को और वेरावल से 7 अगस्त से 25 सितंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। ट्रेन प्रयागराज से गुरुवार को सुबह 10:10 पर और शाम 6:20 पर ईदगाह जंक्शन पहुंचेगी। भांडई आगरा कैंट सेक्शन में रेल फाटक संख्या 489 पर ट्रैक का अनुरक्षण कार्य होना है। पीआरओ के अनुसार रेलवे ने काम के लिए फाटक को 28 जुलाई की

इस सुबह से 31 जुलाई की शाम 6 बजे तक सड़क यातायात के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। और आसपास कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के बारे में कुछ सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार कृष्णा कुमारी निवासी गली नंबर 6 नंगला भरोरी देवरी रोड जनपद आगरा। कृष्णा कुमारी दिनांक 20 जून 2026 से अपने घर से लापता है। कृष्णा कुमारी की उम्र 26 वर्ष है। कद लगभग 157 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ है। कृष्णा कुमारी के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी थाना सदर बाजार जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार लवली पुत्री गोपीलाल निवासी नई आबादी टुंडपुरा भीम वाटिका के पास देवरी रोड। लवली दिनांक 25 जून 2026 से लापता है। लवली की उम्र 32 वर्ष है। कद लगभग 158 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ है, शरीर सामान्य है। लवली के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी थाना सदर बाजार जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक और सूचना के अनुसार वरुण सागर पुत्र पंकज कुमार सागर निवासी शहजादी मंडी जनपद आगरा। वरुण सागर दिनांक 18 जून 2026 से अपने घर से लापता है। वरुण सागर की उम्र 41 वर्ष है। कद लगभग 153 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ है, शरीर हष्टपुष्ट है, चेहरा गोल है। वरुण सागर के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी थाना सदर बाजार जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक और सूचना के अनुसार रुक्मणी निवासी नंगला भवानी सिंह बुंदू कटरा जनपद आगरा। रुक्मणी दिनांक 30 मई 2026 से अपने घर से लापता है। रुक्मणी की उम्र 32 वर्ष है। कद लगभग 153 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ है। रुक्मणी के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी थाना सदर बाजार जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आसपास कार्यक्रम समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 8 बजे ही अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई।

0: ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। यह विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
4: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्री कृष्ण देव रायलु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले

0: छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं।

0: अमेरिका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमेरिका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination, reviews future action agenda of ministries and departments, Lok Sabha to resume discussion on public examinations prevention of unfair means, Amendment Bill 2026 today, Delhi government approves Lakshmi Yojana to provide financial assistance of 2,500 rupees per month to every eligible woman. Death toll and brutal crackdown by Pakistani forces in POJK rises to 30 during past 2 days. Iran launches multiple ballistic missiles towards US forces in West Asia. US and Saudi forces carry out joint precision strikes against Iran-aligned groups in Iraq. And Gulveer Singh becomes first Indian to win silver medal in the men's 10,000 meter race at the Commonwealth Games. Harjinder Kaur also bagged silver medal in women's weightlifting event. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. We have more from a correspondent.
3: During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building.

0: के एजेंडे का जायजा लिया। इस मीटिंग में विकसित भारत के मकसद की समत पेशरफ्त में तेजी लाने पर तवज्जो मरकूज की गई। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने तमाम वजारतों और महकमों में टीम साजी पर बिलखसूस जोर दिया और अफसरान से अपील की कि वो एक मुश्तरक मकसद के एहसास के साथ काम करें। उन्होंने हुकूमत के अंदर उफकी और उमूदी दोनों तरह की रुकावटों को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि महकमे आपसी हमांगी के साथ काम करें और मरबूत नतायज फराहम कर सकें। अवाम को मरकज में रखने वाली हुक्मरानी की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत के अवाम हुक्मरानी के मरकज में रहने चाहिए। जनाब मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि तवानाई की सलामती, कौमी सलामती, इक्तसादी इस्तेहकाम और शहरियों की बहबूद से करीब से जुड़ी हुई है। जनाब मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ ही डिजिटल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी पर खास तवज्जो दी जानी चाहिए। वज़ीर आज़म मोदी ने उन हिकमत अमली वाले शोबों में पेशगी और फ़ाल मवासलात की अहमियत पर जोर दिया जहां भारत बड़े इकदाम कर रहा है ताकि ऐसे इकदाम के इर्द गिर्द फैली गलत मालूमात और बेबुनियाद खदशात का मुकाबला किया जा सके। इस मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी, अहम वजारतों और शोबों के सेक्रेटरीज और वज़ीर आज़म के दफ्तर के सीनियर हुकाम ने शिरकत की। आकाशवाणी न्यूज़ से आदित्य की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: लोकसभा में आज पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक तर्मीम बिल 2026 पर आगे बहस होगी। मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने कल ऐवान में यह बिल गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया। मजकूरा बिल में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक 2024 के एक्ट में तरमीम की बात कही गई है। इस बिल में कई अहम दफात को शामिल किया गया है। इनमें 10 साल तक की कैद की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और कसूरवार अफराद की इमलाक जब्त करना शामिल है। मुतालिका केसों में तेजी के साथ निपटाने की खातिर मस्कूरा बिल में कहा गया है कि हर रियासती सरकार और मरकज के जेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर मुकदमे की कार्रवाई के लिए खसूसी टास्क फोर्स अदालतें कायम करेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि थाने में मुतालिका जानकारी कलमबंद किए जाने के 2 महीने के अंदर अंदर इन मामलों की तहकीकात मुकम्मल की जानी चाहिए जबकि मुकदमे की कार्रवाई फर्द जुर्म दाखिल किए जाने के 3 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करना होगी। यह बिल पेश करते हुए मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए बिल में तलबा और मुल्क के नौजवानों की बहबूद के तहफ्फुज के तहत सरकार के पुख्ता अहद का इरादा किया गया है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर इल्जाम लगाया कि वो तालीम के शोबे के ताल्लुक से संजीदा नहीं है और वो हकीकी इस्लाहात लाना नहीं चाहती।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने मस्कूरा बिल को एक बड़ी तब्दीली लाने वाला कदम करार दिया और कहा कि मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहानात को यकीनी बनाने के लिए इस तरह का बिल वक्त का तकाजा है।
4: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने मुख्तलिफ इम्तिहानात के पर्चे लीक होने के मामले पर तश्वीश जाहिर की है। जनाब यादव ने कहा कि 2024 में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक नया एक्ट बनाए जाने के बावजूद इस साल नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा लीक हुआ। इधर कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर इल्जाम लगाया कि वो तलबा के मफादात का तहफ्फुज करने में नाकाम रही है और वो तालीमी निजाम को कमजोर कर रही है। दीगर अरकान ने भी बहस में हिस्सा लिया। इनमें एनसीपी, सीपीआईएम, वाईएसआरसीपी, आरजेडी, एआईएमआईएम और श्रोमणी अकाली दल शामिल हैं।

0: वो खवातीन जिनके कुनबे की आमदनी 25 लाख रुपए सालाना है इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगी।
1: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र सवा साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
0: भारतीय जनता पार्टी आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें यौमे पैदाइश के मौके पर गुरु पूर्णिमा के सिलसिले में पूरे मुल्क में श्री गुरु रविदास महाराज समरस्त संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। वाराणसी में सियर गोवर्धनपुर में संत रविदास की जाय पैदाइश पर इस मुहिम का बाजाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: आज बनारस के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास के जाय पैदाइश पर इस मुहिम का फौरी तौर पर आगाज होगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां पर दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। इस मुहिम के तहत संत रविदास के मुकद्दस जाय पैदाइश की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों और मुल्क की दीगर रियासतों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी इनेकाद किया गया है जिसमें तकरीबन 25,000 के शामिल होने का इम्कान है। प्रोग्रामों की ये फहरिस्त माघी पूर्णिमा और संत रविदास की योम पैदाइश यानी अगले बरस 20 फरवरी तक चलेगी। बीजेपी के सदर नितिन नवीन, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, रियासती बीजेपी सदर पंकज चौधरी समेत तमाम सरकर्दा लीडरान के इस प्रोग्राम में शिरकत करने की उम्मीद है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
0: केरलम में 14 में से 7 जिलों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रियासत में तेज बारिश का सिलसिला हफ्ते के रोज तक जारी रहने का इम्कान है। रियासत में आज सुबह सवेरे से औसत बारिश हो रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर इलाके में सरकार की वेश्याना कार्रवाई में गुजश्ता 2 दिन में मरने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। एक मकामी ग्रुप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान की फौज ने हजारों पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिससे पीर के रोज 25 अफराद मारे गए जबकि कल मजीद 5 अफराद हलाक हुए। उधर इंसानी हकूक की अलमबरदार तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ मोहलिक ताकत के इस्तेमाल की इत्तलात की आजादाना और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया है। साथ ही उसने पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि खित्ते में मवासलाती खिदमात बहाल की जाएं और वहां मीडिया और आजाद मुजाहिदीन को जाने की इजाजत दी जाए। अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेज ने मगरबी एशिया के खित्ते में तैनात अमरीकी फोर्सेज पर अचानक हमले की कोशिश करते हुए कल रात कई बैलिस्टिक मिजाइल दागे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा है कि ईरान के सभी मिसाइलों को कामयाबी के साथ मार गिराया गया और अमेरिकी फोर्सेस पूरी तरह चौकस और मुस्तैद हैं। अमेरिका ने यह दावा भी किया है कि गुज़श्ता 72 घंटे के दौरान ईरान के पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेस ने 30 ड्रोन हमले किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका की मरकजी कमान और सऊदी अरब की मुसल्ला फोर्सेज ने इराक में ये इल्जाम लगाते हुए हमले किए कि ईरान के पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेज ने ईरान से वाबस्ता ग्रुपों को अमरीकी फोर्सेज और सऊदी अरब के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले करने को कहा है। अमरीका और सऊदी अरब के लड़ाका हवाई जहाजों ने मशरकी इराक में कई लॉजिस्टिक्स और असलहा रखने के मकाम को निशाना बनाया। ग्लासगो में जारी 2026 के दौलत मुश्तरका खेलों में गुलवीर सिंह भारत के ऐसे पहले एथलीट बन गए हैं जिन्होंने तारीख रकम की है। गुलवीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर दौड़ में चांदी का तमगा हासिल किया। स्कॉटस्टोन स्टेडियम में इस्मायनास चैंपियन का मकाम ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद रहा। 29 साल भारतीय वेटलिफ्टर ने कम्बाइन वजन 2,227 किलोग्राम उठाकर भारत का 7वां हिस्सा हासिल कर लिया। इस मुकाबले में हरजिंदर ने भी दौलत मुश्तरका का लगातार दूसरा तमगा हासिल किया। उन्होंने 2022 में बर्मिंघम में कांस्य का तमगा हासिल किया था। इसके साथ ही ग्लासगो के इन खेल मुकाबलों में भारत के तमगों की कुल तादाद 12 हो गई है, जिनमें 2 सोने, 7 चांदी और 3 कांस्य के तमगे हैं। इसी दौरान 4 भारतीय मुक्केबाजों का सोने के तमगे हासिल करने का यकीन है। ये लोग अपने तमगों को चांदी और सोने के तमगों में बदलने के मकसद से अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे। जब ये लोग सेमीफाइनल्स खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे।

ये दो आवाजें थीं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। फिल्म का नाम था वक्त। गीत के बोल लिखे थे साहिर ने, धुन बनाई थी रवि ने। कार्यक्रम का अगला गीत एक बार फिर साहिर का लिखा हुआ है, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फिल्म का नाम है काला पत्थर, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

0: काला पत्थर, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार राजेश रोशन। कार्यक्रम का अगला गीत एक व्यावसायिक अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: गीतांजलि कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर है। गीतकार हैं कफील आजार, फिल्म का नाम है कर्तव्य, आवाज लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर की आवाज में कर्तव्य फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसे लिखा था कफील आजार ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीतांजलि कार्यक्रम का अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे लिखा है साहिर ने, संगीतकार हैं खय्याम, फिल्म का नाम है चंबल की कसम, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये था साहिर का लिखा गीत खय्याम की तर्ज पर। फिल्म का नाम था चंबल की कसम। थोड़ी सी बेवफाई, इस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत गुलजार का, संगीत एक बार फिर खय्याम का।

0: थोड़ी सी देवफाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने, धुन बनाई थी खय्याम ने। सदाबहार फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए।
1: आकाशवाणी का ये DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा है।
2: डायरेक्ट टू होम यानी DTH सेवा जो रहे आपके साथ हर दम हर क्षण 24 घंटे दे आपको देश विदेश की जानकारी।
3: आज की
1: करवाए भरपूर मनोरंजन भी।
4: दूरियां नजदीकियां बन गई।
2: देश के चाहे किसी भी कोने में रहे आप, न सताएगी आपको अपने राज्य की याद। DTH के माध्यम से अपने राज्य के प्रादेशिक समाचार, गीत संगीत अपने ही राज्य के आकाशवाणी केंद्र से सीधे सुन पाएंगे आप।
4: बिलपुर में तो
1: कब कहा कैसे जुड़ पाएंगे अपने राज्य के आकाशवाणी केंद्र से आप, इसके लिए सुनते रहिए कार्यक्रमों की रूपरेखा समय समय पर।
5: 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, प्रादेशिक समाचार 7 बजे आकाशवाणी भोपाल से और 8:30 बजे आकाशवाणी पर।
0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 9:15 हुए हैं, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और आजमगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक कुमार का।
1: भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में 11 करोड़ 32 लाख की लागत से भव्य बुद्ध थीम पार्क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसके उद्घाटन की बात कही जा रही है। यह पार्क बोध वृक्ष, 3D गैलरी और लाइट एंड साउंड शो जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बौद्ध दर्शन का अनूठा अनुभव प्रदान करेगा, जिससे कुशीनगर की वैश्विक पहचान मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा गौतम बुद्ध संग्रहालय के नजदीक विकसित इस पार्क को जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। आधुनिक तकनीक, आध्यात्मिक अनुभव और बौद्ध विरासत के अद्भुत संगम के रूप में विकसित यह थीम पार्क देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को भगवान बुद्ध के जीवन, दर्शन और करुणा के संदेश से जोड़ने का नया माध्यम बनेगा। जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज विकास खंड में जल जीवन मिशन के तहत जल चौपाल एवं जल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरखपुर क्षेत्र के मुख्य अभियंता VP सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ पेयजल के महत्व, जल संरक्षण और जल के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया। उन्होंने ग्रामीणों से पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता एवं नियमितता के संबंध में फीडबैक भी प्राप्त किया। ग्रामीणों ने यह बताया कि योजना के माध्यम से उन्हें नियमित रूप से शुद्ध पेयजल मिल रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जीवन शैली में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर जिले के रामकोला विकास खंड के टेकुआटार में बीते दिनों आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि
2: बेहतरीन सर्विस देंगे कुशीनगर को, अच्छे

0: एयरक्राफ्ट आने दीजिए, अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा है।
1: मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर से शीघ्र ही उड़ान के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसी सत्र से कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। इससे पहले उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर जनसभा को गोरखपुर के सांसद रवि किशन, कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे, राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, प्रदेश सरकार के कारागार व कुशीनगर जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान तथा अन्य स्थानीय विधायकगण ने संबोधित किया। कुशीनगर जिले में वृक्षारोपण महाअभियान के तहत बीते 12 जुलाई को जिले के विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 39 लाख से अधिक पौधरोपण किया गया। फाजिलनगर क्षेत्र में बौद्धकालीन कुकुत्था नदी के समीप वन विभाग की भूमि पर विशिष्ट वन की स्थापना की गई, जहां लगभग 17,000 से अधिक पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे, विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। कुशीनगर जिले में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कुशीनगर जिले में खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण हेतु टीकाकरण अभियान के 8वें चरण का शुभारंभ किया गया। अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने मोबाइल वेटनरी यूनिट एवं बहुउद्देशीय सचल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 22 जुलाई से चलने वाला यह अभियान 45 दिनों तक संचालित किया जाएगा, जिसके तहत जिले में पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कुशीनगर जिले में लगभग 1,73,000 से अधिक पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है।
2: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं आजमगढ़ जिले की हलचल। आलेख है नरेंद्र प्रताप का।
3: जिले में कृषि विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के परिसर में प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को आयोजित होने वाले किसान दिवस का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में जनपद के सुदूर क्षेत्रों से आए बड़ी संख्या में कृषकों ने प्रतिभाग किया। पिछले दिनों जिले में मानसूनी बारिश के चलते जिले में पानी में डूबकर होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। अपर जिलाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि मानसून के दौरान डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने जनपदवासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मानसून के आगमन के साथ ही जनपद आजमगढ़ में नदियों, तालाबों, पोखरों, झीलों, नहरों एवं अन्य जलाशयों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विगत दिनों प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डूबने की अनेक दुखद घटनाएं सामने आई हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं असावधानी, जलधाराओं की गहराई एवं तीव्र बहाव का सही अनुमान न लगा पाने तथा सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं। जिलाधिकारी आजमगढ़ के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि वो स्वयं तथा अपने परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा जलाशयों के समीप विशेष सतर्कता बरतें। मानसून के समय में जगह जगह जलभराव, गंदे पानी और नालियों के कारण संक्रमण जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे निपटने के लिए जिले में गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी जुलाई माह में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। शासन के निर्देश पर 1 जुलाई से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अभियान के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए संचारी रोगों से बचाव, स्वच्छता बनाए रखने तथा जन जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का संदेश भी दिया गया। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये एक संयुक्त अभियान है, जिसमें पंचायत विभाग साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग जागरूकता एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का संचालन कर रहा है। आजमगढ़ जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले कुल 49 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम

0: आयोजन विभाग भवन आजमगढ़ के सभागार में किया गया। मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने कहा कि बेटियों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने छात्राओं से उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित महिला एवं बालिका कल्याण से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कौशल विकास तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। छात्राओं ने सम्मान प्राप्त कर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे अपने जीवन का प्रेरणादायी क्षण बताया तथा भविष्य में और अधिक मेहनत कर जनपद एवं प्रदेश का नाम रोशन करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में तैनात समूह सखियों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण शिविर हरियौध कला केंद्र आजमगढ़ में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य जिले में अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यशाला में विकास खंड अहिरौला, अतरौलिया, हरैया, लालगंज, मार्टिनगंज एवं मेहनगर की समूह सखियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रशिक्षण के दौरान शासन की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों की महिलाओं को अधिकाधिक संख्या में स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के संबंध में समूह सखियों को आवश्यक दिशा निर्देश एवं विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसे न केवल महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर उद्यमशीलता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और अपने परिवार के साथ साथ समाज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। प्रदेश सरकार नारी शक्ति को विकसित उत्तर प्रदेश की धुरी मानते हुए महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं समग्र सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का ये अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को नई गति प्रदान कर रहा है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मंजूषा। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गीत पुरानी फिल्मों से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। इसे गाया है मुकेश ने, फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की गीत रचना, संगीतकार थे शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम था हरियाली और रास्ता। कार्यक्रम का अगला गीत गाया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, राजकुमार और प्रिया ने, फिल्म का नाम है हीर रांझा।

आप सुन रहे थे हीर राजा फिल्म का गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, राजकुमार और प्रिया की। गीतकार थे कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन। नौशाद की तर्ज पर आइए सुनते हैं शकील बदायूनी के बोल। फिल्म का नाम है राम और श्याम। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

राम और श्याम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे शकील बदायूनी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। गीत मंजूषा कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मदन मोहन की तर्ज पर राजेंद्र कृष्ण की गीत रचना। फिल्म का नाम है देख कबीरा रोया, आवाज तलत महमूद की है।

ये आवाज थी तलत महमूद की, फिल्म का नाम था देख कबीरा रोया। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार मदन मोहन। इसके साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत मंजूषा अब खत्म हुआ। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। 9:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संध्या शर्मा के गाए ब्रज लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली लोक रचना।

लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संध्या शर्मा के गाए ब्रज लोकगीत। आइए सुनते हैं एक और लोक रचना, कलाकार एक बार फिर संध्या शर्मा।

लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे संध्या शर्मा के गाए ब्रज लोकगीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। सभी सुनने वालों को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। संगीतकार ओपी नैयर, गीत SH बिहारी का, फिल्म का नाम है कश्मीर की कली, आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने SH बिहारी का लिखा गीत सुना। इसकी धुन तैयार की थी ओपी नैयर ने। फिल्म का नाम था कश्मीर की कली। कालीघटा फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: काली घटा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: चुपके चुपके फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, इसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत राहुल देव बर्मन का।

चुपके चुपके फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसेवता समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, मानव सभ्यता ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। यदि किसी एक खोज ने करोड़ों लोगों का जीवन बचाया है तो वो है टीकाकरण। ये केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं है बल्कि स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। चेचक है, पोलियो है, डिप्थीरिया है, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी जैसी अनेक गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण पाने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या है टीकाकरण, क्यों आवश्यक है, इस अभियान को सफल बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श के लिए आज आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियोज में उपस्थित हैं राज्य टीकाकरण अधिकारी उत्तर प्रदेश डॉक्टर अजय गुप्ता जी। डॉक्टर अजय, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे सुनने वालों को बताएं कि ये टीकाकरण क्या है।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन और धन्यवाद देता हूं आकाशवाणी लखनऊ का कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, सभी को पता है कि जब बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से तो माँ से कुछ ताकत लेके आता है, खून लेके आता है, शरीर की पूरी संरचना लेके आता है, या समय के साथ जो चीजें उसकी समाप्त होती हैं वो है उसके रोग से लड़ने की क्षमता। और इस रोग से लड़ने की क्षमता को अगर हमको किसी भी मानव शरीर में विकसित करना है तो इसके दो उपाय हैं, या तो उसको हम पैसिव तरीके से यानी खून के माध्यम से डाल दें, और या फिर दूसरा तरीका

0: कहा है कि उसके अंदर हम रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप करें, जिसको हम टीकाकरण कहते हैं।
1: जी,
0: विभिन्न बीमारियों के लिए देखा गया है कि अगर हम उनकी वैक्सीन जो हम लगाते हैं उसमें कुछ समय 4 से 6 सप्ताह लगता है और धीरे धीरे वो रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। आप सभी की जानकारी में ला दूं कि वैक्सीन बेसिकली कुछ नहीं होता, ये वो कीटाणु या रोगाणु होते हैं जिनकी हमने रोग उत्पादन करने की क्षमता बिल्कुल समाप्त कर दी है। तो हमारे शरीर में जब भी ये जाते हैं तो शरीर इनको अपना दुश्मन समझता है और इनके खिलाफ लड़ने की क्षमता डेवलप करता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब माँ से हमको प्राप्त होता है बच्चे के अंदर जो रोग से लड़ने की क्षमता, वो 3 से 6 महीने के अंदर धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो जरूरी है कि वातावरण में, आप भी जानते हैं, ढेर सारी किस्म के विषाणु और कीटाणु फैले हुए हैं, तो इसलिए जरूरी है कि ये वैक्सीनेशन समय पर प्रॉपरली और सही स्थान पे इसको जरूर लगाया जाए बच्चों के लिए।
1: डॉक्टर अजय, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 से 2025 के बीच जीरो डोज वाले बच्चे, यानी कि जिन्हें एक भी टीका नहीं लगा है, उनकी संख्या 2.36 लाख से घटकर 1.29 लाख हो गई है। ये कैसे संभव हुआ है?
0: देखिए, टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही ज्यादा इस पे तवज्जो दे रही है। और आप सभी को पता है कि हम लोगों ने 2023 में एक विशेष अभियान चलाया था माह जनवरी, फरवरी और मार्च में, जिस दौरान हमने 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को और गर्भवती माताओं को पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुहिम चलाकर हमने चिन्हित करने का प्रयास किया कि किन लोगों को टीका नहीं लगा हुआ है। और इन सारे लोगों को हमने 3 माह के दौरान इनको सभी को हमने टीका लगाया। और जीरो डोज की बात करें तो देखिए, बेसिकली क्या है कि अगर हम सर्वप्रथम कब बच्चा हमारे संपर्क में आता है जब उसको हमको टीका लगाना है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है जब 6 सप्ताह का बच्चा हो जाता है। आप जानते हैं, डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद वो बच्चा हो सकता है मायके में डिलीवरी कराया हो फिर अपने घर पे जाए, या फिर डिलीवरी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में कराया हो फिर घर पे जाए, तब उसे समझ में आता है कि नहीं, सरकारी सुविधाएं हमारे पास मुहैया है जहां पे निःशुल्क टीका प्राप्त होता है। तो ऐसे ही बच्चे जिनको 6 सप्ताह पे कोई भी टीका न लगा हो, इनको हम जीरो डोज बोलते हैं। और ये पहला अवसर होता है जब हमको अपने टीकाकरण सत्रों पे या हमारी जो एनएम बहन जी टीका लगा रही हैं उनके पास ये चिन्हित बच्चे हो जाते हैं। तो ये संख्याएं शुरू में बहुत ज्यादा थी, उसका कारण भी आप जानते हैं कि आपने देखा होगा 2020-21 के आसपास कोविड महामारी फैली हुई थी, उस दौरान काफी स्वास्थ्य सुविधाएं और प्लस टीकाकरण हमारे काफी बच्चे वंचित रह गए थे। तो वो संख्या काफी ज्यादा थी, तो उसके सपोर्ट के लिए हमारे गावी, एक होती है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव, इन लोगों ने सहयोग किया और हम लोगों ने इनको चिन्हित किया और विशेष अभियान चला के इन सारे बच्चों को हमने टीका लगाया। साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि डिजिटलाइज वे में, यानी कि ई कवच एक हमारा पोर्टल था उस समय और आजकल यूविन चल रहा है, इनमें सारे बच्चों को हम चिन्हित करते हैं। ये बच्चे उत्तर प्रदेश या भारतवर्ष के किसी भी स्थान पे चले जाएंगे, अगर एक बार इसमें चिन्हित हो गए तो उनको वहां टीका मुहैया हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि हर 3 से 4 महीने पे हम दस्तक अभियान चलाते हैं उत्तर प्रदेश में। सरकार की एक अलग मुहिम है जो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। इसमें हमारी आशा बहुओं के द्वारा घर घर जाके एक अभियान के तहत हम उनको जागरूक करते हैं कि टीका क्यों जरूरी है। उसके अतिरिक्त ये भी जागरूक करते हैं कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, उसके अलावा साफ सफाई के लिए जागरूक करते हैं। तो ये जागरूकता अभियान के लिए हम लोग इसके साथ साथ टीका के अभियान को भी हम लोग सम्मिलित करते हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो इन्हीं की वजह से हमारा जीरो डोज बच्चों की संख्या काफी ज्यादा घटी हुई है।
1: उत्तर प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण 10 साल पहले 51.1% था, जो अब बढ़कर 88.6% हो गया है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन से सरकारी पहल हैं?
0: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है जो पूरे भारत वर्ष में शायद ही किसी राज्य ने किया हो। और पहले भी जैसे हम लोग बीमारी स्टेट कहे जाते थे, आप सभी को पता है, अब वो बीमारियों का तमगा हट चुका है, बल्कि टीकाकरण के क्षेत्र में हम अब इस समय इंडिया को लीड कर रहे हैं। हमारे द्वारा चलाई गई मुहिम और जो हम लोग नए इनोवेशन कर रहे हैं, वो भारत सरकार उसको अपने ऊपर ले रही है और पूरे भारत वर्ष में लागू कर रही है। इस मुहिम के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि सन 2023 की जनवरी में हम लोगों ने एक मुहिम चलाया और समस्त सरकारी अस्पतालों में प्रत्येक कार्य दिवस पे जो हमारे शहरी क्षेत्रों में अस्पताल थे उनमें टीकाकरण का कार्यक्रम चालू कर दिया कि जब भी हमारी अस्पताल खुलेंगे सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, तो इसमें टीका लगाया जाएगा। पहला तो ये हमने कार्यक्रम किया। दूसरा, हमने अभी आपको बताया कि विशेष टीकाकरण अभियान के रूप में किया। उसके अतिरिक्त हम लोग प्रत्येक माह, प्रत्येक बुधवार और शनिवार को लगभग हर एक गांव में एक टीकाकरण का अभियान चलाया जाता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, VHND। इन दिवसों पे केवल टीकाकरण ही नहीं, समग्र स्वास्थ्य के विकास के लिए हम लोग उसमें फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज, मैटरनल हेल्थ की सर्विसेज, चाइल्ड हेल्थ की सर्विसेज, एडोलेसेंट वैक्सीनेशन, सभी कुछ मुहैया करा रहे हैं। और साथ में जागरूकता के तहत उनको हम लोग सिखा भी रहे हैं कि साफ सफाई क्यों जरूरी है, माहवारी के दौरान बच्चियों को कैसे रहना चाहिए, सारी चीजों पे हम लोग बात कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि पहले हम

0: सघन मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक मुहिम थी, उसमें मात्र 2 वर्ष के बच्चों को लिया जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने नई मुहिम चलाई और 5 वर्ष तक के समस्त छूटे हुए बच्चों को इनमें हम टीका के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया, और जिसको आज पूरे भारतवर्ष में 5 वर्ष तक के बच्चों को भी टीका लगाया जाता है, छूटे हुए बच्चों को।
1: वाह डॉक्टर जी, उत्तर प्रदेश में सभी बच्चों के पूर्ण टीकाकरण कराने में अभी बहुत सारी चुनौतियां होंगी, और कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं और उनसे कैसे निपटा जा रहा है?
0: देखिए, उत्तर प्रदेश ने समस्त चुनौतियों का बहुत अच्छी तरीके से सामना किया और बहुत अच्छा ही इस पे हम लोगों ने कार्य किया है। मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को, स्पेशली हमारी जो आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और एएनएम बहन जी हैं, जिनके द्वारा हर टीकाकरण सत्र से पहले घरों पे जाकर एक बार दस्तक दी जाती है कि भाई कल आपके गांव में टीका लगने वाला है। दूसरा, एक हम लोग डिजिटलाइज रिकॉर्ड हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग समस्त बच्चों का है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 57 लाख बच्चे प्रतिवर्ष जन्म लेते हैं और 67 लाख महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को हम लोग टीका लगाते हैं। तो इतने बड़े पूरे उसके मुहिम को हम लोग डिजिटलाइज कर चुके हैं, और उसके अलावा इसी के निगरानी के तहत अगर कोई बच्चा टीकाकरण से छूट जाता किसी महीने तो हम उनको पकड़ लेते हैं, फोन के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है, उसके घरों पे हमारी टीमें जाती हैं, अगर किसी कारणवश वो नहीं लगवाना चाहते तो उनको समझाने बुझाकर। आप देखिए तो शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर आप देखते हैं कि टीका नहीं लग पाता, स्लम बस्तियां होती, पेरी अर्बन होता है, शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन सारी चीजों के लिए हमने शहर के अंदर जितने भी अस्पताल उसमें प्रत्येक दिन टीकाकरण लगा रहे हैं। तो ये सारी मुहिम जो अगर हम समग्र रूप से देखें तो इन समस्त चीजों पे हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और काफी अच्छा हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है।
1: कई माता पिता को लगता है डॉक्टर कि टीके के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं या वो बच्चे की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित भी रहते हैं, आप उन्हें किस तरह समझाते हैं?
0: देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि जब भी बच्चे को सुई लगेगी तो थोड़ा दर्द तो होगा। अगर सुई शरीर के अंदर जा रही तो दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। कुछ टीकों में इसकी थोड़ा सा ज्यादा मात्रा होती है, किसी में कम होती है, तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। इसको माँ बाप को समझना होगा और हमारे कार्यकर्ता इनको समझाने का प्रयास भी करते हैं कि जब भी टीका देते हैं तो इन बिंदुओं पे जरूर ध्यान रखते हैं, बताते हैं कि इस टीके का क्या दुष्प्रभाव, यानी प्रभाव आ रहा है तो बुखार हो सकता है, उसके लिए हम लोग पैरासीटामोल के सिरप्स छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए गोलियां प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि जो भी माता पिता के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा होती है, हम हमेशा उनसे ये कहते हैं कि कभी भी आप सोशल मीडिया पे मत जाइए, कभी भी आप गूगल सर्च मत कीजिए। हमारे कार्यकर्ता लगभग हर एक गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, आशा बहुएं हैं, एनम बहन जी, उनसे आप बात करिए, पास के नजदीकी अस्पताल पे जाइए और उनसे बात कीजिए, कहीं भी भ्रम की स्थिति पैदा ना हो इसलिए इन लोगों से बात कीजिए और अपना जो भी मन में संशय है उसको दूर करिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी कुछ अच्छा कार्य कर रखा है और इसकी वजह से भ्रम की स्थिति काफी कम हो चुकी है उत्तर प्रदेश में।
1: डॉक्टर जी, 10 साल पहले 51% बच्चों का टीकाकरण हो रहा था जबकि अब लगभग 89% बच्चों का पूरा टीकाकरण हो रहा है। सरकार की इस उपलब्धि के बाद आप हर परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अपर मुख्य सचिव महोदय का, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, जिनके दिशा निर्देशन में ये उपलब्धि हम लोगों ने अर्जित किया है, और इसके लिए हम सारे अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिनकी लगन और मेहनत की वजह से आज उत्तर प्रदेश ने ये उपलब्धि हासिल की है। मैं समस्त जनता से, समस्त माता पिता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि देखिए, आप देख रहे हैं कि लगभग 88% बच्चे पूरी तरह से टीके से सुरक्षित हो चुके हैं। 11% बच्चों के अंदर कोई एकाध टीका नहीं लगा होगा या मन में संशय है, तो उसके लिए हमारी पूरी टीम उपलब्ध है, जिसके लिए आप कभी भी कोई सवाल जवाब कर सकते हैं, नजदीक के स्वास्थ्य केंद्रों पर जाके अपनी मन के संशय को दूर कर सकते हैं। टीका बहुत ही जरूरी है और इसलिए भी जरूरी है कि लगभग बच्चों में होने वाली मृत्यु को, हम एक तिहाई से ज्यादा मृत्यु को जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं उनको हम इन टीका के माध्यम से दूर कर देते हैं। और मैं आपकी सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जब हम लोग बाहर निकलते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी देखते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी देखते हैं, हमारे डॉक्टर साहबान खुद ही कहते हैं कि सर, आप लोग के टीकाकरण अभियान की वजह से ये टीका से होने वाली जितनी बीमारियां हमारे ओपीडी में नहीं आती हैं।
1: डॉक्टर, अंतिम प्रश्न, भारत में अब लड़कियों के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ है, अगर किसी की बेटी 14 वर्ष की है तो उसे क्या जानना चाहिए?
0: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं इसके लिए अपने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही बहुप्रशिक्षित, बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे कि ग्रीवा का कैंसर, जो बहुत ही खतरनाक है, महिलाओं में होने वाली दूसरी गंभीर कैंसर है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। अगर हम इस तरह से बात करें तो लगभग हर दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले में ग्रीवा के कैंसर से या सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं की मृत्यु होती है। उसके अलावा ये इन्फेक्शन जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, वो बहुत ही खतरनाक टाइप का इन्फेक्शन होता है। इसके माध्यम से लगभग नहीं लक्षण भी होते हैं अगर इन्फेक्शन हो जाता है बच्चियों में, और ज्यादातर ये 9 साल से लेकर जब बच्चियां 14 साल के बीच में या

0: उसके बाद भी इनका इन्फेक्शन होता है, और कई बार इसके जो रूप देखने को मिलते हैं, इनके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, 10 से 15 साल के बाद आते हैं। यानी कि शुरू में हम पकड़ नहीं पाते हैं कि इनमें इन्फेक्शन हुआ है। इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए HPV का वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। और देखिए, इस बार भारत सरकार ने इसको लाया है, और सबसे मुहिम बात, अच्छी बात यह है कि केवल सिंगल डोज आपकी बच्चियों को लगाना है। और भारत सरकार ने इसके लिए, हम लोगों ने उम्र जो निर्धारित की है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप होता है इम्यूनाइजेशन के लिए, उन्होंने 14 से 15 साल के बीच की बच्चियों के लिए लगाने का हो गया। इस समय मैक्सिमम बेनिफिट इन बच्चियों को होगा, और मैं यही चाहूंगा कि सभी माता पिता अपने जो भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको जरूर टीका लगाए। अभी ये बच्चियों के लिए ही उपलब्ध है, और टीके की कहीं कोई कमी नहीं, और मुफ्त में उपलब्ध है। मार्केट में इसका रेट अगर आप जानेंगे तो बहुत ही ज्यादा दुख होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका रेट है।
1: अच्छा, श्रोताओं, ये थे राज्य टीकाकरण अधिकारी उत्तर प्रदेश डॉक्टर अजय गुप्ता। डॉक्टर अजय, आपने टीकाकरण के बारे में विस्तार से इतनी सुंदर और सारगर्भित जानकारी हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई। आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ग्लोबल हेल्थ स्टडीज अमेजिंग इकोनॉमीज। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा, इस सेवा पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 10 चैनल, वो भी अपने टेलीविजन सेट पर बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, DTH पर आप सुन सकते हैं विविध भारती के रंगारंग कार्यक्रम बिल्कुल मुफ्त, कहीं भी कभी भी। आकाशवाणी की DTH सेवा का लाभ उठाएं। DTH यानी डायरेक्ट टू होम। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स, और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 10:30 और 15 सेकेंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शुजात हुसैन खां का सितार वादन। प्रस्तुत है सितार पर आपका बजाया राग अलहैया बिलावल।

अभी आप सुन रही थी सुजात हुसैन खान का सितार पर बजाया राग अलैया बिलावल। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार।

कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो की विशेषता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा, प्रेम भरा और मोहब्बत भरा नमस्कार। साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो। सिनेमा की रंगीन और झिलमिलाती दुनिया में सितारे जो बहुत चमकते हैं, मगर कुछ ही नाम ऐसे होते हैं जो महज नाम नहीं बल्कि एक पूरा दौर बन जाते हैं। एक ऐसा दौर जिसमें अंदाज है, बेपरवाही है, जिद है और अपने दम पर हर मुश्किल को पार करने का अटूट हौसला है। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है बॉलीवुड के उस बागी शहजादे के नाम जिसकी एक चाल में गजब का रौब है, जिसकी आंखों में बच्चों जैसी निश्चल मासूमियत है और तूफान का सुकून एक साथ बसता है। जब वो पर्दे पर मुस्कुराता है तो करोड़ों दिलों की धड़कनें थम जाती हैं और जब वो गरजता है तो सिनेमा घर तालियों के शोर से गूंज उठता है। बात चाहे 80 के दशक में रॉकी बनकर सिनेमा के आकाश पर छा जाने की हो, नाम के विकी बनकर हर आंख को नम कर देने की हो, या फिर हो मुन्ना भाई बनकर पूरी दुनिया को जादू की झप्पी से जीत लेने की, हर इंसान ने हर बार ये साबित किया है कि वो मिट्टी ही अलग है जिससे इस इंसान का वजूद तराशा गया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हम सब के चहेते बेमिसाल और हर दिल अजीज संजय दत्त की। तो थाम लीजिए अपने दिलों की धड़कनें और आ जाइए हमारे साथ यादों के उस गलियारे में जहां आज अगले आधे घंटे हम संजू बाबा की जिंदगी और उनके फिल्मी करियर के सबसे खास, सबसे सुरीले और यादगार पड़ावों की सैर करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल उससे पहले सुनते हैं ये सदाबहार गीत।

दोस्तों, 80 का दशक एक ऐसा दौर जब हिंदी सिनेमा अपनी पुरानी कीचड़ उतार कर एक नई करवट ले रहा था। उसी दौर में सिनेमा जगत के दो महान स्तंभों आदरणीय सुनील दत्त साहब और अजीम अदाकारा नरगिस जी के घर एक ऐसे चिराग ने जन्म लिया जिसे अपनी किस्मत की लकीरें खुद अपने हाथों से लिखनी थी और अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनानी थी। 24 मई 1981, ये वो तारीख थी जब फिल्म रॉकी थिएटर्स में रिलीज हुई और पर्दे पर एक लंबे चौड़े लंबे बालों वाले और गहरी नशीली आंखों वाले नौजवान ने अपनी बाइक पर सवार होकर कदम रखा। दर्शक बस देखते ही रह गए। ये सिर्फ एक स्टार किड नहीं था जो अपनी विरासत के सहारे आया हो, उसके अंदाज में एक अलग ही बेपरवाही थी, एक अनगढ़ कच्चापन और एक ऐसी आग थी जिसने युवाओं के दिलों में सीधे दस्तक दी। पहली ही फिल्म से संजय दत्त ने यह साबित कर दिया कि वो पर्दे पर केवल अभिनय करने नहीं आए हैं बल्कि दर्शकों के दिलों पर हुकूमत करने आए हैं। रॉकी की धमाकेदार सफलता के बाद विधाता, दो दिशाएं और हथियार जैसी फिल्मों ने संजय दत्त को एक ऐसे अभिनेता के रूप में स्थापित किया जो गहरे भावनात्मक और एक्शन से भरे किरदारों को बेहद सहजता से अपने भीतर उतार सकता था। और फिर आया साल 1986 जब महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म नाम रिलीज हुई। नाम का विकी भला किसे याद नहीं होगा। उस किरदार के भटके हुए पन, उसकी तड़प और उसके दर्द ने हर माँ की गोद और हर भाई के दिल को रुला दिया था। संजय दत्त ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक स्टाइल आइकॉन नहीं है बल्कि अभिनय के उस्ताद भी हैं। तो आइए नाम के उसी यादगार और भावुक मोड़ को महसूस करते हैं पंकज दास की मखमली आवाज में, इस दिल को छू लेने वाले सदाबहार गीत के साथ।

चिट्ठी आई है। जी हाँ, इस गाने में आज भी संभव है आप सब सुनने वालों की जो आंखें हैं उनके कोरों को नम कर दिया हो। यही तो ताकत है अभिनय की। आपकी आंखों के सामने इस गीत को सुनते सुनते जरूर एक पर्दा आ गया होगा जिस पर संजय दत्त की शक्ल आपको साफ दिख रही होगी। वो आपको अपनी मासूमियत से हंसा भी सकते हैं और अपनी आंखों की एक नमी से आपको पूरी तरह रुला भी सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं 90 के उस स्वर्णिम दशक की जब बॉलीवुड में संजय दत्त का नाम सफलता की गारंटी बन चुका था। 90 का दशक आते आते वो सिनेमा के सबसे बड़े, सबसे डैशिंग और सबसे भरोसेमंद एक्शन हीरो बन गए थे। फिल्म थानेदार हो, सड़क हो, योद्धा हो या फिर हो साजन, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों की लड़ी सी लग गई थी। और फिर आया साल 1993 जिसमें वो ऐतिहासिक फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया निर्भीक अध्याय लिख दिया वो आई, और फिल्म का नाम था खलनायक। सुभाष घई के शानदार निर्देशन में बनी फिल्म खलनायक में संजय दत्त ने बलराम प्रसाद उर्फ बल्लू का किरदार निभाया। ये एक ऐसा ग्रे शेडेड बागी किरदार था जिससे नियम कानून के तहत दर्शक नफरत करना चाहते थे, लेकिन संजू बाबा तो ठहरे संजू बाबा। उनके जादुई अभिनय की कशिश कुछ ऐसी थी कि दर्शक उस खलनायक से ही बेपनाह मोहब्बत कर बैठे। उस दौर में उनका वो लंबे बालों वाला हेयर स्टाइल, उनका चमड़े का जैकेट पहनना, हाथ में बंदूक थामना और पर्दे पर बड़े रौब से नायक नहीं खलनायक हूं मैं ये कहना पूरे देश के युवाओं का स्टाइल स्टेटमेंट और एक राष्ट्रीय सनक बन गया था। और आज भी कई बार इस वाक्य को आप कई युवाओं के मुख से सुन सकते हैं। और जरा विरोधाभास तो देखिए, एक तरफ बल्लू जैसा खूंखार और आक्रामक बागी तो दूसरी तरफ फिल्म साजन का वो शांत शर्मीला बैसाखियों के सहारे चलने वाला दिल का शायर अमन। एक ही दौर में दो बिल्कुल विपरीत ध्रुवों जैसे किरदारों को इतनी शिद्दत और सहजता से जीना, ये सिर्फ और सिर्फ संजय दत्त के वश की ही बात थी। साथियों, पर्दे पर धमाकेदार एक्शन करने वाले और खलनायक बनकर तहलका मचाने वाले संजय दत्त का अपने दिल बेहद मोम जैसा नाजुक रहा है। उनकी निजी जिंदगी किसी उतार चढ़ाव से बढ़ी कहानी फिल्मी कहानी जैसी थी। 80-90 के दशक में संजय दत्त की दिलकश शख्सियत और उनकी उन नशीली आंखों का जादू ऐसा था कि उस दौर की कई मशहूर अदाकाराओं के साथ उनके अफेयर और अफसानों की चर्चा गॉसिप मैगजीन की सुर्खियां बना करती थी। टीना मुनीम के साथ उनकी पहली फिल्म रॉकी के दौरान शुरू हुई वो मासूम और पक्की दोस्ती, आगे चलकर 90 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों के साथ उनके अफेयर के किस्से, संजय दत्त का दिल हमेशा और हमेशा एक प्यार की तलाश में रहा। वह रिश्ते को बेहद शिद्दत और मासूमियत से जीते थे, लेकिन अक्सर तकदीर ने उनके साथ अजीब ही खेल खेला। कई रिश्ते शुरू होकर रास्ते में ही छूट गए तो कई जगह उन्हें गहरी तड़प और अकेलापन मिला। फिर भी उन्होंने अपने दिल की मिठास को कम नहीं होने दिया। प्यार की इसी तलाश और दिल टूटने के दर्द ने उनके अभिनय में वो गहराई और तड़प दी जो साजन और सड़क जैसी फिल्मों में सीधे दर्शकों के दिल में उतर गई। तो आइए, मैं तो चली अब साजन फिल्म का ये गीत सुनने, आप भी सुनिए, उसके बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी।

साथियों, समय का पंछी भी कितनी तेज उड़ान भरता है ना। बातों बातों में और गानों की सुहानी लड़ी में वक्त का पता ही नहीं चला, और आज के इस कार्यक्रम का सफर अब अपनी अंतिम मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। संजय दत्त का ये पूरा जीवन और उनका ये महान फिल्मी करियर हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात सिखाता है कि राहों में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आंधियां आएं या तूफान आए, अगर आपके दिल में अपने काम के प्रति सच्चा जुनून है, रगों में हिम्मत है और चेहरे पर एक बेपरवाह मुस्कान है

तो आप हर गिरती हुई बाजी को जीत में बदल सकते हैं। संजय दत्त सिर्फ एक मशहूर अभिनेता नहीं है, वो अपने आप में एक जज्बा है, एक अटूट एहसास है, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में चमकता रहेगा। हमें आशा है आपको ये कार्यक्रम और संजय दत्त के इस अनूठे फिल्मी सफ़र की संगीत में यादें पसंद आई होंगी, आपके दिलों में उतर गई होंगी। तो अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले जाते जाते संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म रॉकी का ये बेहद खूबसूरत और सदाबहार गीत आपके नाम।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। पूर्वाहन के 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ विशेषता शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

साथियों, आप सभी ने वो चित्र जरूर देखा होगा जिसमें शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत शेर को अपने हाथों से पकड़कर उनके दांत गिन रहे हैं। याद है ना? वो कोई सामान्य चित्र नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतीय सभ्यता को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास है। ये वही भरत हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का अर्थ होता है ज्ञान की खोज में लगे रहना, और ऐसे विरले ही होते हैं जो गुरु बिन ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन एक औसत मनुष्य को गुरु बिन ज्ञान कहाँ? और जैसा कि कबीर कह गए हैं कि गुरु बिन ज्ञान न उबरे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। उन्हीं भरत के वंश में अनेक पीढ़ियों के बाद एक ऐसे ऋषि का जन्म हुआ जिन्होंने वेदों के विशाल ज्ञान को संकलित कर चार भागों में बांटा, और इसी कारण वो आदि गुरु भी कहलाए, और वेदों के संकलन के कारण वो वेदव्यास कहलाए। उनका असली नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास था। उन्होंने अपने परपोतों की कथा को महाभारत इस नाम के विशाल ग्रंथ में वर्णित किया, और संपूर्ण वेदों और उपनिषदों के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण के मुख से विश्व के समक्ष प्रस्तुत करवाया, जिसे आज हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। इस कारण वो भारतीय ज्ञान परंपरा के स्तंभ माने जाते हैं और गुरु परंपरा के आदि गुरु। एक गुरु अगर मनुष्य रूप में प्राप्त हो तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं, लेकिन गुरु तो गुरु हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगर आपके अंदर वो जिज्ञासु बैठा है जो सत्य ज्ञान और मोक्ष पाने को तत्पर है, या फिर यूं कहूं कि सत्य जानने की जिज्ञासा करने वालों के लिए तो पूरा विश्व ही स्वयं में गुरु है। विश्वम गुरु ममः। परंतु हमने तो सुना है कि गुरु वो है जो अक्षर ज्ञान देता है। बिल्कुल सही है, सही सुना है आपने। लेकिन जीवन यात्रा में जो भी कुछ भी सिखा सकता है या कुछ भी सिखा दे, वो गुरु ही होता है। जो भी ज्ञान का अंधकार दूर कर दे, वो गुरु होता है। अतः गुरु अनेक हो सकते हैं, जैसे अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुरु। उन्होंने धरती, वायु, आकाश, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इन सब को अपना गुरु माना। शायद ये गुरु हैरान ना करे, मगर एक अजगर, कबूतर, पतंगा, मछली, छोटे बच्चे, गणिका, ये सब भी उनके गुरु थे। आत्मज्ञान देने वाला सदगुरु एक होता है, क्योंकि एक सदगुरु के सानिध्य में आने पर किसी अन्य की आवश्यकता खत्म हो जाती है। गुरु के पास शुद्ध ध्येय के साथ जाना, सही आचरण करना, गुरु के समक्ष अपने अहंकार का समर्पण करना और विनम्रता महान ज्ञान की संभावनाओं के द्वार खोल देती है। क्या है वो महान ज्ञान जिसे पाने का आवाहन प्राचीन ऋषि करते आए हैं? ये वो बेहतर बता सकता है जो उसे प्राप्त कर पाया है। गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते, बल्कि वो जीवन जीने का दृष्टिकोण बदल देते हैं। गुरु जो है वो एक संस्कृत शब्द है, जिसकी यदि आध्यात्मिक व्याख्या करी जाए तो गु का अर्थ होता है अंधकार या अज्ञान, और रू का अर्थ होता है उस अंधकार को मिटाने वाला, यानी ज्ञान का प्रकाश। अतः गुरु वो है जो अज्ञान को दूर कर ज्ञान की ओर ले जाए। समय के साथ यही नाम शिक्षक बन गया, आचार्य के लिए भी प्रयुक्त होने लगा, और प्राचीन समय से आज तक भले ही गुरु का महत्व उनकी गरिमा में जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया हो, परंतु उनकी आवश्यकता कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष।

साथियों, गुरु शिष्य परंपरा भारतीय उपमहाद्वीप की अनवरत चली आ रही परंपरा है। चाहे प्राचीन काल में वेदव्यास और सुखदेव जी की हो, चाणक्य और चंद्रगुप्त की, द्रोणाचार्य और अर्जुन की, श्री भगवत पाद और आदि शंकराचार्य की हो, वैसे ही मध्यकाल में रामानंद और कबीर या निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, आधुनिक काल में देखा जाए तो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, और अगर अभी के उदाहरण देखे जाएं तो उस्ताद अलाउद्दीन खान और पंडित रविशंकर, पुलेला गोपीचंद और पीवी सिंधु, ऐसे बहुत सारे गुरु शिष्य परंपरा के उदाहरण हैं। आप देख सकते हैं कि गुरु शिष्य संबंध सिर्फ आध्यात्मिक सीमित नहीं है, बल्कि खेल जगत हो, संगीत हो, योग हो, नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में भी उतना ही जीवंत है। एक गुरु को उसका शिष्य महान बनाता है, एक गुरु का नाम उसका शिष्य रोशन करता है। इसलिए जितना महान शिष्य होगा, उतनी ही प्रसिद्धि, उतना ही यश उसके गुरु को मिलेगा। अगर स्वामी विवेकानंद इतने प्रसिद्ध ना हो पाते तो शायद रामकृष्ण भी दक्षिणेश्वर की गलियों तक ही सीमित रहते। इसी तरह रमाकांत आचरेकर भारत भर में प्रसिद्ध ना हो पाते अगर सचिन तेंदुलकर कभी महान खिलाड़ी ना बनते। दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब आप फिर से उसी चित्र को याद करें जिसकी याद हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में दिलाई थी, वही चित्र जिसमें भरत शेर के दांत को गिन रहे हैं। वो चित्र बताता है कि उस वक्त मनुष्य और प्रकृति के मध्य कितना सुंदर तालमेल था, और शायद उत्तर भारत में भी शेर पाए जाते थे। यही शेर हम अशोक स्तंभों पर भी देख सकते हैं, जो ये बताता है कि शेर का महत्व कितना अधिक था। हड़प्पा की सील पर भी अनेक पशु अंकित हैं, जो शायद सेंधव क्षेत्र में पाया जाता हो, और चीता जिसका नामकरण ही भारत में हुआ था। लेकिन एक वक्त भारत में ही ये चीता विलुप्त हो गया था और आज हमें वही चीता विदेश से लेकर आना पड़ रहा है। साथियों, जो जैव विविधता है वो जीवन का आधार है और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जैव विविधता आखिर है क्या? साथियों, जैव विविधता का

अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं और उनके द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाली विविधता। ये विविधता आनुवांशिक स्तर पर हो सकती है, जैसे भारत में प्राकृतिक रूप से धान, आम और कपास की बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं, या फिर प्रजातियों के स्तर पर हो सकती हैं, जैसे भारतीय वनों में हाथी, मोर, बरगद और अनेक कीट पतंगे मिलते हैं। अगर पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर देखें तो वन, मरुस्थल, घास के मैदान, समुद्र तट, मैंग्रोव, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। ये विभिन्न प्रकार के पौधे, जीव जंतु सब मिलकर एक संतुलन बनाए रखते हैं, जैसे मधुमक्खियां परागण में सहायता करती हैं, हाथी जंगल में रास्ता बनाते हैं, वनों का निर्माण करते हैं, गिद्ध मृत पशुओं को खाकर प्रकृति की सफाई करते हैं, और अगर मैंग्रोव की बात करें तो वो तटीय कटाव को रोकते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीव ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, जी हाँ, मैं अपनी और आपकी ही बात कर रही हूँ, हमारी, हम ही तो हैं बुद्धिमान जीव, और हम ही ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जाने अनजाने में जैव विविधता को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया है। और वो बुद्धिमान जीव है मनुष्य, यानी मैं, आप, हम सब। इससे खाद्य श्रृंखला टूटी है, फसलों की उत्पादकता घट गई है, जल और मृदा की गुणवत्ता जो है वो भी घट गई है, प्राकृतिक आपदा का खतरा बढ़ गया है, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आजीविका पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है, केवल और केवल हमारी बुद्धि की वजह से। इसी कारण इन सब का संरक्षण जो है वो आज अत्यंत आवश्यक हो गया है। पर्यावरण और जैव विविधता को सबसे अधिक नुकसान हम इंसानों ने ही पहुंचाया है, जिसका परिणाम हाशिए पर पड़े लोग झेल रहे हैं। समाज साधन संपन्न और साधन विहीन में विभाजित होता जा रहा है। भले ही ये विभाजन पहले भी मौजूद था, पर आज अपने सबसे बुरे रूप में है। खैर, इस बारे में आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे याद आ रही है हाथी राजा की, तो क्यों ना उनको थोड़ा सा इस गीत के माध्यम से भी याद कर लिया जाए और थोड़ा सा जंगल की सैर भी कर ली जाए।

साथियों, एक ओर जहां हम मनुष्य समाज का एक हिस्सा हैं, शरीर के सुख के लिए एक से एक प्रयास कर रहे हैं और हमारा एक हिस्सा जीने को जूझ रहा है, तो क्या मनुष्य की प्रकृति पर की गई है हिंसा से ही मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित होगा? जब वही परम तत्व मनुष्य और प्रकृति दोनों में विद्यमान होगा, तो फिर हिंसा क्यों? जब एक पतित है, संकट में है, तो दूसरा बचाव और संरक्षण क्यों नहीं करता? एक डर और विश्वास में जी रहा है, तो दूसरा विश्वास पैदा क्यों नहीं करता? अपने पास जो भी है उसे बांटो, दूसरों पर विश्वास करो, प्रकृति के संरक्षण का प्रयास करो, क्योंकि मनुष्य के ना होने पर भी प्रकृति जीवंत रह सकती है। लेकिन सोच कर देखिए कि प्रकृति ना हो तो मनुष्य का अंत निश्चित है। ये ज्ञान, धनवान, शक्तिमान, विद्वान होने से नहीं, ये श्रद्धा, विनय और जिज्ञासा सहित गुरु के पास जाकर जाना जा सकता है। जैसे जैसे हम स्वयं से दूर होते जा रहे हैं, अपने जीवन को खोखला महसूस करते जा रहे हैं। हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति ने वनों को काटकर सीधी सपाट सड़कों और ऊंची इमारत का निर्माण तो कर दिया है, हमने प्रकृति को अपने घर के कुछ गमलों तक सीमित कर लिया है। बड़े पैमाने पर नदियां दूषित हो रही हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, पशु पक्षी निराशा से अपने घर सीमित होते हुए बस देख रहे हैं।

रहे हैं और हम उनके घरों में घुसते जा रहे हैं। संघर्ष बढ़ रहा है, बढ़ती जनसंख्या और उसकी बढ़ती जरूरतों का खामियाजा प्रकृति उठा रही है। जैव विविधता चिड़ियाघर के सामने लगी है। अगर हम स्वयं को संयमित कर लें, अंदर से संतोष पैदा कर लें और सभी जीव जंतुओं को प्रेम और करुणा के साथ देखना प्रारंभ कर दें, तो हम प्रकृति के साथ तालमेल से जीना शुरू कर सकते हैं और मनुष्य को एक सही मार्ग दिखाने वाला गुरु से बेहतर कौन हो सकता है। तो आप सभी को, बल्कि हम सभी को, अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर इस गुरु पूर्णिमा ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करना होगा और ये मिलेगा गुरु की मदद से। फिलहाल आप सुनिए इस चिड़िया का ये गुनगुनाता हुआ सा गीत।

साथियों, जैव विविधता और गुरु दोनों ही हमारे जीवन के लिए, हमें जीना सिखाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। जैव विविधता गुरु से ही संभव है। और अगर जैव विविधता में देखा जाए तो जितने भी जीव हैं, जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, सब हमारे गुरु हो सकते हैं। और समय पड़ने पर हमें कुछ ना कुछ उनसे सीखने को ऐसा ज़रूर मिल जाता है जो हमें जीवन जीने में सहायता करता है। जैसे अगर पेड़ पौधों को देखा जाए तो पेड़ पौधे हमें सिखाते हैं कि कैसे बिना किसी लालच के, बिना किसी आशा के हमें दूसरों पर छाया डालनी है, दूसरों को आराम देना है, दूसरों को सुकून देना है। ऐसे ही बहुत सारे जीव जंतु हैं। नदी हमें बहना सिखाती है कि कितने भी पत्थर आ जाएं क्यों ना आपके रास्ते में, लेकिन आप अनवरत रूप से बहते रहिए। तो आपका नज़रिया है, आप चाहें तो अपने नज़रिए को, अपने चश्मे को उस रंग में ढाल सकते हैं कि आप

आपको अपने आसपास की जितनी भी प्रकृति है या जो भी जीव जंतु हैं वो सब गुरु समान लगेंगे। और इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत संपन्न करने की रेडियो की विशेषता को दीजिए अनुमति। नमस्कार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
1: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
1: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
1: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
2: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
1: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
2: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
1: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
2: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
1: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
2: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
1: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
2: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है, यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
1: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
1: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
2: और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का

0: क्या अर्थ है?
1: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405-559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना, डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है जब जॉन लगभग 11 साल के थे।

शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को। जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था।

विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रेसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन
1: हाँ,
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद? उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे।
2: ओह।
1: फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए।
2: हाँ।
1: अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: हाँ, हाँ। इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
2: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन, लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमाओ, और घुमाओ। हाँ शाबाश शाबाश, ऐसे ही लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हमारी मेहनत रंग लाएगी।
1: हाँ।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ, आइए। यहाँ?
2: हाँ, आइए, इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर? हाँ, थोड़ा सा
3: इधर?
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ये तो कमाल हो गया, आंखों को विश्वास नहीं होता। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स अ मिरेकल।
4: शुक्रिया।

सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर्ड अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं और ये समय रहता है फिल्म संगीत के कार्यक्रम नए तराने का। आइए सुनते हैं सबसे पहले ये तराना जिसे हमने लिया है फिल्म खाकी से। आवाज़ें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, समीर के बोल हैं और धुन राम संपत ने बनाई है।

खाकी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। अगला जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म भूल भुलैया से। आवाज है केके की, सईद कादरी के बोल हैं और धुन प्रीतम ने बनाई है।

0: भूल भुलैया। जी हाँ, सुमका गीत अभी आप सुन रहे थे केके की आवाज़ में। बोल थे सईद कादरी के और धुन प्रीतम ने बनाई थी। अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, पर आप कहीं जाइएगा नहीं।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें।

0: मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी न जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। आइए अब सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में समीर के बोल। संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है धूम 2।

आइए अब सुनते हैं रोग फिल्म का ये तराना, जिसे गाया है केके ने, नीलेश मिश्रा के बोल हैं और धुन MM करीम ने बनाई है।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में समीर के लिखे बोल। धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने, फिल्म का नाम था दिल मांगे मोर। आइए अब सुनते हैं जब वी मेट फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं शान और उस्ताद सुल्तान खान की, इरशाद कामिल के बोल हैं और संगीत प्रीतम का है।

जब वी मेट फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। भारत ने होर्मूज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस महीने होर्मूज से गुजरने के दौरान जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहिया और एमटी मुंबासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। डॉक्टर शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति की समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बहाली और पुनः निर्माण के लिए केंद्र सरकार के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 823 अंक बढ़कर 77,588 तथा निफ्टी 236 अंक की वृद्धि के साथ 24,221 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर मरकजी हुकूमत के सेक्रेटरियों के साथ दूसरी आला सतही मीटिंग की सदारत की। उन्होंने खजाने और मईशत, तजारत और सनत और टेक्नोलॉजी से मुतालिक वजारतों और महकमों के मुस्तकबिल का लायमल का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: यह बैठक विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को और तेज करने पर केंद्रित रही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम भावना विकसित करने पर विशेष बल देते हुए अधिकारियों से साझा उद्देश्य की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार के भीतर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाकार दोनों प्रकार की कार्यगत बाधाओं को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और एकीकृत एवं प्रभावी परिणाम सुनिश्चित कर सकें। जन केंद्रित सुशासन का महत्व बतलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के नागरिक ही सदैव शासन व्यवस्था के केंद्र में रहने चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि हर निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: लोकसभा में आज अवामी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पर बहस होगी। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल ऐवान में बाला में पेश किया। बिल का तारुफ कराते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह नया कानून मुल्क के तलबा और नौजवानों की फलाह बहबूद के तहफ्फुज के लिए हुकूमत की गहरी वाबस्तगी को जाहिर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अज़्म का अदा करता है कि मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल से समझौता नहीं किया जाएगा। आज सुबह गुरु पूर्णिमा के मुबारक मौके पर गोरक्ष पीठाधीश्वर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नाथ फिरके की रवायत के मुताबिक शिव अवतार महायोगी गुरु गोरखनाथ की खसूसी पूजा की। गोरक्ष पीठाधीश्वर ने भगवान गोरखनाथ और दीगर गुरुओं को खराज अकीदत पेश किया और अवामी बहबूद के रास्ते पर उनकी रहनुमाई के लिए तहदिल से शुक्रिया अदा किया। गोरखनाथ पीठाधीश्वर ने भगवान गोरखनाथ और दीगर गुरुओं को खराज अकीदत पेश किया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं यौम पैदाइश के याद में आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुल्कगीर श्री गुरु रविदास महाराज हारमोनी रेजोल्यूशन मुहिम का आगाज करेगी। इस मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह आज सीर गोवर्धनपुर वाराणसी संत रविदास जी की जाय पैदाइश पर किया जाएगा। वाराणसी बैन अल-अक़वामी बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बत स्टडीज सारनाथ ने आज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बती स्टडीज कैंपस में आषाढ़ पूर्णिमा की तकरीबात का मुश्तरका तौर पर एहतमाम किया। मेहमान खसूसी नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर कहा कि भगवान बुद्ध का दरमियानी रास्ता अमन, आहंगी और इंसानी बहबूद का रास्ता। उन्होंने मजीद कहा कि आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की तालीमात के मुताबिक तस्लीम कर रही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मरकज उत्तर प्रदेश की डबल इंजन वाली हुकूमत भगवान बुद्ध से जुड़े यात्राओं और विरसे के मकामात को तरक्की देने के लिए मुसलसल काम कर रही है, जिससे हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से आने वाले यात्रियों के लिए आलमी म्यार की सहूलत को यकीनी बनाया जा सके। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार भगवान बुद्ध की महानिर्वाण के मुकाम कुशीनगर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा। गुरु पूर्णिमा, जिसे अर्ष पूर्णिमा भी कहा जाता है, बुद्ध मत में मजहबी अहमियत रखता है। सावन के मुकद्दस महीने में कांवड़ यात्रा के महफूज और पुरम इनकाद के यकीनी बनाने के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला में वसी इंतजाम किए जा रहे। वाराणसी आने वाले खवातीन कांवड़ियों की हिफाजत और सहूलत को तरजीह देते हुए बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए वाराणसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खवातीन अकीदतमंदों के लिए अलहदा रिहायश, बैतुलखला और खाने के कमरे फराहम करेगी। अमरोहा में कांवड़ यात्रा के महफूज तकमील को यकीनी बनाने के लिए 30 जुलाई से 28 अगस्त तक हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार पर पाबंदी रहेगी। 30 जुलाई से हापुड़ के कांवड़ रास्तों पर भी रूट डाइवर्जन लागू किया जाएगा। मेरठ की जिला मजिस्ट्रेट वी के सिंह ने कहा कि तमाम मुतल्लिका कांवड़ यात्राओं की यात्रियों की मुकम्मल करने के लिए तालमेल कर रहे हैं। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश रियासती देही रोजी रोटी मिशन ने रियासत के तमाम अजला के लिए कल 2 करोड़ तिरंगे तैयार करने का हदफ मुकर्रर किया है। मिशन से वाबस्ता 50,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन इस बड़े पैमाने पर मुहिम में तिरंगे तैयार करेंगी। टाइगर्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। रियासत में पिछले कुछ दिनों में शेरों की तादाद में नुमाया इजाफा देखने को आया है। महकमा मौसमियात ने रियासत में 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग दी। इधर अयोध्या, बिजनौर, संभल, सुल्तानपुर, गौतमबुद्ध नगर और सहारनपुर समेत

0: पास के अजला में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार सखियों, कार्यक्रम घर संसार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी रेडियो सखी रचना। सखियों, हमारी आज की चर्चा का विषय है प्रोजेक्ट टाइगर और ये भारत में बाघों के संरक्षण के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की गई थी और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बाघों और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना और जंगलों के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है, क्योंकि सखियों जब जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी बाघ और दूसरे वन्य जीव और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। एक समय ऐसा था जब भारत में बाघों की संख्या बड़ी तेजी के साथ घट रही थी। शिकार, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आवास के नष्ट होने से बाघों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था और ऐसे में प्रोजेक्ट टाइगर ने बाघ अभयारण्यों की स्थापना, शिकार पर रोक, वन संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा दिया और इन प्रयासों के बाद आज भारत दुनिया में सबसे अधिक जंगली बाघों वाला देश है। और ये उपलब्धि बताती है कि यदि सरकार, वन विभाग और आम नागरिक मिलकर प्रयास करें तो वन्य जीवों का संरक्षण सफल हो सकता है। तो सखियों, ये तो हुई हमारी छोटी सी चर्चा प्रोजेक्ट टाइगर के विषय पर। सखियों, आगे बढ़ने से पहले फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।

वेलकम बैक सखियों, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट मेरी माटी मेरा देश की तरफ। और आज इसमें हम बात करेंगे एक ऐसी समाज सेवी की जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया। सखियों, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर एस जी सुशीलम्मा की, जिन्हें कर्नाटक की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। डॉक्टर सुशीलम्मा ने सन 1975 में सुमंगली सेवा आश्रम की स्थापना की थी और इन्होंने बहुत ही सीमित संसाधनों से इस सेवा कार्य की शुरुआत की, लेकिन इनके दृढ़ संकल्प और सेवा भाव ने इस छोटे से प्रयास को एक बड़े सामाजिक अभियान में बदल दिया। डॉक्टर सुशीलम्मा ने अनाथ बच्चों, बेसहारा महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आश्रय और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। और इनका मानना है कि समाज की सच्ची प्रगति तभी संभव है जब हर जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले। समाज सेवा के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2026 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया। सखियों, इनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि सेवा, करुणा और समर्पण से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। तो सखियों, हमें भी इनके जीवन से प्रेरणा लेकर मानवता की सेवा और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। सखियों, मानव सेवा ही सच में एक सच्ची सेवा है।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: सखियों, बचपन में दादी नानी से किस्से कहानी सुनना कितना अच्छा लगता था ना, और कहानी सुनते सुनते हम उस कहानी से इतना जुड़ जाते थे मानो हमारे ही बारे में बात हो रही है। तो चलिए एक बार फिर आपके बचपन की यादें ताज़ा कर देते हैं और आपको सुनवाते हैं ये कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं नम्रता सिंघल और शीर्षक है गौरी।
2: एक छोटा सा गांव था, वहाँ चारों तरफ धूमधाम और खुशी का माहौल था। गौरी और ओम की शादी हो रही थी। गौरी की उम्र 8 साल और ओम 10 साल का था। जिन्हें शादी का मतलब नहीं पता, उनका गांव की परंपरा के अनुसार बाल विवाह हो रहा था। विवाह के पश्चात गौरी ससुराल आ गई। उसे खेलने कूदने, लड़ने झगड़ने के लिए एक साथी मिल गया। दोनों दिन भर इसी तरह पूरा दिन काट देते। कुछ समय इसी तरह बीत गया। एक दिन दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, तभी ओम को एक जहरीले सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यहीं से गौरी का जीवन बदल गया और उस पर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा। घर वाले ओम की मृत्यु का कारण गौरी को ठहराने लगे, बात बात पर ताने देते, मारते पीटते, खाना नहीं देते, बुरा भला कहते और घर का सारा काम करवाते। बेचारी गौरी, जिसको किसी बात की समझ नहीं थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से उसके परिवार का व्यवहार इतना बदल क्यों गया। एक तो वह अपने साथी के खो जाने से वैसे ही अकेलापन महसूस कर रही थी और ऊपर से घर वाले परेशान कर रहे थे। बेचारी पूरा दिन रो रो के सब काम करती। गौरी के माँ बाप को जब यह पता चला तो वह उसे वहां से ले आए। घर में उसका एक बड़ा भाई श्याम भी था, जिसे गौरी का लौटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु गौरी अपने माँ बाप को पाकर बहुत खुश थी। लेकिन जब वह अपने माता पिता को रोते देखती तो उसे यह समझ नहीं आता कि यह रो क्यों रहे हैं। वे अपनी बेटी के दुख से दुखी थे।

लेकिन मासूम गौरी को यह तक नहीं पता था कि वह विधवा भी हो चुकी है। वह बहुत मेहनती और होशियार थी, अपने माता पिता को खुश रखने का पूरा प्रयास करती। इसी तरह समय कटता रहा। अब गौरी छोटी सी बच्ची से एक सुंदर युवती बन गई। उसका स्वभाव बहुत कोमल था। वह बहुत मेहनती थी, घर का काम, खेती बाड़ी का काम वह सब अकेले कर लेती, लेकिन उसका भाई उतना ही कामचोर था। जब उसके माता पिता गौरी की तारीफ करते तो वह चिढ़ जाता और उल्टा सीधा कहता और घर में झगड़ा करता। उसके व्यवहार से सभी दुखी रहते। उसकी पत्नी भी गौरी को सताने का कोई मौका नहीं छोड़ती और उसके विधवा हो जाने पर, माँ बाप के घर रहने पर ऐसे ऐसे ताने देती कि गौरी का दिल छलनी हो जाता। अब वह बड़ी हो गई थी, उसे सब कुछ समझ में आने लगा था। वह दिन भर रोती रहती, कुछ ना कर पाती। इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर उसके पिता ने घर का बंटवारा कर दिया और स्वयं गौरी के साथ रहने लगे। यह बात भी शाम को खल गई। उसने अपने पिता से कहा कि तुमने गौरी को अपना समझा और मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। अब मेरी भी आपकी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है। गौरी ही आपकी बेटी है तो वह ही आपका सब कुछ कर लेगी। श्याम के इस तरह के व्यवहार से और गौरी की चिंता ने उसके पिता को बीमार कर दिया। गौरी ने पूरी सेवा की, उधार लिया, इलाज करवाया, लेकिन सब बेकार। वह श्याम के पास भी गई, उसे पिता की अवस्था के बारे में बताया, लेकिन श्याम ने उसे जली कटी सुनाकर बेइज्जत किया। वह अपमानित होकर वहां से लौट आई। यह सब देखकर गौरी के पिता ने अपने मित्र जो गांव के सरपंच थे उन्हें बुलाकर कहा, मेरे जीवन का कुछ पता नहीं है, मेरे बाद इसके पिता आप ही हैं, क्योंकि श्याम से तो कोई उम्मीद है नहीं। मेरे बाद इसकी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। यह कहकर वह एकदम शांत हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी श्याम उन्हें देखने नहीं आया। उसने पिता का दाह संस्कार भी नहीं किया। गौरी ने ही अपने पिता का दाह संस्कार व अन्य क्रियाकर्म किए। अब गौरी के ऊपर अपनी माँ को संभालने की जिम्मेदारी थी। वह उनका पूरा ख्याल रखती, घर का सारा काम करके खेतों में काम करने निकल जाती। लेकिन पिता की मृत्यु के पश्चात माँ एकदम गुमसुम सी हो गई थी। श्याम का गौरी के प्रति कटु व्यवहार, गौरी का वैधव्य और उसके भविष्य की चिंता उन्हें खाई जा रही थी। पति का साया भी उठ चुका था। यह सब सोच सोच कर वह भी बीमार रहने लगी। उसका शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। गौरी के सामने समस्या यह थी कि वह घर से बाहर कमाने जाए या माँ की सेवा करे। फिर भी वह दोनों तरफ कुशलता से संभाल रही थी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। माँ ज्यादा बीमार हो गई, उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और कुछ दिनों में उनकी भी मृत्यु हो गई। अब गौरी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके मददगार सिर्फ सरपंच साहिब ही थे। गौरी ने उनसे उधार लेकर माँ का भी दाह संस्कार किया। इस प्रकार उस पर काफी कर्जा हो गया, जिसे चुकाना ही अब उसका उद्देश्य बन गया था। वह दिन रात मेहनत करती और धीरे धीरे अपना कर्जा चुका रही थी। तभी एक दिन सरपंच जी ने गौरी से कहा कि तुम्हारे पिता मुझ पर तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम पुनर्विवाह कर लो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन गौरी ने मना कर दिया कि वह पहले अपना पूरा कर्जा चुकाएगी, फिर तय करेगी कि उसे क्या करना है। और यह भी कहा कि अगर मेरी किस्मत में शादी का सुख ही होता तो मैं विधवा ही क्यों होती। अब मेरा पुनर्विवाह करने का कोई इरादा नहीं है। सरपंच जी चुप हो गए। धीरे धीरे करके कड़ी मेहनत से उसने कुछ सालों में अपना पूरा कर्जा चुका दिया। उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के कारण सभी गांव वाले उसकी तारीफ करते और उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार थे। लेकिन गौरी तैयार नहीं होती। एक दिन फिर सरपंच जी ने कहा, बेटी तुम मेरी बात से इनकार ना करो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। गौरी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, आपको मुझसे कुछ कहने में संकोच कैसा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। तब उन्होंने उसके सामने अपने पुत्र से शादी करने का प्रस्ताव रखा और यह भी बताया कि उनका पुत्र भी उसको पसंद करता।

0: करता है और शादी करना चाहता है। यह सुनकर वह अवाक रह गई, क्योंकि वह एक गरीब लड़की थी और वह उच्च कुल के, इसके अलावा वह बाल विधवा भी थी, जिसे कुछ लोग कुलच्छनी भी कहते थे। तब गौरी ने यह बात सरपंच से कही तो उन्होंने कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मैं तो गांव की बाल विवाह की परंपरा का भी विरोधी हूँ, और यदि तुम बाल विधवा हो तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है, मैं तो बस तुम्हारी हाँ सुनना चाहता हूँ। अब गौरी के पास इनकार करने का कोई मतलब ही नहीं था। उसके हाँ करने पर उसका विवाह सरपंच जी के पुत्र से हो गया और उसके कष्टों भरे जीवन में फिर से बहार आ गई।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी कहानी गौरी, जिसे प्रस्तुत कर रही थी नम्रता सिंगल। आशा करती हूँ ये कहानी आपके लिए ज़रूर प्रेरणादायक रही होगी। सखियों, अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट मुझे कुछ कहना है की, और आज इस सेगमेंट का विषय है गुरु से है ज्ञान। सबसे पहले तो मैं उन गुरुजनों को प्रणाम करूँगी जिन्होंने मेरे जीवन को संवारने में अहम योगदान दिया है। सखियों, जीवन में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और कहा भी गया है गुरु से है ज्ञान और ज्ञान से है सम्मान। गुरु केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन को एक सही दिशा और सही सोच भी प्रदान करते हैं। और देखा जाए तो हमारे जीवन में माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं, जो हमें संस्कार देते हैं। इसके बाद शिक्षक हमें शिक्षा, अनुशासन और जीवन के मूल्य सिखाते हैं। सखियों, एक सच्चा गुरु हमारे अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानता है और हमें अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना सिखाता है। और अगर वर्तमान समय की बात करें तो आज के इस डिजिटल युग में जानकारी तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन सही ज्ञान और सही दिशा एक गुरु ही दे सकता है। हमारे गुरु हमें केवल सफलता का रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि कठिन परिस्थिति में धैर्य, ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना भी सिखाते हैं। तो सखियों, इन विचारों के साथ ही आइए अपने सभी गुरुजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करें, उनके मार्गदर्शन को जीवन में अपनाएं और खुद भी ऐसे बने जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने।

सखियों, चलते चलते बात पते की। सखियों, आज के समय में केवल पढ़ाई पूरी कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। बदलती तकनीक, नए अवसर और तेजी से बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करना बेहद जरूरी है। हर रोज कुछ नया सीखने की आदत हमें आत्मविश्वासी बनाती है। चाहे कंप्यूटर सीखना हो, कोई नई भाषा, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई नया हुनर, हर नई स्किल हमारे व्यक्तित्व और करियर को नई दिशा देती है। वैसे भी सखियों, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ नया सीखना आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सीखने के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। बस जरूरत है सीखने की इच्छा और निरंतर अभ्यास की। तो सखियों, याद रखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदलता और सीखता है, वही सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो सखियों, इस नेक विचार के साथ ही आपसे विदा लेने का समय हो चला है। फिर कुछ नए विषयों के साथ अगली बार फिर मिलने का वादा करते हुए अपनी रेडियो सखी रचना को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मल्लिका पुखराज और ताहिरा सैयद की गाई हुई गजलें। लीजिए समात फरमाइए ये पहली गजल।

इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आज आपने मल्लिका पुखराज और ताहिरा सैयद की गाई हुई गजलें सुनी। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: ने कहा, विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों के संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए RSP सांसद NK प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौड़ने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता JP नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया।

0: उन्हें मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
1: झारखंड के अंदर एक TDPL एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि JPSC ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थालियां परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे? तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि CBI जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
2: JPSC बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो JPSC में धांधली हुआ इसको CBI जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद PP चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
3: प्रश्न है कि श्री PP चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हां कहे हैं,
4: हाँ।
3: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहे हैं, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, हां वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनःस्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
5: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सोराइदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
7: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और

0: काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
1: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
2: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
1: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये समय रहता है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अकील अहमद खान का राग भैरवी में गाया ये भजन।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अकील अहमद खान का राग भैरवी में गाया भजन। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का आगरा केंद्र। दोपहर के 2:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है आरजू फिल्म से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, हसरत जयपुरी के बोल है और धुन शंकर जयकिशन ने बनाई है।

आरजू जी हाँ, सुन का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आइए आप सुनते हैं महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हमराज से। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सवारा है रवि ने।

अभी आप सुन रहे थे हमराज फिल्म का गीत। आवाज़ थी महेंद्र कपूर की, साहिर लुधियानवी का लिखा गीत था और धुन बनाई थी रवि ने। आइए आप सुनते हैं उम्मीद फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, शकील बदायूनी के बोल हैं और संगीत रवि का है।

अभी जो गीत आप सुन रहे थे उसे हमने लिया था फिल्म उम्मीद से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, शकील बदायूनी के बोल थे और संगीत निर्देशन रवि का था। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, अब प्रस्तुत है लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत के साथ। इस गीत को संगीत से सवारा है आर्य बर्मन ने, आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। फिल्म का नाम है कालिया।

अभी आप सुन रहे थे आ गले लग जा फिल्म का गीत। गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, साहिल लुधियानवी के बोल थे और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। आइए अब सुनते हैं आर डी बर्मन के ही संगीत निर्देशन में गुलशन बावरा के बोल। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है खेल खेल में।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

खेल खेल में इस फिल्म के गीत के बाद आइए आप सुनते हैं कसमे वादे फिल्म का गीत। गीत को गाया है किशोर कुमार, आशा भोसले और अमित कुमार ने। गुलशन बावरा के बोल हैं और धुन आजी बर्मन ने बनाई है।

अभी आप सुन रही थी कसमी वादे फिल्म का गीत। गीत को गाया था किशोर कुमार, आशा भोसले और अमित कुमार ने। गुलशन बावरा के बोल थे और संगीत आदि बर्मन का था। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म।

संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन, आइए अब सुनते हैं दूसरा आदमी फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत राजेश रोशन का।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में दूसरा आदमी फिल्म का गीत। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन राजेश रोशन ने बनाई थी। इस गीत से पहले जो गीत आपने सुने उन्हें हमने लिया था फिल्म कालिया, आ गले लग जा, खेल खेल में और कस्मे वादे। कलाकार थे किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर, अमित कुमार और मोहम्मद रफ़ी। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:30 हुए हैं। हमारी इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं संपन्न होता है। अपने सांधिकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने को हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं।
1: एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है।
0: विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने की बजाय राजनीति कर

0: रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुँचाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से बात कर राहत कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि गृहमंत्री ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का एक राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को एक सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र थंका नायका, केरल भित्तिचित्र बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। आज रात महिला शॉटपुट फाइनल में मनप्रीत कौर खेलेंगी। वहीं ऊंची कूद के फाइनल में श्रीशंकर मुरली और लोकेश सत्यानंद चुनौती पेश करेंगे। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। हॉकी इंडिया ने आज एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। ये प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आईची नागोया में खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनते हैं हमारी इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। साथ ही जानकारी दी जाएगी कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। श्रोताओं, हमारी इसी सभा में

रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है, रात्रि 10 बजे संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और संध्या 8 बजे संसद समीक्षा। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा युववाणी शाम 5:30। इसमें आज के आकर्षण रहेंगे गुरु गोविंद दो खड़े विषय पर चर्चा होगी, शिक्षा जगत में नई पीढ़ी के लिए नए दृष्टिकोण विषय पर वार्ता प्रसारित की जाएगी, वार्ताकार होंगी रितिका यादव। आइए जाने क्रम में शब्दलोक विषय पर जानकारी होगी, जीने की कला क्रम में युवा श्रोता सुनेंगे सामूहिकता को दें अहमियत विषय पर जानकारी, चलते चलते जानकारी दी जाएगी आईबीसीए पर। शाम 6 बजे ग्राम्य लोक कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा रसायन मुक्ति खेती, राधा परमार की वार्ता प्रसारित की जाएगी समावेशी शिक्षा के आयाम, मंडी भाव

होंगे। मौसम की जानकारी के साथ ही लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। श्रमिक श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा मजदूर मंडल शाम 6:30 पर। इसमें टाइगर दिवस विषय पर चर्चा होगी। समीर मिश्रा का काव्य पाठ प्रसारित किया जाएगा। आज का प्रश्नकाल, ज्ञान सागर, सेहत टिप्स और फिल्म संगीत होगा। संध्या 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रकाश पंत की वार्ता, गुरु पूर्णिमा का सांस्कृतिक महत्व। कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश, संध्या 7:31 पर। इसमें गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर डॉ विद्यानिवास मिश्र जन्म शताब्दी वर्ष में उनको समर्पित विशेष परिचर्चा होगी, विद्यानिवास मिश्र विचार और विरासत। प्रतिभागी रहेंगे डॉ राम सनेहीलाल शर्मा यायावर, डॉ शशि तिवारी, डॉ जय सिंह नीरद और डॉ नीलम भटनागर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा एक और अनेक 8:15 पर और 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। ये थे हमारी इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और अब एक नजर कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:25 पर चिंतन में पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार प्रसारित किए जाएंगे। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे हर रोज की तरह 6:35 पर और 6:45 पर सुनेगा कार्यक्रम खेती की बातें। कल प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर पुनीत अग्रवाल की वार्ता प्रसारित की जाएगी, पेट रोगों से बचाव। प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल प्रातः 9:45 पर सुनेगा निर्मला चोपड़ा के गाए ब्रिज लोकगीत। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत प्रसारित किया जाएगा पूर्वाह्न 11:30 पर। इसमें कल के विषय रहेंगे मित्रों के साथ सहज होती जिंदगी, सच्चे मित्रों का सम्मान जरूरी और एक और विषय होगा मानव तस्करी मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या।

0: देव फिल्म की भक्ति रचना आप सुन रहे थे अभिजीत और साथियों के स्वर में। निदा फाजली की रचना को संगीत दिया था आदेश श्रीवास्तव ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: श्रोताओ, आज है बुधवार का दिन और बुधवार को हम गणेश जी का दिन मानते हैं, गणेश जी की स्तुति करते हैं। तो कार्यक्रम के आरंभ में हमने गणेश स्तुति की और चूंकि गणेश बुद्धिदाता हैं तो बुद्धि के साथ साथ विद्या का भी हम नमन करते हैं और वंदना सुनवाते हैं माता सरस्वती की, जिसे हमने लिया है आलाप फिल्म से। रचना माही राही मासूम रजा की है, आवाज लता मंगेशकर दिलराज कौर की है और संगीत जयदेव का।

बुद्धिदाता गणेश और विद्यादायिनी माँ सरस्वती की वंदना हमने सुनी। लेकिन दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु ईश्वर से भी ऊपर माने गए हैं। कहा भी गया है, कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गोविंद तक, ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है गुरु के माध्यम से। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु की आराधना हम करते हैं। बैजू बावरा फिल्म का ये भजन है, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने, आवाज मोहम्मद रफी की है और संगीत नौशाद का। आइए सुनते हैं।

विवाह फिल्म की भक्ति रचना आपने सुनी पामेला जैन और साथियों के स्वर में। गीत और संगीत रविन्द्र जैन का था। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना आरती पूर्व पश्चिम फिल्म से। आवाजें हैं महेंद्र कपूर, ब्रजभूषण श्याम और साथियों की। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

तो पूरब और पश्चिम फिल्म की ये भक्ति रचना आपने सुनी। इसके साथ ही भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

हेलो नमस्ते गुड इवनिंग युवा साथियों, मैं हूं आपकी रेडियो साथी स्वस्ति आर्य। स्वागत करती हूं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युवावाणी में। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स और आपके मनपसंद गीत। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। अच्छा दोस्तों, जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर जीव का अपना अलग महत्व है। अगर प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है तो हमें वाइल्ड लाइफ की भी उतनी ही चिंता करनी होगी। तो साथियों, इसी से जुड़ा आपसे एक सवाल पूछते हैं। क्या आप जानते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो साथियों सोचिए, गेस कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। और इसका उत्तर जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम युवावाणी में।

अच्छा दोस्तों, जीवन की राह में हम अनेक लोगों से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। कोई हमें चलना सिखाता है, कोई पढ़ना, तो कोई सही और गलत का अंतर समझाकर जीवन को नई दिशा देता है। ऐसे मार्गदर्शकों का हमारे जीवन में स्थान केवल सम्मान का ही नहीं होता, बल्कि कृतज्ञता का भी होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को सदैव सर्वोच्च स्थान दिया गया है और हमारे संतों ने भी गुरु की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसी भाव को संत कबीरदास जी ने अपने प्रसिद्ध दोहे गुरु गोविंद दो खड़े के माध्यम से काफी आसान और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। उनका दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस छोटे से दोहे ने जीवन का बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर एक साथ गुरु और भगवान दोनों हमारे सामने खड़े हों, तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। ये दोहा हमें सिखाता है कि गुरु का स्थान केवल शिक्षा देने तक सीमित नहीं होता। गुरु हमें अच्छे संस्कार देते हैं, सही और गलत का अंतर समझाते हैं, कठिन सिचुएशंस में सही डिसीजंस लेने में मदद करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, गुरु केवल स्कूल या कॉलेज के शिक्षक नहीं होते। हमारे माता-पिता, बड़े बुजुर्ग जीवन में सही राह दिखाने वाले मार्गदर्शक और हर व्यक्ति जो हमें अच्छी या कोई ना कोई सीख देता है, वो भी हमारे गुरु होते हैं। उनसे मिली सीख हमारे व्यक्तित्व को निखारती है और हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। साथियों, आज के समय में जब जानकारी हर जगह आसानी से उपलब्ध है, तब सही ज्ञान और सही दिशा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इंटरनेट हमें बहुत सी चीजें बताता है, लेकिन सही डिसीजंस लेने की समझ, अच्छे संस्कार और जीवन के मूल्य एक सच्चे गुरु ही सिखा सकते हैं। इसीलिए हमें अपने गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दोस्तों, इसी भावना को सम्मान देने के लिए हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूजा भी कहा जाता है, मनाई जाती है। इस वर्ष ये पावन पर्व 29 जुलाई को, यानी आज ही के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन हम अपने गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनकी सीख को जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। गुरु के साथ हमें हर चैलेंज का सामना करने में साहस मिलता है और हमारे सपनों को भी नई उड़ान मिलती है। जब सही मार्गदर्शन मिलता है, तो हर कदम आत्मविश्वास से भर जाता है। साथियों, संत कबीरदास जी का ये दोहा केवल गुरु की महिमा का वर्णन नहीं करता, बल्कि ये भी सिखाता है कि सही मार्गदर्शन से हमें सफलता और अच्छे संस्कार मिलते हैं। आइए दोस्तों, हम सभी अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान, आभार और श्रद्धा का भाव रखें और उनकी दी हुई सीख को अपने जीवन का आधार बनाएं। दोस्तों, इसी सुंदर भावना को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं एक प्रेरणादायक गीत।

साथियों, आपका युवावाणी कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। अच्छा दोस्तों, जरा सोचिए कि आप एक ऐसे संसार में प्रवेश कर रहे हैं जहां दीवारें कहानियां सुनाती हैं, अक्षर इतिहास लिखते हैं, लिपियां समय की यात्रा कराती हैं और हर शब्द अपने भीतर सदियों की सभ्यता को संजोए हुए हैं। स्वागत है शब्दलोक में, भारत के पहले भाषा संग्रहालय में, जहाँ भाषा केवल पढ़ाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। शब्दलोक केवल एक संग्रहालय ही नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत की भाषाई आत्मा का जीवंत उत्सव है। इसका उद्घाटन 19 जुलाई 2026 को कोलकाता के ऐतिहासिक राष्ट्रीय पुस्तकालय में किया गया था। संस्कृति मंत्रालय द्वारा विकसित यह संग्रहालय आधुनिक तकनीक और भारतीय परंपरा का अद्भुत संगम है, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध भाषाई और साहित्यिक विरासत को आने वाली जनरेशंस तक पहुंचाना है। दोस्तों, जैसे ही आप शब्दलोक में प्रवेश करते हैं, आपकी यात्रा भाषा की उत्पत्ति से शुरू होती है। यह आपको उस समय में ले जाती है जब मनुष्य ने पहली बार ध्वनियों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। आप महसूस करते हैं कि कैसे एक छोटी सी ध्वनि शब्द बनती है।

धीरे धीरे वाक्य बनाए जाते हैं और वाक्यों से सभ्यता बनती है। ये अनुभूति हमें बताती है कि भाषा केवल कम्युनिकेशन का माध्यम ही नहीं है, बल्कि मानव विकास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आगे बढ़ते ही भारतीय भाषाओं का विशाल संसार आपके सामने खुल जाता है। वैदिक संस्कृत से लेकर प्राकृत और पाली तक की विकास यात्रा और फिर आधुनिक भारतीय भाषाओं का निर्माण, हर चरण को इतनी सरलता और रोचकता से प्रस्तुत किया गया है कि इतिहास मानो आपकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा है। यहाँ एक एहसास होता है कि भले ही हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, उनकी जड़ें एक साझा सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई हैं। लेकिन शब्दलोक की सबसे खूबसूरती वाली बात यह है कि भारत की मौखिक परंपरा

0: मजबूती वाली बात यह है कि भारत की मौखिक परंपराएं भी पूरी गरिमा के साथ जीवित हैं। लोकगीतों की मधुर धुन, वीर गाथाओं का जोश, दादी नानी की कहानियों की मिठास, पहेलियों की रोचकता और कहावतों की बुद्धिमता, सब कुछ यहाँ एक ही छत के नीचे जीवंत अनुभव बन जाता है। शब्द लोक साहित्यिक प्रेमियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, संगम साहित्य, भक्तिकाल, सूफी परंपरा और आधुनिक भारतीय साहित्य, यहाँ हर युग का साहित्य अपनी विशिष्ट पहचान के साथ उपस्थित है। प्रत्येक रचना हमें ये सिखाती है कि शब्द केवल ज्ञान ही नहीं देते बल्कि समाज को नई दिशा भी देते हैं। दोस्तों, आज जब दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है, शब्द लोक भविष्य की भाषा को भी समझने का अवसर देता है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, इंटरनेट भाषा, इमोजी और डिजिटल कम्युनिकेशन के बदलते स्वरूप को मॉडर्न टेक्निक्स के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। शब्द लोक हमें एक गहरा संदेश देता है, यदि भाषा जीवित है तो संस्कृति जीवित है। इसलिए शब्द लोक केवल अतीत का संग्रह नहीं है दोस्तों, बल्कि भविष्य के लिए भी हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां, अलग अलग उच्चारण, लेकिन एक ही भावना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आइए दोस्तों, शब्दों का सम्मान करें, भाषाओं को अपनाएं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को गर्व के साथ आगे बढ़ाएं। अच्छा साथियों, आज की बदलती दुनिया में हर कदम पर नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं और शिक्षा भी इस नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। आजकल की जनरेशन अब शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं मानती, बल्कि इसे ज्ञान, कौशल और क्रिएटिव सोच का माध्यम समझती है। टेक्निक और नए सीखने के तरीकों के साथ स्टूडेंट्स अपने विचारों को विकसित कर रहे हैं और भविष्य के चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आइए दोस्तों, इस विषय पर और जानकारी लेते हैं रितिका यादव से, उनकी वार्ता के माध्यम से, जिसका विषय है शिक्षा जगत में नई पीढ़ी के नए दृष्टिकोण।
1: शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ मानी जाती है और शिक्षक उसका सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ। हर युग की शिक्षा प्रणाली का भविष्य उन हाथों में होता है जो ज्ञान का बीज बोते हैं। आज के युवा शिक्षक न केवल कक्षा में ज्ञान बांटने वाले हैं, बल्कि समाज को नई दिशा देने वाले चेंज मेकर्स भी हैं। बदलते समय में जब दुनिया तेजी से तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन देख रही है, तब युवा शिक्षक आशा की नई किरण बनकर सामने आते हैं। वे केवल ज्ञान का संचार करने वाले नहीं, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जो विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। युवा शिक्षक परंपरागत गुरुओं से कई मायनों में भिन्न हैं। वे तकनीक प्रेमी, नवाचारी और संवादात्मक होते हैं। केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। आधुनिक शिक्षण विधियों जैसे डिजिटल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग और इंटरैक्टिव क्लासरूम का उपयोग उनकी पहचान बन चुका है। ये विशेषताएं उन्हें भविष्य के निर्माता के रूप में स्थापित करती हैं। मैं स्वयं शिक्षिका होने के नाते सदैव ये प्रयास करती हूँ कि विद्यार्थियों को ऐसी विशिष्ट और नवीन विषय वस्तु प्रदान की जाए जिससे वे भीड़ से अलग दिखाई दें। चाहे पढ़ाने की बात हो अथवा किसी विषय पर मार्गदर्शन देने की, हमारा प्रयास यही रहता है कि हम पुरानी पद्धतियों को छोड़कर बच्चों को आज के समय के अनुरूप नया और प्रासंगिक ज्ञान दें जो उनके भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं कि हर पीढ़ी की सोच अपने समय की जरूरतों के हिसाब से बदलती है। अगर हम अपने माता पिता के दौर को देखें तो शिक्षा का मतलब होता था किताबों के पन्ने, नोटबुक्स और अच्छे अंक। लेकिन आज की नई पीढ़ी शिक्षा को एक यात्रा मानती है जहाँ केवल पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन जीने का ढंग सीखा जाता है। पहले शिक्षा का केंद्र रटना और दोहराना हुआ करता था, बच्चे वही सीखते थे जो शिक्षक बताते थे। लेकिन आज के छात्र पूछते हैं, ये विषय हमें असल जिंदगी में कहाँ काम आएगा। उदाहरण के लिए गणित लीजिए, पहले बच्चे बीजगणित और त्रिकोणमिति सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते थे, लेकिन अब वो जानना चाहते हैं कि यही गणित इंजीनियरिंग डिजाइनिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में या डेटा एनालिसिस में कैसे उपयोगी होता है। यही है उनका नया दृष्टिकोण, केवल याद करना नहीं बल्कि समझना और लागू करना। और ये दृष्टिकोण हम युवा शिक्षकों ने ही उनके भीतर विकसित करना प्रारंभ किया है। आज की नई पीढ़ी शिक्षा को समाज और पर्यावरण से जोड़कर देखती है। उदाहरण के लिए जब उन्हें पर्यावरण पढ़ाया जाता है तो वे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहते, वे सोचते हैं मैं खुद क्या कर सकता हूँ। कोई बच्चा अपने स्कूल में प्लास्टिक फ्री कैंपेन शुरू करता है, कोई पौधे लगाने की पहल करता है और कोई अपने घर की छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग करता है। यानी उनके लिए शिक्षा केवल एक विषय नहीं बल्कि एक कर्तव्य है।

0: आजकल प्रत्येक विद्यालय में पर्यावरण को लेकर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें पहले केवल पुस्तकों में पढ़ाया जाता था, परंतु अब युवा शिक्षकों के मार्गदर्शन से उन्हें वास्तविक जीवन में अपनाया जाने लगा है। नई पीढ़ी तकनीक को शिक्षा का सबसे बड़ा साधन मानती है। ऑनलाइन कक्षाएं, वर्चुअल लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरी और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, ये सब उनकी सीखने की यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। पहले जो ज्ञान सिर्फ चार दीवारों के भीतर सीमित था, अब वे दुनिया के हर कोने में उपलब्ध है। एक छोटा उदाहरण, कोरोना काल में जब स्कूल बंद हो गए थे, तब बच्चों ने जूम क्लासेस, गूगल मीट और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के जरिए पढ़ाई जारी रखी। यह इस नई पीढ़ी के लचीले दृष्टिकोण का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन साथ ही एक चुनौती भी है। इंटरनेट पर अपार जानकारी मौजूद है, पर सब सही नहीं होती। बच्चे अक्सर जो देखते या सुनते हैं उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। यहाँ पर नई पीढ़ी का सबसे जरूरी दृष्टिकोण सामने आता है, आलोचनात्मक सोच विकसित करना। जी हाँ, उदाहरण के लिए अगर उन्हें इंटरनेट पर कोई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती है, तो वे अब पूछते हैं कि क्या ये जानकारी किसी मान्य स्रोत से है, या अगर सोशल मीडिया पर कोई खबर आती है तो कई छात्र अब उसकी सच्चाई गूगल करके न्यूज पोर्टल से मिलाकर देखते हैं। यानी वे अब केवल सुनने वाले नहीं बल्कि सोचने और परखने वाले बन रहे हैं। इसका सीधा कारण यही है कि अब उनके भीतर आलोचनात्मक चिंतन नाम का बीज शिक्षकों द्वारा बोया गया है। शिक्षक और अभिभावक की भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई पीढ़ी का ये दृष्टिकोण तभी सार्थक होगा जब शिक्षक और अभिभावक उनका साथ दें। अगर हम पुरानी पद्धतियों पर ही अड़े रहे तो बच्चे ऊब जाएंगे। हमें भी उनके साथ बदलना होगा। कक्षा में केवल लेक्चर देने के बजाय प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, समूह चर्चा और वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरण लाने होंगे। जैसे इतिहास पढ़ाते समय सिर्फ तारीखें याद कराने की जगह अगर बच्चों को इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर रोल प्ले करवाया जाए, तो वे विषय से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। यही शिक्षण की नई दिशा है। वर्तमान शिक्षा जगत में नई पीढ़ी का दृष्टिकोण सिर्फ किताबों और अंकों तक सीमित नहीं रहा है, यह अब जीवन, समाज और भविष्य से गहराई से जुड़ा है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण सिर्फ तकनीकी ज्ञान और नई पद्धतियों पर ही आधारित नहीं है। आज के युवा शिक्षक नैतिक मूल्यों पर भी बराबर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यदि सिर्फ तकनीकी कौशल ही विकसित किया जाए और नैतिक मूल्यों की अनदेखी हो जाए, तो समाज असंतुलित हो जाएगा। इसीलिए युवा शिक्षकों को विद्यार्थियों में ईमानदारी, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे गुण जगाने होंगे। भविष्य का समाज लगातार बदलता रहेगा। रोजगार, कौशल और जीवन शैली हर दशक में नया स्वरूप लेंगे। युवा शिक्षक विद्यार्थियों को लचीला और नवाचारी बनाना सिखाएं, ताकि वे हर परिस्थितियों में सफल हो सकें। समाज तभी प्रगतिशील बन सकता है जब हर वर्ग और हर बच्चे को समान अवसर मिले। युवा शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वे शिक्षा में भेदभाव की दीवार को तोड़े और सबको बराबरी का अवसर दें। हालांकि ये सवाल उठाना जरूरी है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवा शिक्षकों को पर्याप्त अवसर देती है। बहुत बार कठोर पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण और संसाधनों की कमी उनके नवाचार को रोक देते हैं। स्कूलों में अक्सर रचनात्मक प्रयोगों की जगह अंकों पर जोर दिया जाता है। ऐसे में युवा शिक्षक का उत्साह धीमा पड़ सकता है। इसलिए केवल शिक्षा से या शिक्षक से उम्मीद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज और सरकार को भी उनकी क्षमताओं को पहचानना और प्रोत्साहित करना होगा। युवा शिक्षक वास्तव में भविष्य की उम्मीदें हैं। उनकी ऊर्जा, रचनात्मकता और तकनीकी दक्षता विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर सकती हैं। यहाँ हमें खुद को एक शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के निर्माता के रूप में देखना होगा, क्योंकि अब हमारा काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाकर दूसरी कक्षा में भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें दूसरे देशों तक भेजने का है। हमारी जिम्मेदारी इन विद्यार्थियों को इतना सक्षम बनाने की है कि ये सिर्फ अपने ही देश के नहीं बल्कि दूसरे देशों के विकास में भी भाग ले सकें।
1: वेलकम बैक साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था शिक्षा जगत में नई पीढ़ी के नए दृष्टिकोण। वार्ताकार थी रितिका यादव। अच्छा दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक अकेला व्यक्ति एक भारी पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, फिर भी सफल नहीं हो पाता। तभी कुछ और लोग उसका साथ देते हैं और वही पत्थर कुछ ही क्षणों में आसानी से उठ जाता है। यही है सामूहिकता की वास्तविक शक्ति। सामूहिकता के दो अहमियत का अर्थ है कि व्यक्ति अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर परिवार, समूह, संस्था और समाज को सामूहिक हित को प्रेफरेंस दे और सहयोग, विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ मिलजुल कर कार्य करे। इसका मतलब है मैं से हम की ओर बढ़ना। जहां लोग एक दूसरे का हाथ

थामकर एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, वही सामूहिकता का जन्म होता है। मानव जीवन में सामूहिकता का एक विशेष महत्व है, क्योंकि संसार का कोई भी बड़ा कार्य अकेले संभव नहीं हो पाता, परिवार के सभी मेंबर्स के सहयोग से चलता है। स्कूल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के जॉइंट एफर्ट से प्रगति करता है। हॉस्पिटल डॉक्टर्स, नर्सेस और दूसरे वर्कर्स के कोऑर्डिनेशन से सेवाएं प्रदान करते हैं। सेना सामूहिक डिसिप्लिन और टीम भावना के बल पर देश की रक्षा करते हैं, और राष्ट्र अपने सिटीजन्स के सहयोग और सहभागिता से आगे बढ़ता है। इस प्रकार सामूहिकता सफलता और विकास की आधारशिला है। दोस्तों, सामूहिकता का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इससे बड़े और कठिन लक्ष्य भी सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। जब अनेक लोग मिलकर कार्य करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशिष्ट प्रतिभा, ज्ञान और अनुभव का योगदान देता है। कोई योजना बनाता है, कोई सुपरविजन करता है, कोई तकनीकी कार्य संभालता है और कोई समस्याओं का समाधान खोजता है। इन सभी के संयुक्त प्रयास से ही कार्य अच्छे से हो पाता है। सामूहिकता समाज में प्रेम, भाईचारे और आपसी विश्वास को मजबूत बनाती है। जब लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं, तब विवादों की संभावना भी कम हो जाती है। इतिहास और वर्तमान जीवन में सामूहिकता के अनेक प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिलते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम लाखों देशवासियों के सामूहिक संघर्ष और बलिदान का परिणाम था। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों में भी एक खिलाड़ी की प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती, बल्कि पूरी टीम के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ही विजय प्राप्त होती है। इसी प्रकार अंतरिक्ष अभियानों में हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और टेक्नीशियन वर्षों तक मिलकर कार्य करते हैं, तब जाकर कोई रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप या महामारी के समय प्रशासन, डॉक्टर और सामान्य नागरिक मिलकर राहत और बचाव कार्य संभालते हैं। सामूहिकता के मार्ग में कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जैसे कि स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या, संवाद की कमी और आपसी अविश्वास। ये बातें मिलकर काम करने पर बाधा बनती हैं। यदि लोग एक दूसरे की बात ध्यान से सुने, मिलकर निर्णय लें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि एकता में ही बल है। अकेले हम थोड़ा कर सकते हैं, पर साथ मिलकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सामूहिकता केवल एक सामाजिक विचार ही नहीं, बल्कि सफल और प्रगतिशील जीवन का मूल मंत्र है। जब लोग सहयोग, विश्वास और सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं, तब व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र का भी विकास होता है। अब दोस्तों, समय है आपके मनोरंजन का, तो आप सभी को ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, चलते चलते आज जानते हैं प्रकृति और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी एक खास पहल के बारे में। जैसा कि हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में सवाल पूछा था, वो क्वेश्चन था इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपने सोचा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए हम आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, जो हमें इस सुंदर वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के प्रति जागरूक करता है। इसी सोच के साथ दुनिया भर में बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे कि बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जैगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए कार्य करता है। इससे इन जीवों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। तो इसी के साथ साथियों, कार्यक्रम यूं वाणी संपन्न करने की अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त स्वस्ति आर्य को दीजिए आज्ञा। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

हमारे सभी अन्नदाताओं को हमारी राम राम, प्रणाम, नमस्कार। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम ग्रामीलोक, और आज इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आपके बीच आपका रेडियो दोस्त अनिरुद्ध कुमार। किसान भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि आज का हमारा ये कार्यक्रम हमारी खेती किसानी और हमारी सेहत दोनों के लिहाज से बहुत ही खास है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो सीधे हमारी सेहत और हमारी जमीन से जुड़ी है। साथियों, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन आजकल हमारी थाली में जो अन्न आ रहा है, क्या वाकई में वो शुद्ध है? मित्रों, रसायनों और कीटनाशकों के दौर में अब समय आ गया है कि हम अपनी जड़ों की तरफ लौटें। जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं रसायन मुक्त खेती यानी प्राकृतिक खेती के बारे में। साथियों, हरित क्रांति के बाद रासायनिक खेती ने भले ही कुछ समय के लिए पैदावार बढ़ाई हो, लेकिन उसने हमारी मिट्टी की उर्वरता और इंसान की सेहत दोनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए रसायन मुक्त खेती अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि समय की जरूरत बन गई है। साथियों, हमारे बहुत से किसान भाई कई बार सोचते हैं कि भाई बिना यूरिया, डीएपी या रसायनों की खेती कैसे संभव है? फसल में कीड़े वगैरह लगेंगे तो क्या करेंगे? भाई बहनों, याद रखिए, प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान है। रसायन मुक्त खेती का मतलब सिर्फ रसायनों को बंद करना नहीं है बल्कि मिट्टी को फिर से जीवित करना है। इसलिए हम जीवामृत, घन जीवामृत और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। कीटों से बचाव के लिए हमें महंगे कीटनाशकों की जरूरत

नहीं होती, हम नीम के पत्ते, धतूरा, छाछ और गौमूत्र मिलाकर बहुत ही बढ़िया जैविक कीटनाशक घर पर ही बना सकते हैं, जो कि बहुत सस्ते होते हैं और मित्र कीटों जैसे कि लेडी बग या केंचुओं को नुकसान नहीं पहुंचाए बिना हानिकारक कीड़ों को भगाकर उन्हें मार देते हैं। यानी घर की चीज़ों से ही मुफ्त में खाद और दवाई तैयार करके किसान भाइयों हम अपनी लागत भी घटा सकते हैं। और हमें पता है कि हमारे सबसे जो बड़ा डर होता है हमारे अंदर, वो क्या होता है कि अगर हम भाई रसायन छोड़ देंगे तो क्या होगा। शुरुआत में उत्पादन कम हो जाएगा और अगर हम कम हुआ तो आर्थिक नुकसान कैसे सहेंगे। सचिव देखिए, आपका ये डर जायज है, लेकिन शुरुआत के 1-2 साल में मिट्टी को पुरानी अपने जो होता है ना प्राकृतिक स्वरूप, उसमें आने में समय जरूर लगता है, लेकिन इस दौरान हमारा उत्पादन खर्च भी लगभग शून्य रहता है। यूरिया, DAP और महंगे जो कीटनाशकों पर हम खर्च करते हैं वो पूरी तरह से कम हो जाता है। साथियों, आपको पता है आज बाजार में जैविक और प्राकृतिक अनाज, फल और सब्जियों की मांग बहुत ज़्यादा है। लोग इसके लिए 20 से 30% तक अधिक दाम देने को तैयार रहते हैं। और आज समय की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आए दिन जो बीमारियां हैं वो उनकी संभावना जो रासायनिक जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी वजह से ज़्यादा हो रही है। तो साथियों, भले ही शुरुआत में उपज में थोड़ा अंतर आए सब चलेगा, लेकिन आपकी बचत और उत्पाद की जो कीमत है अगर हम दोनों को मिला दें तो भी आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। यानी लागत कम, मुनाफा ज़्यादा और सेहत का फ़ायदा होगा, वो आपको बोनस में मिलेगा। साथियों, हमारी सरकार भी रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत मदद कर रही है। साथियों, हम आपको बता दें कि अब सबसे अच्छी बात क्या है कि अपनी ज़मीन पर एक साथ नहीं तो कम से कम ज़मीन के एक हिस्से पर हमको एक छोटा सा प्रयास करके देखना चाहिए। यानी कि ज़मीन के हिस्से पर, एक छोटे हिस्से पर रसायन मुक्त खेती की हम शुरुआत करें। अपनी आने वाली पीढ़ियों को जहरीली ज़मीन नहीं बल्कि उपजाऊ और जीवन देने वाली मिट्टी देकर जाएं। और हम सब जानते हैं और ये सच्चाई भी है, मिट्टी बचेगी तभी तो जीवन बचेगा। तो दोस्तों, रसायन मुक्त खेती और जहर मुक्त थाली की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। साथियों, इसी संकल्प के साथ आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये लोकगीत और जानते हैं ये किसे बदलने की कह रही हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: किसान साथियों, अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम ग्रामीलोक में आपका स्वागत है। भाई और बहनों, समावेशी शिक्षा शब्द आजकल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही

0: देखने को मिलता है। लेकिन जब हम इसके आयामों की बात करते हैं तो इनका क्या अर्थ है, जिसे समझाने और बताने के लिए आज हमारे साथ हैं राधा परमार।
1: समावेशी शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चों, चाहे वे दिव्यांग हों, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हों, विभिन्न भाषाई, सांस्कृतिक या लैंगिक पृष्ठभूमि से हों, को समान अवसरों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा समावेशित कक्षाओं में विविधताओं को स्वीकार करने की मनोवृत्ति है, जिसके अंतर्गत शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है, ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा का एक हिस्सा बन सकें और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को बाल केंद्रित विधियों के माध्यम से विकसित किया जाना है और विद्यालय, घर, परिवार और समाज में अच्छा संबंध स्थापित करना है। समावेशी शिक्षा की परिकल्पना इस संकल्पना पर आधारित है कि सभी बच्चों को विद्यालयी शिक्षा में पहुंच की इस कदर आवश्यकता है कि उन्हें शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश और विस्तृत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं को संदर्भित करके समझा जाए, क्योंकि भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्त मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है। इस वृहत लक्ष्य को समावेशी शिक्षा द्वारा सुनिश्चित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा बच्चों, विशेषकर दिव्यांग तथा अधिगम संबंधी कठिनाइयों वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने की एक नवीन एवं समावेशी अवधारणा है। इसका आशय यह है कि सभी शिक्षार्थी, चाहे वे दिव्यांग हों या न हों, समान विद्यालय व्यवस्था तथा सामुदायिक शैक्षिक वातावरण में उपयोगी सहयोगी सेवाओं की उपलब्धता के साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए ऐसी लचीली शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है जो विभिन्न प्रकार की सीखने की आवश्यकताओं और क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा कर सके। समावेशन कोई ऐसा प्रयोग नहीं है जिसकी सफलता या असफलता को परखा जाए, बल्कि यह एक मूल्य है जिसे अपनाया जाए और व्यवहार में लागू किया जाए। सभी बच्चों को, चाहे वे दिव्यांग हो या न हो, शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है, क्योंकि वे राष्ट्र के भावी नागरिक हैं। वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में जहाँ सामान्य बच्चों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु संसाधनों का अभाव है, वहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किसी शोध अध्ययन का विषय बनाकर यह सिद्ध करने का प्रयास करना कि वे मुख्य धारा के विद्यालय और समुदाय में रहकर सीख सकते हैं, न तो नैतिक है और न ही व्यवहारिक है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को 1994 में स्पेन के सलामांका में आयोजित विशेष आवश्यकता शिक्षा पर विश्व सम्मेलन पहुंच एवं गुणवत्ता में औपचारिक रूप से अपनाया गया। इसके पश्चात इस सिद्धांत की पुनः पुष्टि 2000 में सेनेगल के डकार में आयोजित विश्व शिक्षा मंच में की गई। समावेशी शिक्षा दिव्यांग बच्चों के लिए समान अवसरों की व्यवस्था पर बल देती है तथा सभी के लिए समान भागीदारी और समानता के सिद्धांत को प्रोत्साहित करती है। बदलते परिवेश में विशेष आवश्यकता शिक्षा शब्द का प्रयोग विशेष शिक्षा के स्थान पर किया जाने लगा, क्योंकि विशेष शिक्षा शब्द को प्राय केवल उन बच्चों एवं युवाओं की शिक्षा तक सीमित समझा जाता था जिनकी शैक्षिक आवश्यकताएं दिव्यांगता या अधिगम संबंधी कठिनाइयों के कारण उत्पन्न होती थी। सलामांका घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश का अधिकार होना चाहिए और ऐसे विद्यालयों को बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति अपनाकर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त विशेष आवश्यकता शिक्षा की अवधारणा केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी बच्चों को भी सम्मिलित करती है जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, भाषाई, सांस्कृतिक अथवा अन्य कारणों से विद्यालय में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाते और जिनकी परिस्थितियां उनके समुचित विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मुख्य धारा की विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा सामान्य बच्चों का एकीकृत एवं समग्र विकास सुनिश्चित करना है। समावेशी शिक्षा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह अधिक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण एवं समावेशी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी बच्चे को उसकी दिव्यांगता, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति, भाषा, धर्म या किसी अन्य भिन्नता के आधार पर शिक्षा के अधिकार से वंचित न किया जाए। प्रत्येक बच्चे को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। विभिन्न क्षमताओं एवं पृष्ठभूमियों वाले बच्चों के साथ मिलकर अध्ययन करने से विद्यार्थियों में सहानुभूति, सहिष्णुता, सहयोग तथा

0: का सामाजिक समायोजन की भावना विकसित होती है। इससे एक संवेदनशील एवं समरस समाज के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। समावेशी शिक्षा दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को वास्तविक सामाजिक वातावरण में सीखने का अवसर प्रदान करती है। इससे उनमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता तथा भविष्य के शैक्षिक, व्यावसायिक एवं सामाजिक जीवन का सफलतापूर्वक सामना करने की योग्यता विकसित होती है। उचित संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों तथा प्रभावी शिक्षण विधियों से युक्त समावेशी कक्षाएं प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती है। इससे सभी विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियां, रचनात्मकता तथा सीखने की गुणवत्ता में सुधार होता है। समावेशी विद्यालय भारतीय संविधान में निहित समानता, न्याय, गरिमा, बंधुत्व और समावेशिता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यवहार में उतारते हैं। इस प्रकार विद्यालय लोकतांत्रिक समाज के निर्माण की आधारशिला बनते हैं। भारत में शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में लाने के प्रयास किए गए हैं। इन सबके बावजूद अनेक विद्यालय प्रबंधनों की उदासीनता तथा सामान्य बच्चों के अभिभावकों की अत्यधिक आशंकाओं के कारण दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालयों में प्रवेश और अध्ययन का वातावरण पर्याप्त रूप से अनुकूल नहीं बन पाया है। भारत का संविधान सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित तो करता है तथा यह अपेक्षा करता है कि देश के शारीरिक रूप से दिव्यांग तथा मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा तक पहुँच प्रदान की जाए। भारतीय संविधान समावेशी शिक्षा के लिए एक सुदृढ़ एवं परिवर्तनकारी आधार प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज के वंचित एवं हाशिए पर स्थित वर्गों, विशेषकर दिव्यांग बच्चों तथा सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को मुख्य धारा की विद्यालयी शिक्षा तक समान और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा को दान या परोपकार का विषय नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार एवं राज्य का अनिवार्य दायित्व माना गया है। यही संवैधानिक दृष्टिकोण समावेशी, समानतापूर्ण और न्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। भारतीय संविधान समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को सशक्त आधार प्रदान करता है तथा प्रत्येक बच्चे को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। 46वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसे व्यवहार में लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटों का आरक्षण अनिवार्य करता है। अनुच्छेद 46 राज्य को समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 सभी शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कमजोर बच्चों के प्रवेश लेने को अनिवार्य बनाता है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बाधा रहित वातावरण, आवश्यक सुविधाएं, सहायक उपकरण तथा उचित समायोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है तथा उन्हें समान एवं सम्मानजनक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। देश में प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के विकास एवं उन्नयन के लिए चलाए गए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान, विद्यालय चलो अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, पीएम पोषण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आदि पहलों के केंद्र में समावेशी शिक्षा ही है। प्रदेश एवं केंद्र सरकार का समावेशी शिक्षा का लक्ष्य यह है कि कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे और कोई भी पीछे न छूटे। शिक्षा जगत से जुड़े सभी वर्णधारियों का फोकस इस बात पर ही है कि देश के 100% बच्चों का नामांकन बालवाड़ियों एवं विद्यालयों में हो और जो प्रवेश लें वे अपनी शिक्षा भी पूरी करें। शिक्षा पूरी करने में बच्चों के परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति या उनकी दिव्यांगता बाधक न बने।
1: साथियों, अभी आपने सुना राधा परमार को, जिन्होंने हमें समावेशी शिक्षा के आयामों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं मौसम के हाल और बात करते हैं आज के तापमान की। आज का न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहा। कल के तापमान की बात करें तो कल का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री वहीं अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की से भारी बरसात होने की भी संभावना है।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ

0: seamless banking and many other exciting benefits. Aaj hi visit kare apni nearest SBI branch aur Premier Banking activate kare. Terms and conditions apply.
1: किसान भाई, अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम ग्रामलोक में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। साथियों, इस पावन पर्व पर आइए अपने गुरुओं को नमन, उनका वंदन करते हुए सुनते हैं ये लोकगीत।

किसान भाई, इस लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम ग्रामीणों के यहीं पर संपन्न करने की अपने रेडियो दोस्त अनिरुद्ध को दीजिए अनुमति। आप सभी को हमारी राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण लोक, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रमिक श्रोताओं का कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को आपकी रेडियो सखी मनीषा अरोरा का प्यार भरा नमस्कार। हर साथियों, कैसे हैं आप सब भाई? इन दिनों बारिश का मौसम है, तो आज कहीं भीग कर तो नहीं आए हैं ना आप? भाई साहब, घर से छाता लेकर जाया करिए। हाँ, हम जानते हैं आप यही कहेंगे ना कि जिस दिन छाता लेकर जाओ उस दिन बिना बारिश के ही दिन निकल जाता है, और जिस दिन भूल जाते हैं उसी दिन भीग कर आते हैं, है ना? चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप रोज ही छाता लेकर जाइए और जरा संभल कर, क्योंकि सड़कों पर भी पानी भर जाता है, उससे भी बचकर चलना है ना साथियों? वैसे ऐसे में ठंडी हवा जब चलती है तो मन को सुकून दे जाती है, लेकिन एक बात तो है भाई, बारिश का असली मजा तब आता है जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आए। अब हरियाली की बात निकली है तो जरा जंगल की भी बात कर लेते हैं। भाई जंगल सिर्फ पेड़ों का नाम नहीं है, बल्कि वहां रह

वाले छोटे बड़े जीव मिलकर ही उस जगह को, उस पेड़ों को, उस जंगल को जिंदा रखते हैं। उन्हीं में से एक ऐसा जानवर है जिसे जंगल का राजा कहा जाता है। बताने की जरूरत तो है ही नहीं, वो आप जानते ही हैं, वो बाघ होता है। जी हाँ, टाइगर। साथियों, हर साल 29 जुलाई यानी आज के दिन विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है बाघ को बचाना। आपने देखा होगा कि अगर किसी घर का मुखिया अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए तो पूरा घर अच्छे से चलता है। उसी तरह बाघ भी जंगल का संतुलन बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर बाघ कम हो जाए तो जंगल का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। हाँ साथियों, आज सबसे बड़ी चिंता यही है कि जंगल कम होते जा रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, कई जगह तो जानवरों का शिकार भी हो जाता है, तो ऐसे में बाघों का सुरक्षित रहना मुश्किल हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो भाई साहब, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षा करें, जहां पर भी मौका मिले पौधे लगाएं, जंगलों में आग लगाने से या नुकसान पहुंचाने जैसी बातों का विरोध करें, और तो और अपने बच्चों को भी समझाएं कि बच्चों, जंगल और जानवर हमारी धरोहर हैं, इन्हें हमें बचाकर रखना है। भाई साथियों, याद रखिए, अगर जंगल बचेंगे तो बारिश भी अच्छी होगी और हवा भी साफ रहेगी, और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी बाघ को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि असली जंगल में देख सकेंगी। तो आइए, विश्व टाइगर दिवस पर हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें कि प्रकृति की रक्षा करेंगे, जंगलों को बचाएंगे और बाघों की सुरक्षा का संदेश हर घर तक पहुंचाएंगे। साथियों, अब बारी है गीत की, पर गीत सुनवाने से पहले आपसे पूछ लेते हैं हम आज का प्रश्न। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कौन से राज्य में है। इसका जवाब आपको कार्यक्रम के अंत तक मिल ही जाएगा, तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ और सुनिए अब ये मधुर गीत।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, शब्दों में अनोखी ताकत होती है जो कभी चेहरे पर मुस्कान ले आती है तो कभी हमारे मन को

0: भाव कर देती है, तो कभी जीवन की नई सीख दे जाती है। ऐसी ही सुंदर अभिव्यक्तियों और भावनाओं से सजा काव्य पाठ लेकर आए हैं हम आपके लिए, जिसमें कवियों के मन की व्यथा बताने जा रहे हैं समीर मिश्रा। आइए सुनते हैं।
1: दोस्तों, कवियों की क्या पीड़ा होती है, मैं चंद पंक्तियों में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दर्द सुनाया गीतों में इसका तुमको अनुमान नहीं। दर्द सुनाया गीतों में इसका तुमको अनुमान नहीं, अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं, इतना भी आसान नहीं। महफिल में गाकर गीतों को हम कितना मशहूर हुए, महफिल में गाकर गीतों को हम

कवियों की क्या पीड़ा होती है, मैं चंद पंक्तियों में प्रस्तुत करना हूँ कि दर्द सुनाया गीतों में इसका तुमको अनुमान नहीं। दर्द सुनाया गीतों में इसका तुमको अनुमान नहीं, अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं, इतना भी आसान नहीं। महफिल में गाकर गीतों को हम कितना मशहूर हुए, महफिल में गाकर गीतों को हम कितना मशहूर हुए, सहकर दर्द जमाने का हम लिखने को मजबूर हुए। पीर पिरोना शब्दों में मुश्किल यारो आसान नहीं, अरे पीर पिरोना शब्दों में मुश्किल यारो आसान नहीं, अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं, इतना भी आसान नहीं। हम ठहरे राहों के पत्थर अनगिन ठोकर खाई, हम ठहरे राहों के पत्थर अनगिन ठोकर खाई, षड्यंत्र रचाने वालों तुमको हम पर तरस न आई। अपनापन के मेले में मानवता को स्थान नहीं, अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं, इतना भी आसान नहीं। अगला बंद देखें कि दर्द छिपा कर भोगा यारो अपनेपन से घबरा कर, दर्द छिपा कर भोगा यारो अपनेपन से घबरा कर, रिश्ते बने सफर में जितने टूटे सारे घर आकर, कहने को अपने थे लेकिन मिला हमें सम्मान नहीं, अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं, इतना भी आसान नहीं। और इस गीत का अंतिम बंद समर्पित करता हूँ कि सिस्कन बिछुड़न की नगरी के हम राजा ठहरे, सिस्कन बिछुड़न की नगरी के हम राजा ठहरे, अपमानों के द्वारपाल के लगते हैं पहरे, पूजा करना आंसू की यारो इतना आसान नहीं, अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं, इतना भी आसान नहीं। दर्द सुनाया गीतों में इसका तुमको अनुमान नहीं, अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं, इतना भी आसान नहीं। अब एक गीत तरन्नम से प्रस्तुत करता हूँ कि तुम तक पहुँच

0: भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। अरे रासलीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान, लेकिन गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा, मोल कोई क्या लिखेगा। चार पंक्तियां और देता हूँ। किसी का दर्द कभी हद से गुजर जाता है, किसी का दर्द कभी हद से गुजर जाता है, नीर सागर का तभी आंख में भर जाता है। हो के मजबूर बना ले जो कहीं रेत में घर, अरे हो के मजबूर बना ले जो कहीं रेत में घर, तभी लहरों में सभी कुछ ही बिखर जाता है, तभी लहरों में सभी कुछ ही बिखर जाता है। और इसी तरह चार पंक्तियां और समर्पित करता हूँ कि दिखे दीवानगी तेरी तो मीरा याद आती है, दिखे दीवानगी तेरी तो मीरा याद आती है, समर्पण भाव जो देखा तो राधा याद आती है। अरे खता क्या थी मेरी जो दिल में अपने कैद कर डाला, खता क्या थी मेरी जो दिल में अपने कैद कर डाला, समंदर खुद नहीं जाता नदी उसमें समाती है, नदी उसमें समाती है।
1: साथियों, अभी आपने समीर मिश्रा से ये काव्य पाठ सुना। हम उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। चलिए अब आपको ज्ञान सागर के अंतर्गत एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, J.R.D. टाटा के बारे में। जी हाँ, उनका पूरा नाम था जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 29 जुलाई 1904 को फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। वो भारत के महान उद्योगपति, समाजसेवी और दूरदर्शी विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्हें भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक भी कहा जाता है। उनके नेतृत्व में इस्पात, बिजली, वाहन, होटल, रसायन और कई क्षेत्रों में प्रगति की। वो मानते थे कि किसी भी संस्था की सबसे बड़ी ताकत उसके कर्मचारी होते हैं, इसीलिए उन्होंने कर्मचारियों की भी सुरक्षा का, उनके स्वास्थ्य का और कल्याण का विशेष ध्यान दिया। साथियों, जीआरडी टाटा केवल एक सफल उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी थे। उनका मानना था कि उद्योग का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान देना होता है। उनकी ईमानदारी, सादगी और दूरदर्शिता आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। साथियों, देश के प्रति उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1992 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और समाज सेवा के बल पर बड़ी से बड़ी सफलता भी हासिल की जा सकती है। तो साथियों, आगे की बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे ये क्षणिक अंतराल।

पंखों की कमजोरी थी, पंखों की कमजोरी थी। कहते हैं कि बहारों से कभी कोई गुजारा हो नहीं सकता, बहारों से कभी कोई गुजारा हो नहीं सकता। अरे कहें किसको मेरा अपना हमारा हो नहीं सकता। निगाहों से गुजर जाएगी एक दिन जिंदगी अपनी, सफर तो एक सफर होता, किनारा हो नहीं सकता, किनारा हो नहीं सकता। चार पंक्तियां और समर्पित करता हूँ कि दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, दर्द की अनुभूति का

साथियों, जब हम आपसे बातें कर रहे थे तो आपसे बातें करते करते हमारे दिमाग में कबीर दास जी का ये दोहा आ गया कि गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बताए। और बात सच भी है साथियों, अगर हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं तो हम उस गुरु को प्रणाम पहले करेंगे जिन्होंने हमें उस ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया। वैसे ये दोहा आज इसलिए भी याद आ गया क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन अवसर है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो हमें सही दिशा दिखा सके। हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।

0: क्योंकि जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। वो अज्ञान का अंधकार मिटाते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, सही गलत का भेद सिखाते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं। हमारे अंदर जो छिपे हुए डर होते हैं, जो कमियां होती हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं। तो हमें अपने गुरु का आदर और सम्मान हमेशा करना चाहिए।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, बारिश का मौसम तो चल ही रहा है, तो बारिश में काम भी करना है और सुरक्षा भी चाहिए, तो चलिए आपको देते हैं कुछ सेहत टिप्स। सबसे पहले तो ये कि नहाने से पहले पैरों और हाथों में सरसों का तेल जरूर लगा लें, क्योंकि कीचड़ और गंदे पानी से जो खुजली और फुंसी जो हो जाती है वो इससे नहीं होगी। और हफ्ते में 2 बार नीम के पानी से ज़रूर नहा लें, ताकि बारिश में जो फोड़े फिंसियाँ और जो स्किन इन्फेक्शन हो जाता है उससे भी बचाव होगा। सुबह काम पर जाने से पहले थोड़ा गुड़ और भुना चना खा लें, इससे आपके शरीर में गर्मी रहेगी और आपको कमजोरी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर बस्ती में पानी भरा है, तो आप वहाँ पर दवाई या फिनाइल का छिड़काव कर सकते हैं, इससे मच्छर कम होंगे। रात में सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर जरूर पी लें, ना तो खांसी आएगी और ना ही जुकाम आपके पास फटकेगा। तो साथियों, बारिश में काम भले ही कम मिले लेकिन टेंशन ना लें, साथियों के साथ बैठकर बातें करें, भजन गाएं, खुश रहें, ताकि बीमारी आधी दूर हो जाए। तो मेहनत तो आपके खून में है ही, बस थोड़ी सावधानी रख लीजिए, स्वस्थ रहेंगे तो कमाई भी होगी और घर में खुशहाली भी आएगी। तो हो जाए फिर इसी बात पर एक प्यारा सा गीत।

साथियों, हमने आपसे प्रश्न किया था कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कौन से राज्य में है, तो इसका जवाब है मध्य प्रदेश में, जहां कुछ 785 बाघ और 9 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। साथियों, हम वादा बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे और हर बार आपसे यूं ही मिलने आएंगे, बातें करेंगे, जानकारियां देंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम मजदूर मंडल को यहीं पर संपन्न करने की, अपनी रेडियो सखी मनीषा अरोरा को यहीं पर दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी श्रमिक श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। संध्या के 7 बजे हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: किसान भाइयों बहनों के लगातार फोन आ रहे हैं आपसे सीधे।
1: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
1: राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद कवच के 4th संस्करण को 20 जुलाई तक दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के व्यस्ततम मार्गों पर 2,500 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीक

0: लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है। परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज BS6 मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। पुरुष मुक्केबाजी में सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं एथलेटिक्स स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने पुरुष शॉटपुट फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: The Lok Sabha today passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of properties of convicted offenders. Replying to the discussion, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the new bill is a reaffirmation of the government's commitment to safeguard the welfare of students and youth.
2: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: Replying to Rahul Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said that the government repeatedly clarified that no shots were fired and only tear gas was used. He said since no shots were fired, the question of issuing an order does not arise as the authority to issue such an order rests with the magistrate, not the minister. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Rahul Gandhi and demanded an apology from him in the House for his remarks. Earlier, participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said, students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till tomorrow. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gana Mana. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. After the passage of the bill, the upper house was adjourned till tomorrow. To address the deteriorating air quality challenge, the government approved a vehicle fleet renewal initiative named Parivartan, or Program for Accelerated Renewal and Incentivization of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emissions. The scheme aims to replace old and high-emission trucks and buses in the Delhi NCR with cleaner Bharat Stage 6 compliant and electric vehicles. Minister for Electronic and IT Ashwini Vaishnav has said that India's electronic sector has witnessed a remarkable transformation in recent years, driven by a series of government initiatives and industry reforms. In a written reply in the Lok Sabha today,

0: Mr. Vaishnav said the country is steadily emerging as a global hub for electronic system design and manufacturing. He said Electronics Development Fund or EDF was one of these initiatives of the Government of India to promote market-driven innovation in electronic system design and manufacturing. In Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the death toll has risen to 40, with several others injured following a crackdown by Pakistani security forces on the protesters during a march organized by the Joint Awami Action Committee from Rawalkot to Muzaffarabad on Monday. Amid escalating unrest in the occupied territory, a human rights documentation and monitoring body has urged the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to intervene over reports of lethal force being used against peaceful protesters. Union Home Minister Amit Shah spoke with Assam Chief Minister Dr. Hemant Biswa Sarma and reviewed the ongoing relief efforts in the wake of the devastating floods in Upper Assam. In a social media post, the Assam Chief Minister said Union Home Minister inquired about the situation on the ground and assured that the centre will continue to provide all necessary assistance. Indian boxer Sakshi Chaudhary assured herself of at least a bronze medal by entering the 51-kilogram category semi-finals of the Commonwealth Games in Glasgow today. Sakshi defeated Northern Ireland's Kathleen Friars 5-0 to enter the last four stage. She has become the fifth Indian boxer to be guaranteed of a medal at the ongoing Games. With this, India's total medal count at the Glasgow Games has reached 12, including 2 gold, 7 silver and 3 bronze. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:10 हुए हैं। विविध कार्यक्रम में आइए सुनते हैं प्रकाश पंत की वार्ता, गुरु पूर्णिमा का सांस्कृतिक महत्व।
2: प्रारंभ में तो गुरु शब्द को समझ लें, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म भाव उसमें समाहित हैं। शिक्षक तो वह है जो ज्ञान दे, जिससे हम कुछ सीख सके, स्मृति बढ़े, जानकारी में वृद्धि हो। आचार्य वह है जो अपने विषय में तो निष्णात हो ही, साथ ही हमें नैतिक मूल्यों से भी परिचित कराए। किंतु गुरु तो इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है। गुरु हमारा सारा ज्ञान छीन लेता है, हमको विस्मित कर देता है, विस्मय भर देता है। वह हमें पहले परम अज्ञानी बना देता है। परम अज्ञानी तो सर्वथा रिक्त है। जो जानता है कि मैं नहीं जानता, वही गुरु कृपा का अभिलाषी है। रिक्त स्थान की ही तो पूर्ति हो सकती है। भरे हुए को भरेंगे तो पश्चाताप ही होगा। गुरु हमेशा जो कुछ भी हमें समाज ने दिया है, उसे छीन लेता है और हमें समाज मुक्त कर देता है। गुरु हमें ज्ञान से मुक्त करता है, उस तथाकथित ज्ञान से जिससे हम भरे हुए हैं। इसलिए गुरु के पास बिन सीखे ही जाना पड़ता है, सर्वथा रिक्त। गुरु हमें शून्य बनाता है, क्योंकि शून्य में ही पूर्ण का आगमन हो सकता है। इसलिए गुरु शिक्षक आचार्य में बुनियादी भेद है। शिक्षक के आचार्य शब्द पर पूर्ण होता है, गुरु निशब्द पर पूर्ण होता है। हालांकि वह प्रारंभ शब्द से ही करता है, शब्द से शुरू करना होगा, क्योंकि हम जहां हैं यात्रा वहीं से प्रारंभ हो सकती है। अगर हम बीमार हैं तो औषधि से शुरू करना होगा, लेकिन औषधि अंत नहीं है, स्वास्थ्य अंत है। स्वास्थ्य का अर्थ ही है जहां औषधि की कोई आवश्यकता ही न रह जाए। गुरु हमारे एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालता, फिर कहता दोनों कांटे फेंक दो, तुम बिल्कुल मुक्त हो जाओ, निर्भर हो जाओ, शून्य हो जाओ। जब कुछ भी न रहा तभी तो हमें भरा जाएगा, प्रवचन उपदेश देने के लिए नहीं, आचरण में अंशता उतारने के लिए। इसलिए गुरु से जो संबंध है वो बुद्धि का नहीं, दो हृदयों का है। शिक्षा के आचार से संबंध बुद्धि का है। शिक्षक और विद्यार्थी में जो अंतर है वो परिमाण है, गुण नहीं है, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। शिक्षक थोड़ा ज्यादा जानता है, विद्यार्थी थोड़ा कम। अगर विद्यार्थी थोड़ा कुशल है तो कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षक से ज्यादा जान सके। भीष्म पितामह और भगवान परशुराम का उदाहरण हम सबके सामने है। गुरु और शिष्य के बीच जो भेद है वो शिक्षक आचार्य विद्यार्थी के बीच नहीं है। कम और ज्यादा का भेद गुरु शिष्य में नहीं होता। बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली विद्यार्थी अक्सर शिक्षक से ज्यादा जान लेता है। थोड़ी प्रतिभा और थोड़ा सा श्रम चाहिए बस, और आज नहीं जान पाया तो कल जान जाएगा, लेकिन इसमें गुरुता कहाँ है? अर्जुन और आचार्य द्रोण का संबंध भी शिक्षक विद्यार्थी का संबंध है। शाश्वत गुरु शिष्य का संबंध तो श्री कृष्ण और अर्जुन का था। योगिराज श्री कृष्ण ही अर्जुन के परम गुरु सखा थे। द्रोणाचार्य ने तो आचार्य शब्द का अपमान करने के लिए ही जन्म लिया था। वे द्रोण आचार्य कहे जाते हैं, न कि गुरु द्रोण। गुरु और शिष्य के बीच बिना श्रद्धा के कुछ भी घटेगा नहीं, क्योंकि वे हृदय से जुड़े हैं। प्रेम का जो चरम रूप है करुणा श्रद्धा, जहाँ वासना खो गई है बिल्कुल, श्रद्धा बुद्धि को एक तरफ रख के उत्पन्न होती है, और जो भी व्यक्ति इसके लिए राजी है उसके लिए गुरु उपलब्ध हो जाएगा। गुरु सदा प्रस्तुत है, जब हम प्रस्तुत हैं तभी उपलब्ध हो जाता है। यदि उपलब्ध नहीं है तो समझो हमारी तैयारी में ही कमी है। यहाँ होता नहीं बस हो जाता है मेल। दो हृदयों का गोटी फिट करने से शिक्षक आचार्य

0: सकते हैं, गुरु नहीं। शिक्षक या आचार्य का महत्व शैक्षणिक किसी हद तक राजनीतिक पद पदार्थ तक ही सीमित है, वह असीम नहीं। असीम तो गुरु ही हो सकता है। गुरु का शैक्षणिक पद पदार्थिक सामाजिक आध्यात्मिक ऐतिहासिक भौगोलिक यानी जीवन का कोई भी क्षेत्र उसके सांस्कृतिक प्रभाव से अछूता नहीं है। कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, आचार्य चाणक्य कहे जाते हैं, गुरु चाणक्य नहीं, क्योंकि उन्होंने सीमित उद्देश्य के लिए चंद्रगुप्त को संवारा। आचार्य द्रोण ने अत्यंत सीमित उद्देश्य के लिए अर्जुन को महान धनुर्धर बनाया, किंतु स्वामी रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद मिले, समर्थ गुरु रामदास को बालक शिवा मिले, बाला गुरु को रानी लक्ष्मीबाई मिली, दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी को पंच प्यारे मिले, तो इस गुरु भूमि भारत का भाग्य ही बदल गया। इन महान गुरुओं ने अपने समर्थ शिष्यों के द्वारा इतिहास को पलट दिया, संपूर्ण समाज को उन्होंने नव आलोक दिया। अपने संपूर्ण प्रभा मंडल से प्रदीप शिष्यों ने अपने गुरु का सांस्कृतिक महत्व ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उससे कहीं आगे की गुरु दक्षिणा भी दी। गुरु मोह में संपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले रसखान ने जब निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आवाज लगाई कि गुरु तुम कहाँ हो, तो गुरु की कब्र फट गई, दोनों हाथ बाहर निकल आए। रसखान को गुरु करुणा की इतनी गहन अनुभूति हुई कि उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए। गुरु का सांस्कृतिक महत्व तो इतना असीम है जितना आसमान है। गुरु होने के लिए किसी शारीरिक आवरण का होना अनिवार्य नहीं, ना ही शिक्षा और ज्ञान आदि के लिए मुख या शब्द आदि ही जरूरी है। बिना किसी देह और भाषा के स्वयं सृष्टि या प्रकृति पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करती है। प्रखर प्रज्ञा एवं सजल सिद्धा के सदस्य यह सृष्टि स्वयं विधाता का गुरु रूप में अवतरण है। पानी का छोटा सा बुलबुला हमें सत्य की ओर इंगित करता है कि जीवन क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं। ये चांद सूरज दिन रात हमें बताते हैं कि समय सदा एक सा नहीं रहता। कोमल घास हमें अपने अहम को विसर्जित करने तथा हर परिस्थिति का सामना करने को प्रेरित करती है। पुष्प का तो सारा जीवन ही अर्पण और समर्पण से गुथा होता है। जल और वायु जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, गुरु बनकर हमें हर पल चेताती है। ऐसे गुरु के प्रति कृतज्ञता व अनुग्रह का भाव ही हमारी सच्ची निष्ठा सच्ची श्रद्धा होगी। गुरु एक सांस्कृतिक कलाकार भी होता है। चित्रकार जड़ वस्तुओं के संयोग से एक सजीव चित्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य या संपूर्ण समाज के अंतस का निर्माण करता है। जिस प्रकार किसी राष्ट्र के प्रतिनिधि का सम्मान उस राष्ट्र का सम्मान समझा जाता है, उसी प्रकार गुरु की अर्चना भी वस्तुतः अप्रत्यक्ष रूप से आत्म साक्षात्कार ही है। क्या एक रोगी परामर्श कक्ष में प्रवेश करते ही चिकित्सक की योग्यता माप सकता है? अज्ञानी शिष्य भी गुरु की परीक्षा इसी प्रकार से करते हैं। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी की परीक्षा नहीं ली थी। शिवाजी ने भी केवल गुरु कृपा का अमृत चक्कर नौ ब्याही बाघिन का दूध गुरु चरणों में अर्पित कर गुरु की परीक्षा ली। यही तो सांस्कृतिक सूर्य है गुरु प्रताप का। गुरु पर्व उन गुरुओं के सम्मान में मनाया जाता है जो निस्वार्थ भाव से आज भी समाज को दिशा निर्देशित कर रहे हैं। विद्यालयों में प्राय 5 सितंबर को यह पावन पर्व प्रतिवर्ष भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से यह गुरु पूर्णिमा का ही आधुनिक रूप है। अपने युग की सर्वोच्च मनीषा आदि शंकराचार्य स्वयं कहते हैं, न तातो न माता न बंधु न भ्राता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जायां न विद्या न वृत्तिं नैव गतिष्ठं गतिष्ठं त्वमेका भवानी। एक तरफ कहते हैं न पिता है न माता है, एकमात्र आश्रय एवं एकमात्र इष्ट तुम्ही हो भवानी। भवानी क्या तथाकथित गुरु रूप है या पिता स्वरूप? नहीं, भवानी केवल माई हो सकती है, अन्य कुछ भी नहीं। इस निखिल सृष्टि में किसी भी प्राणी की प्रथम गुरु परम गुरु माँ के अतिरिक्त न कोई हुआ है, न कोई है और न ही कोई होगा। माँ ही आदि गुरु है, न कि आदि शिक्षक आदि आचार्य। माँ से किसी भी प्राणी का संबंध शारीरिक संसारिक होते हुए भी अशारीरिक असंसारिक है। प्राय लोग कहते हैं माता पिता गुरु देवता, न कि पिता माता गुरु देवता या गुरु पिता माता देवता। सर्वोपरि माँ का ही स्थान है जीवित ईश्वर का रूप। ईश्वर को किसने देखा? यदि देखा तो माता पिता के रूप में ही। माता द्वारा प्रदत्त संस्कार ज्ञान और भी न जाने नाना प्रकार के कौशल अभिमन्यु का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को माता जीजाबाई छत्रपति बना सकती है शिवाजी रूप में। संक्षेप में मेरा व्यक्तिगत मत है, माता गुरु दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी है मातु तुम्हारी गुरु से दियो मिलाए। मातृ शक्ति को गुरु रूप में शताधिक प्रणाम।
1: विविधा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रकाश पंत की वार्ता गुरु पूर्णिमा का सांस्कृतिक महत्व। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी आगरा केंद्र के स्टूडियो की घड़ी में 7:18 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है नया विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। कल से शुरू हो रहे श्रावण माह और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए व्यापक प्रबंध। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। और ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल में उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल हैं। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि नया विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं।
3: एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है।
2: उधर राज्यसभा ने भी राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन करेगा। प्रस्तावित विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से भाजपा द्वारा आज राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे। इस

0: अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक संत रविदास के आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे।
1: इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव गांव और घर घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। हर सच्चे भारतीय का दायित्व तो बनता है जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया उसको जमीनी धरातल पर उतार करके कर्म की साधना के माध्यम से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने भदोही का नाम संत रविदास नगर किए जाने की घोषणा की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास की जन्मस्थली पहुंचकर मत्था टेका। इस अभियान के तहत संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि की मिट्टी 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों, संगठनात्मक जिलों, मंडलों, गांवों और बस्तियों तक रवाना की जाएगी। इस आयोजन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला 20 फरवरी 2027 माघी पूर्णिमा को संत रविदास जयंती तक चलेगी। प्रदेश भर में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी, गोरखपुर, चित्रकूट, अयोध्या समेत प्रदेश की प्रमुख धार्मिक नगरियों में गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में श्रद्धालु स्नान और पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया। सारनाथ के केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान परिसर में आयोजित आषाढ़ पूर्णिमा समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन सरकार भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थ और विरासत स्थलों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है।
2: देश और प्रदेश की सरकार मिलकर के जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया गया है। और कनेक्टिविटी की दृष्टि से हवाई मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, वह भी उपलब्ध कराने का काम किया गया है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ स्थित केंद्रीय कमान के कमांड अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअली उद्घाटन किया। विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित ये देश का पहला समर्पित शैक्षणिक और परिचालन विभाग है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास राष्ट्र निर्माण के आवश्यक पहलू हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और प्रगति का मूल आधार उसकी सेना की शक्ति और मनोबल में निहित है।
3: किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और उसकी प्रगति का मूल आधार उसकी सैन्य शक्ति और उस सैन्य शक्ति का मनोबल हुआ करता है, और मनोबल का सबसे बड़ा संरक्षक यदि कुछ है तो यह विश्वास है कि जब मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूं तो मेरे पीछे एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जो हर आपात स्थिति में मुझे संभालेगा।
0: कल से शुरू हो रहे श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। लखनऊ में डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक माह के लिए ये व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से दो श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
4: जो हमारा एक मानक संचालन प्रक्रिया हमारी तैयार की गई है, उसी के अंतर्गत सारी व्यवस्था जिगजैग की, छाया की, ग्लूकोज वाटर की, ओआरएस वितरण की इत्यादि व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा प्रातः काल किया जाता है श्रावण सोमवार के दिन, और प्रथम दिवस पर इसकी व्यवस्था भी रहेगी। और इसके अंतर्गत जो हमारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है, स्नाते सभी प्रकार के विशेष अनुरोध प्रोटोकॉल दर्शन जो काशी द्वार अलग से संचालित किया गया है, वह सोमवार के दिन और प्रथम सप्ताह में शेष दिनों में भी भीड़ के अनुसार अभी तो प्रतिबंधित किया गया है।
0: ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुष

0: की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। श्री सिंह ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। गुलवीर की सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शानदार प्रदर्शन पर उनको बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सपूत और नायब सूबेदार गुलवीर सिंह की ये ऐतिहासिक उपलब्धि अथक परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी है। लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। वहीं बदायूं में गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कल भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है नया विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। कल से शुरू हो रहे श्रावण माह और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए व्यापक प्रबंध। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। और ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल में उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं परिचर्चा।
2: श्रोता मित्रों, आज हम एक ऐसे युग दृष्टा साहित्यकार जिन्होंने भारतीय संस्कृति की आत्मा को शब्द दिए, लोक और शास्त्र के बीच संबंध या संवाद स्थापित किया, हिंदी को केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारतीय जीवन दृष्टि का माध्यम माना, आज उनकी जन्म शताब्दी वर्ष में उनको स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये अवसर वर्तमान संदर्भों में अगर उनके विचारों की प्रासंगिकता को समझ पाएं, इस बात के लिए है। आज हम जिसको याद कर रहे हैं, पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी को। मिश्र जी के बारे में हम सब जानते हैं कि उनका जन्म गोरखपुर में हुआ वर्ष 1926 में। वे साहित्यकार तो थे ही, पत्रकार भी, भाषाविद भी, संस्कृत और हिंदी के प्रकांड पंडित और भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ चिंतक, जिन्होंने अपने लेखन से ये सिद्ध किया कि आधुनिकता का मतलब अपनी जड़ों से कट जाना नहीं बल्कि परंपरा के प्रकाश के सानिध्य में अपने भविष्य का निर्माण करना है। हम अपने सम्मानित अतिथियों के साथ इस परिचर्चा के माध्यम से उनकी रचना धर्मिता पर, उसमें निहित भारतीयता पर, उनके शिक्षा और ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण पर और तमाम जो ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे आज समाज जूझ रहा है और आज के संदर्भों में उनके लेखन और चिंतन से क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं, उन सब बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जयसिंह नीरज साहब, डॉक्टर शशि तिवारी जी, डॉक्टर नीलम भटनागर जी, डॉक्टर राम स्नेहीलाल शर्मा यायावर साहब। मैं आप सभी विशिष्ट अतिथियों का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार डॉक्टर साहब। शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा कि वैश्वीकरण का जो आज हम दौर देखते हैं या उपभोक्तावाद का जो हम दौर देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन जो हमने देखा है, उस परिवर्तन के दौर में जो भारतीयता की समझ या कहें सांस्कृतिक जो चिंतन है विद्यानिवास मिश्र जी का, वो आज आपको क्या लगता है कि कहीं पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गया है?
3: बहुत ही सार्थक प्रश्न आपने पूछा है विद्यानिवास जी के विषय में। दरअसल वैश्वीकरण का ये जो दौर है, इसकी सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि हमने अपने आप को भारत से काट लिया है। वह भारत जो संपूर्ण विश्व की सांस्कृतिक चेतना का उत्स है, वह भारत जो स्वयं में विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है, और वह भारत जिसके एक हाथ में विज्ञान है और एक हाथ में शास्त्र है। वस्तुतः विद्यानिवास मिश्र जी सच्चे अर्थों में प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बीच में खड़े हैं। उनके संपूर्ण साहित्य को यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनके चिंतन में निरंतर उस धुरी में है जहां से उनका चिंतन विस्तारित होता है।
2: ठीक बात।

0: राष्ट्र की निरंतरता को लोक से जोड़ने का जो काम है, वो जो पंडित जी ने किया है, वह सचमुच अद्भुत है। पंडित जी भारत को भारत की दृष्टि से देखना चाहते हैं। हमारी समस्या ये है कि हम भारत को भारत की दृष्टि से नहीं बल्कि विभिन्न आयातित विचारधाराओं के माध्यम से देखना चाहते हैं।
1: जी, जी, जी।
0: हमें याद है कि नवजागरण के दौर में पश्चिम के जो विद्वान थे उन्होंने भारत को अपने तरीके से समझने की कोशिश की और उन्होंने बराबर ये ध्यान रखा कि कहीं भी भारत हमसे ऊंचा न उठ जाए। उनके भीतर जो साम्राज्यवाद का जो एक नशा था उसमें उन्होंने भारत की ज्ञान भारत की परंपरा को दोयम दर्जे का सिद्ध करने की कोशिश की और उसी भारत को विद्यानिवास मिश्र जी ने, मैं समझता हूं कि शायद हिंदी के विद्वानों में सबसे पहले उन्होंने भारत को उसकी संपूर्ण परंपरा के साथ आधुनिकता का एक सेतु बनाते हुए उन्होंने अपने चिंतन को अभिव्यक्त किया है।
1: जी जी।
0: उनकी जो संपूर्ण चिंतन की ध्रुवी परंपरा है, अब तक परंपरा को पश्चिम के लोगों ने माना था कि ये एक विरासत है, एक श्रृंखला है। पंडित जी मानते हैं कि परंपरा जो है वो हमारी जो बंधन है उनको तोड़ती है। परंपरा जो है स्वतंत्रता का अनुशासन का स्वेच्छा से वरण है।
1: ठीक बात।
0: बल्कि हमें कहना चाहिए कि परंपरा जो है वो बिना मरे नया जन्म देती है।
1: परंपरा जो है बिना मरे नया जन्म देती है।
0: इसका आशय ये हुआ अनिल जी कि जो जीवनशील रूढ़ियां हैं उनको छोड़ती हुई परंपरा अपने अस्तित्व में ही एक नया रूप धारण कर लेती है।
2: बहुत अच्छा कहा आपने।
0: इसलिए मैं समझता हूँ कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम भारत को भारत की दृष्टि से समझें। पंडित जी का जो विजन है उस विजन को आत्मसात करते हुए हम शास्त्र और लोक इन दोनों के बीच एक सेतु रचते हुए एक नए भारत की कल्पना करें जिसके एक हाथ में कमल हो और एक हाथ में विज्ञान हो।
1: क्या बात है,
2: बहुत सुंदर।
1: डॉक्टर नीलम जी, आज अगर हम देखें तो भारतीयता की चर्चा राजनीतिक या वैचारिक बहसों में जो है वो वहीं तक सीमित होकर रह जाती है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी की भारतीयता, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें भाषा है, लोक जीवन है, परिवार है, प्रकृति है, करुणा है, सह अस्तित्व का भाव भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो क्या आपको लगता है कि भारतीयता की जो ये व्यापक व्याख्या है उसको आज की वर्तमान पीढ़ी, युवा जिसको हम लीड कर रहे हैं, तो क्या उनको उस व्याख्या को फिर से समझने की जरूरत है?
3: बिल्कुल जरूरत है। आज की युवा पीढ़ी पुस्तकों से ही दूर हो गई है, पहली बात
1: जी।
3: दूसरी बात, वो पाश्चात्य प्रभाव में है। जब विद्यानिवास जी पाश्चात्य को समझते थे लेकिन भारतीयता को स्वीकार करते थे, इसलिए उनके निबंधों में परंपरा और आधुनिकता दोनों का मेल है।
1: जी जी।
3: उनकी विशेषता देखें तो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने ललित निबंध लिखे हैं। देखिये, निबंध नीरस होते हैं, उसमें तर्क ज्यादा होता है, लेकिन उन्होंने जो ललित निबंध लिखे वो सीधे हृदय को छूते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो निबंध लिखे थे उसी को ऐतिहासिक सांस्कृतिक बोध परक सृजनात्मक ललित विचार चेतना को डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंधों ने आधुनिक विस्तार दिया। इसी प्रश्न में आपको इसी में उत्तर मिल जाएगा।
1: जी, जी,
3: आधुनिक विस्तार दिया है। द्विवेदी जी के निबंधों की ललित शैली का विद्यानिवास के निबंध सच्चे अर्थों में लालित्य बोधीय आलोक फैलाते हैं। लालित्य भी है और आलोक भी है। इनमें लोक संवेदना और लोक हृदय की पकड़ बड़ी मर्मस्पर्शी है। लोक के साहित्यकार हैं ये। विद्यानिवास जी ने लोक को छोड़ा नहीं है, इसलिए जो आपका प्रश्न था कि युवा समझ ले, वास्तव में इनके निबंध युवा की बुद्धि को खोलता है। यदि वो पढ़े तो उन्हें समझ में आएगा कि हमारा भारत क्या है, हमारे गाँव क्या है, हमारे परिवार में क्या परंपराएं हैं, ये सब इनके निबंधों में मिलती हैं। इन ललित निबंधों के संवेगों की गंध प्राणों की जातीय स्मृति, संस्कृति का नकली अनुकरण और आज के मानव का खोखलापन मिश्र जी के निबंधों में दर्द बनकर उभरता है।
0: वाह,
1: आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो विद्यानिवास जी की जो लेखन शैली है, जो उसमें जो जिस सरल भाव से उन्होंने लोक जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया है, उजागर किया है, शायद आज की पीढ़ी को उसके पास पहुंचने की जरूरत है। डॉक्टर शशि जी, विद्यानिवास मिश्र जी की सबसे बड़ी विशेषता, जैसा कि डॉक्टर नीरज जी ने बताया था कि लोक और शास्त्र दोनों को उन्होंने समान रूप से, चाहे गांव की मिट्टी की सुगंध हो उसको भी उन्होंने शास्त्रीय चिंतन से जोड़ा है, लोक परंपरा

0: उनके हिसाब से कहें समाज की जीवंत स्मृतियां हैं। तो लोक और शास्त्र के संबंध में या जो आज का समाज है, क्या आपको लगता है कि उस लोक बोध से थोड़ा सा दूर होता जा रहा है?
1: आपने ठीक कहा, लोक बोध को छोड़ रहा है आज का समाज, तो उसे वापस लोक की तरफ लौटना होगा, क्योंकि हमारे देश की जो आत्मा है वो लोक जीवन में, गांव के जीवन में बसी हुई है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी के लिए मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम प्रखरता और वैचारिकता और तेजस्विता
0: जी,
1: और सबसे बड़ी बात उनकी सौम्यता, अगर इसका संश्लेष हम देखना चाहें तो ये सब एक साथ मिश्र जी के विचारों में, उनके द्वारा जो प्रवाहित की गई है परंपरा की धारा उसमें और उनकी विरासत में जो कुछ वो छोड़कर गए हैं अपने लेखन के माध्यम से, उसमें सब में स्पष्ट झलक दिखाई देती है। वो एक प्रखर शिक्षाविद तो थे ही, उनकी दृष्टि दार्शनिक और आध्यात्मिक परिवेश से भी संपृक्त थी।
0: बिल्कुल ठीक बात,
1: उसकी अनुगूंज जो है उनकी लेखनी में हमें
0: नजर आती है,
1: हर अक्षर में सुनाई देती है। जब हम मिश्र जी की विरासत की बात करें या उन्होंने जो कुछ आज के समाज के लिए छोड़ा है और जो वो इस लोक जीवन का एक संदेश अपने साहित्य के माध्यम से चेतना के रूप में दे गए हैं, उस चेतना को समाज को ग्रहण करना पड़ेगा। ये आपकी बात का मैंने उत्तर दिया। और विरासत की बात पर जो मैं आई प्रसंगवश
0: जी,
1: वो हमें डॉक्टर मिश्र जी वट वृक्ष के जैसे दिखाई देते हैं। उस आने वाले ये जो युग है उसके लिए उनके पास बहुत कुछ है, और आज के युवा पीढ़ी जो है, आज के जो साहित्यकार हैं, इस वट वृक्ष से क्या क्या ले सकते हैं? देखिए, शिक्षा ले सकते हैं, वेदों का ज्ञान ले सकते हैं, दर्शन, धर्म, कर्म, चेतना, नवोन्मेष, साधना और भक्ति, प्रेम, ये भी उन्होंने ढूंढा। देखिए, क्योंकि वो लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, हृदय से जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने प्रेम और भक्ति का भी दर्शन उसमें किया है। उनके काव्य में और उनके निबंधों में, जैसा कि अभी नीलम जी ने भी कहा कि ललित निबंध उनके बड़े सुंदर है, उनके वैचारिक निबंध भी बहुत सुंदर है, क्योंकि उसमें शास्त्रीयता की उजास है लेकिन लोक का अनुरंजन भी है, माटी की सुगंध भी है।
0: बिल्कुल,
1: भाषा का सौष्ठव है, शिल्प का लालित्य है, भाव है, चिंतन है, और इन सबके पर है रस। वो माटी की सुगंध में ही रस को भी खोज लेते हैं। ऐसा लगता है कि उनसे कुछ छूटा नहीं है। मैं संस्कृत की विद्यार्थी हूँ प्रमुख रूप से, तो संस्कृत में कहा गया है कि बाणो सृष्टम जगत सर्वम। बाण भट्ट के लिए कहा गया है कि उन्होंने जो कुछ कह दिया तो लगता है कि जैसे अब कुछ कहने को शेष नहीं रहा, और जो कुछ आगे कहा जाएगा तो वो उनके साहित्य की जूठन ही होगी। तो मुझे लगता है कि आज के आधुनिक बाण भट्ट, यदि हम किसी को कह सकते हैं, तो पद्मभूषण डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी को कह सकते हैं। उनकी विरासत जो है, देखिए परंपरा की अभी बात चली थी, डॉक्टर नीरज जी ने बहुत प्रबुद्ध शब्दों में इस बात को व्यक्त किया था कि उनकी विरासत पारंपरिक भी है और विचारोद्बोधक भी है। उनकी विरासत में एक सुदीर्घ साधना के दर्शन होते हैं हमें। उनकी लेखनी मानो सिद्ध नहीं होना चाहती। मैंने स्वयं आत्मिक रूप से ये अनुभव किया है, मुझे इस समय रोमांच हो रहा है कहते समय, कि उनकी लेखनी सिद्ध नहीं होना चाहती थी, वो साध्य के लिए समर्पित होके साधना करती रहती है, हमें ऐसा लगता है। उनकी विरासत में अमृतत्व भी है और उस अमृतत्व की अनवरत वो खोज भी करते रहते हैं। भारतीय मनीषा की वैचारिकता भी मिलती है और एक समग्र जीवन दृष्टि भी मिलती है जो समग्र भारत के प्रति समर्पित है। उनकी वैचारिकता इतनी सरल सहज है कि वो गांव की माटी में बसे हुए गांव के मन को देख लेते हैं।
0: बिल्कुल ठीक बात,
1: टटोल लेते हैं। टटोलना शब्द ज्यादा उपयुक्त रहेगा। उन्होंने गांव का मन इस नाम से एक ललित निबंध संग्रह भी लिखा, उनके बहुत से निबंध संग्रह हैं। इसी क्रम में मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि डॉक्टर मिश्र की विरासत में हमें एक विचारक, एक साहित्यकार या पथ प्रदर्शक के साथ साथ एक पत्रकार भी मिलता है। पत्रकार की बात अभी तक नहीं हुई थी तो मुझे लगा कि मैं
0: आपने नया आयाम उसको दिया
1: जी। आज के युग में पत्रकारिता का भी बड़ा आकर्षण है। देखिए, अंग्रेजी में हम कहें तो बड़ा ग्लैमर है ना, इतना आकर्षण है कि आज के पत्रकार अगर चाहें तो डॉक्टर मिश्र की निष्पक्ष और बेबाक और ईमानदार पत्रकारिता से आज बहुत कुछ सीख सकते हैं आज का समाज।
0: बिल्कुल ठीक कहा कि उनके जो रचनाएं हैं, उनके जो निबंध हैं, उसमें मानवीय संवेदनाएं भी हैं, सांस्कृतिक चेतना भी है, दर्शन भी है, लोक जीवन भी है, और बड़े सहज रूप में है। डॉक्टर यायावर साहब, यहाँ आपको मैं बीच में लाना चाहूंगा।

कि भारतीय दृष्टि में शिक्षा हो या ज्ञान हो, आज के दौर में देखें तो शिक्षा को रोजगार की प्राप्ति का साधन भर माना जाता है, लेकिन डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी की जो दृष्टि है उसमें वो शायद शिक्षा के उद्देश्य को मनुष्य को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। आज जो नई एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो डॉक्टर साहब की जो एक उनके लेखन का एक विशिष्ट जो बात रही है कि उन्होंने अपनी मिट्टी, भाषा और समाज से अपने आप को जोड़ के रखा है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो कौशल पे आधारित ज्यादा दिखाई देती है, तकनीक पे ज्यादा केंद्रित है। आज एक क्लिक में आपको हर चीज आपके फिंगर टिप्स पे है। अब AI की बातें हो रही हैं, एक नया ऐसा युग जिसमें हमें नहीं मालूम कि हमारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं या हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है उसकी भूमिका क्या

0: हैं या हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है उसकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि मशीनें जो है वो जानकारी तो दे सकती हैं लेकिन शायद वो संवेदनशील दृष्टि का उसमें अभाव है। ऐसे में मिश्र जी के विचार, जैसा कि डॉक्टर शशि तिवारी जी ने कहा था और डॉक्टर नीरज जी ने भी कहा था कि आधुनिकता का भी उसमें समावेश है, वो संतुलन बैठाने की कोशिश उन्होंने की है। तो आप क्या सोचते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा को जो आज की नई जो शिक्षा नीति है या जो शिक्षा का एक दर्शन है उसमें किस तरह से समाहित किया जा सकता है?
1: अनिल जी, मैं समझता हूं कि भारतीयता की जो ज्ञान परंपरा है
0: जी,
1: वो वाचिक अधिक है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो वाचिक ज्ञान संप्रेषित होता रहता है। मिश्र जी इस बात से परिचित हैं, इसलिए वे वाचिक ज्ञान को अपने ललित निबंधों में समाहित करते हैं और केवल समाहित नहीं करते, वे उसको नया आकार, नया रूप और आज के समय के लिए प्रासंगिकता देते हैं। मैं उनके निबंध आम्रमंजरी की चर्चा करूं
0: जी,
1: तो वे आम्रमंजरी से शुरू करके आम्रमंजरी की साहित्यिक प्रासंगिकता और फिर उसकी पारंपरिक उपयोगिता, इन दोनों विषयों पर ले जाते हैं। अवधि की वाचिक कविता को और भोजपुरी की वाचिक कविता को उन्होंने संपादित किया और एक विशेष बात कही कि हिंदी में आंचलिक बोलियों के शब्दों का समावेश होना चाहिए। हम देखते हैं कि राजभाषा इतनी संस्कृत निष्ठ और तत्सम बहुला हो कर दी गई है कि सामान्य जो कर्मचारी है उस भाषा को समझ ही नहीं पाता, और अंग्रेजी में पत्रावलियां तैयार होती हैं, हिंदी के अनुवाद में लिख दिया जाता है कि अगर समझ में न आए तो अंग्रेजी के मूल को देखें। अजीब बात है, आज 70 साल बाद भी हम अंग्रेजी में पत्रावलियां तैयार करें, प्रपत्र तैयार कर रहे हैं, तो उनका कहना है, बहुत सारे शब्द हैं जैसे भाषा विज्ञान के संबंध में जो अंग्रेजी के लेखक होंगे उन्होंने कहीं कह दिया कि हिंदी में जो गर्भ प्राप्त करने वाली महिलाएं उसके लिए कोई उचित सम्मानजनक शब्द नहीं है, अंग्रेजी में उसके लिए फैमिली वे है, जबकि असत्य है। लोक भाषाओं में सैकड़ों शब्द हैं, दुजान है, पांव भारी है, आशाशय है, उन शब्दों को हिंदी में लाना चाहिए ना, हम क्यों अंग्रेजी के संस्कृत वाले शब्दों पर और तत्सम शब्दों पर ही उठे रहे। ये उनकी उनका उनका दृष्टिकोण था, मेरी जहां तक मानता है, और उस लोक संस्कृत के शब्दों में वे आम्रमंजरी, हल्दी, दूब, बर्तन पकाने वाला आमा, इन सारी चीजों पर लेते हैं। और एक दूसरा विषय जो मुझे लगता है उनके अवदान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है
0: जी,
1: वो ये है कि हमारे काव्यशास्त्र में लगभग 20-25% पाश्चात्य काव्यशास्त्र है और 75% संस्कृत काव्यशास्त्र है, इसे मिलाकर के हिंदी का काव्यशास्त्र बनता है। हमने शैली विज्ञान को अपना लिया, वो पश्चिम का है, तो शैली विज्ञान को डॉक्टर मिश्र रीति विज्ञान करके और उस पर नई पुस्तक लिखते हैं और उसे अपनी परंपरा से जोड़ा। माने शैली विज्ञान कोई नया तत्व नहीं है जिसे हम ये मानकर चले कि वो पाश्चात्य सभ्यता से या काव्य शास्त्र से आया है, वो हमारे रीति शास्त्र का एक
0: नया पहलू है,
1: नया पहलू।
0: डॉक्टर नीरज जी, मैं आपसे अगर पूछूं कि आज की जो पीढ़ी है, आज के बच्चों को अगर देखें तो कहानियां जो है वो स्क्रीन से पढ़ते हैं
1: जी,
0: या स्क्रीन के साथ कहानियां देख के बड़े होते हैं। लोक कथाएं हुई, नाना नानी की कहानियां हुई, दादा दादी की बातचीत हुई, लोक गीत हुए या पारिवारिक जो एक संवाद हुआ करता था वो शायद अब दिखाई नहीं देता। सांस्कृतिक भविष्य आप किस तरह से देखते हैं, ये जो समकालीन चुनौतियां हैं, और मिश्र जी का जो कहना है कि आप जो है लोक और शास्त्र और जो लोक जीवन है उसको जो है केंद्र में रख के उन्होंने सारी अपनी रचना धर्मिता निभाई है, तो आज की जो पीढ़ी है जिसमें बिल्कुल नई तकनीक के साथ वो बड़े हो रहे हैं, तो इन चुनौतियों के बीच में जो भारतीयता का पुट है उनका, उसको आप किन अर्थों में हमारे श्रोताओं के समक्ष रखेंगे?
2: देखिए, कभी कभी मिश्र जी अपने आप को भ्रमरानंद कहा करते थे, यानी भंवरा जो है वो रस हर जगह से लेता है, उस मिठास को लेता है, फिर वो लौटा भी देता।
0: क्या बात है।
2: इसी तरह से आज की जो वर्तमान जो हमारी पीढ़ी है, जो सुविधा भोगी भी है और उसके दिमाग में सूचनाओं का अपार संग्रह
0: अतिरेक हो रहा है,
2: यानी ज्ञान का स्थान सूचना ने ले लिया है, और मिश्र जी जो है वो उनका ये कहना है हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो ज्ञान परंपरा आधुनिक जो चिंतन है उससे बराबर जुड़ी रहे। दरअसल लोक क्या है, लोक

0: लोगों का समूह नहीं है। लोक जो है वो हमारी जो संपूर्ण सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनका समुच्चय है। एक बात और कि हमारी युवा पीढ़ी अब गांव को नहीं जानती, गांव से कट गई है, बल्कि उनसे पुरानी पीढ़ी भी गांव से कट गई है। और मिश्र जी का जो अधिकांश साहित्य है उसमें उनका ग्रामीण मन अभिव्यक्त होता है।
1: बिल्कुल,
0: ये बहुत बड़ी बात है। गांव उनके साथ हर जगह मौजूद है। इसलिए अगर हमारी युवा पीढ़ी उस गांव के मन को समझ सके और हमारे उनके जो माता पिता हैं उन्हें गांव के विषय में बता सके तो संभव है कि जो भारतीयता है वो कहीं ना कहीं उनकी धमनियों में बहने लगे। इसलिए मिश्र जी जो है हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक कुतुब नुमा है। जैसे जहाज में कुतुब नुमा दिशा का निर्धारण करता है, वैसे ही वो आज का जो ये भोगवादी जो मानस है उसको सही दिशा देने में सक्षम है।
2: डॉक्टर तिवारी जी, आप चूंकि बहुत जो एक लोक का भाव है, आप लोकगीत से भी आपने लोगों तक पहुंच बनाई है। आज जो समाज की चुनौतियां हैं, चाहे वो सांस्कृतिक विखंडन की बात हो या भाषाई संकट की बात हो, उपभोक्तावाद की बात आपने की, या जो आजकल एक जो सामाजिक असंवेदनशीलता है, परंपराएं हैं और आधुनिकता है, उसके बीच जो बढ़ती एक खाई है, समाज बड़ी तेजी से बदल रहा है, तो हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है या जो विरासत जिसकी बात हम आज कर रहे हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी के संबंध में
3: जी,
2: उससे नई पीढ़ी क्या जुड़ पाएगी, या जो आज की तकनीक की चकाचौंध है उसमें हमारी जो लोक स्मृतियां हैं वो धुंधली पड़ जाएंगी?
3: नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि साहित्य की शक्ति जो है वो अनवरत हर काल में रहती है। स्वयं रचनाकार भी देश और काल की परिधि से परे होता है।
0: सही बात।
3: वो तो युगों युगों तक अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से अमर रहता है। संसार से जाने के बाद भी हम उसे कभी भूल नहीं सकते। यदि उसकी रचना में शक्ति है, उसकी रचना में संदेश है, उसकी रचना में परंपरा है, उसकी रचना में यदि भारत का दिल धड़कता है, तो वो आज के युग के समीप और आ जाती है। चाहे भले ही आज AI का युग आ गया हो और जेन जी की भी बहुत बात हो रही है। अभी कुछ समय पहले तक आपने देखा कि जेन जी की ओर से कितना आंदोलन खड़ा किया गया। वो इसीलिए सब हो रहा है कि उन्होंने डॉक्टर मिश्र जी जैसे साहित्यकारों को पढ़ा ही नहीं है, उनको हृदयंगम नहीं किया है। डॉक्टर मिश्र जी की जो रचना की गंगा है वो शास्त्रीयता और परंपरा के हिमालय से निकलती है और बहते बहते वो लोक की माटी के कण कण में आके समा जाती है।
2: क्या बात?
3: और उसकी जो सुगंध निकलती है
2: उससे शायद आज की पीढ़ी
3: उस सुगंध को यदि अनुभव करने के लिए आज की पीढ़ी तैयार हो जाए, और उसे तैयार करना हमारा दायित्व है। जो हमने अपने बड़ों से, डॉक्टर मिश्र जी जैसे लोगों से सीखा, यदि हम आज की पीढ़ी को उसको स्थानांतरित करें तो ये हमारा उत्तर दायित्व बनता है।
0: सही बात।
3: और यदि हम इसे करने में सफल रहे तो आज की पीढ़ी, चाहे AI का युग आ जाए, चाहे जेन जी आंदोलन करे, कुछ भी हो, लेकिन उनका साहित्य अडिग है और अपने सिद्धांतों पर डटा हुआ है। ऐसे कालजयी रचनाकार को तो बारंबार प्रणाम ही करना चाहिए और उनकी बताई हुई जो बातें हैं उनका अनुसरण हमें करना है, क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हम भारतीयता से और भारत के का मन जो गांव में बसा रहता है उससे और लोक से हम दूर होते चले जाएंगे। तो हमें शास्त्रीयता और परंपराओं को भी थामे रहना है, और उसके बीच में जो डॉक्टर मिश्र जी ने एक सेतु का काम किया, जैसे डॉक्टर नीरज जी ने भी कहा, आपने भी वही बात कही कि सेतु का काम जो डॉक्टर मिश्र जी ने किया है, उस सेतु पर हमें दृढ़ता से खड़े रहना है ताकि हम दोनों छोर को संभाल सकें और उन दोनों छोर से जो संदेश आ रहा है वो हम आगे आने वाली पीढ़ी को संप्रेषित कर सकें। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि डॉक्टर मिश्र जी को जैसे गांव की माटी से प्यार था, ऐसे ही हम उनके मैं चश्मदीद गवाह हूं कि उन्हें गंगा से भी बहुत प्यार था। गंगा के तट पर वो जो आत्मिक आनंद का अनुभव करते थे वो मैंने स्वयं देखा है। इसीलिए उनकी लेखनी में गंगा जैसा शैत्य और पावनत्व हम देखते हैं। वो शीतलता, वो पावनता गंगा से उनके हृदय में आई, उनकी लेखनी में आई,
2: और
3: उनकी

0: फिर जन जन तक
1: उनकी रचनाओं में आई और वो जन जन तक पहुंची उनके जीवन काल में भी और अब आज बाद में भी जन जन तक पहुंच रही है। बस उसको पढ़ने की देर है कि उन्होंने क्या लिखा है और उसे हृदयंगम करने की देर है और आज का नई पीढ़ी का सोच है वो भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, ये मेरा दावा है।
2: एक बात मैं कहना चाहूंगी
0: जी जी
2: कि नई पीढ़ी को यदि उनके निबंधों के नाम बता दिए जाएं वो आकर्षित हो जाएंगे। चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी,
1: ना कौन तू फुलवा बीनन हारी,
2: हाँ कौन तू फिल। इसके अलावा जहां मन आंगन का पंछी बनकर चहका वहीं उनका बंजारा मन टिक गया, विगत और आगर अनागत दिशाओं में घूमने फिरने के लिए अकुलाता रहा। और सबसे बड़ी बात एक है कि उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं।
3: बिल्कुल सही बात।
2: कवि मना डॉक्टर मिश्र ने अवकाश के क्षणों में कविताएं भी लिखी हैं। इनमें उनका चित्त निर्बंध होकर विचरण करता है लेकिन अपने आस्थावादी थे वो, आस्थावादी स्वर के बावजूद उत्तर गोविंद कविता संकलन की एक कविता में आप आज के मनुष्य के त्रासदी के बारे में दो टूक कहने में नहीं चुके। कहते हैं ना कोई घर रहेगा ना घरवाली, ये आज की स्थिति को कैसे उन्होंने देखिए संकेत क्या है, ना कोई घर रहेगा ना घर वाली, सब होंगे आखे टक। आज के अखबार पढ़ रहे हैं सब होंगे आखे टक, सब होंगे आखेट, आखेट युग आ गया है जहाँ घर नहीं होता। देखिए कितनी मार्मिक बात उन्होंने उस समय कह दी है। और वैसे जैसा उनका नाम था विद्या निवास, उनके में तो विद्या निवास ही करती थी,
1: विद्या की देवी,
2: और इसीलिए उन्होंने ऐसे अंदर निबंध लिखे हैं जो हमारे दिल को छूते हैं।
3: अनिल जी एक चीज और है
0: जी जी
3: जो शायद छूटी जा रही है
0: जी।
3: हम लोगों ने शास्त्र पर बात की है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की, एक हमें ये जानना होगा कि वो साहित्य को किस दृष्टि से देखते थे। और उन्होंने एक स्थान पे कहा है कि जो रचता है वो चिंतित रहता है। एक रचनाकार जो है उसके भीतर जो वैचारिक मंथन होता है, विक्षोभ होता है, वो जो है वही साहित्य में अभिव्यक्त होता है। इसलिए वो साहित्य को संवेदना और रस में पाकर हमेशा प्रस्तुत करते हैं। विक्षुब्धता को रसमयता तक ले जाना ये मिश्र जी की काव्य यात्रा का चरम सोपान है। मुझे इतनी बातों के लिए
0: डॉक्टर यायावर साहब, विद्यानिवास मिश्र जी के वैचारिक चिंतन को अगर हम समराइज करना चाहें तो वो केवल हिंदी साहित्य भर का विषय तो है नहीं
3: जी।
0: हमारी, आपको कैसे लगता है कि वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है या उसकी जो निरंतरता है उसका जीवंत एक दस्तावेज है?
4: ललित निबंधकारों की त्रयी है, जयप्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और आचार्य पंडित जी विद्यानिवास मिश्र जी। इस त्रयी में जयप्रसाद जी ने तो विविध विषयों को लिया और खास करके संस्कृत से संबंधित विषयों को लिया। कुबेरनाथ राय ने राम की परंपरा को आधुनिकता से जोड़ा और उसकी ऐसी विशद व्याख्या की जो अद्भुत है। मिश्र जी व्यापक जीवन के साथ संपर्क जोड़ते हैं और खास करके जो कविता की भावपरक व्याख्या है ये उनका बहुत बड़ा अवदान है। वो शास्त्रीयता, कविता की व्याख्या करते समय शास्त्रीयता के फेर में नहीं पड़ते। मैं समझता हूँ कि ललित निबंध को आधा काव्य और आधा शास्त्र मानना चाहिए। आधा काव्य आधा शास्त्र वो ऐसे है जैसे एक तो खुला हुआ पशु है जो चारागाह में छोड़ दिया जाए तो उसका उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये विचारों बहुत बड़ी रस्सी से बांध दिया जाए किसी पशु को तो वो उतने ही क्षेत्र तक जाएगा जितना क्षेत्र उसका रस्सी में बंधा हुआ है। तो ठीक ऐसे ही आप विचारों को मान लीजिए कि वे फैलते तो हैं, काव्य की ओर जाते हैं परंतु लौटकर आ अपने खूंटे पर ही जाते हैं। जो विषय लेते हैं उसी विषय पर चिंतन केंद्रित होता है। ललित निबंध का लालित्य और अज्ञे जी ने उनके संबंध में एक विशेष बात और कही है कि मिश्र जी अपने ललित निबंधों में लालित्य उड़ेलते नहीं है, वे अपने पाठक में लालित्य उपजाते हैं।
1: ये जो आपने बात कही मैं कहना चाहूंगी कि ये साधारणीकरण की प्रक्रिया पर आश्रित है।
4: हाँ बिल्कुल,
1: ये बात
4: बिल्कुल।
1: जब लेखक की लेखनी से जो विचार निकल रहे हैं वो सहृदय पाठक के हृदय तक पहुंच जाए
4: बिल्कुल,
1: तो एक साधारणीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। वो स्वयं को उसी स्थिति में पाठक अनुभव करने लगता है कि मैं उसी स्थिति में पहुंच गया जिस स्थिति में वो रचनाकार है।
4: भावकत्व व्यापार हो जाता है। हाँ,
1: तो वो भावकत्व व्यापार जो है तो उसके आधार पर हम ज्यादा अच्छी तरह से डॉक्टर मिश्र जी को

0: या किसी भी रचनाकार को हम समझ सकते हैं।
1: दौर भले ही आधुनिकता का हो, लेकिन समय का सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो शायद यही है कि विकास कहा जाए तो किसे कहा जाए। हमको अपनी जड़ों से जुड़े रहना पड़ेगा, भारतीयता को, उसकी विरासत को समझना पड़ेगा। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी के व्यक्तित्व को लेकर आज जो हमने बातें की इस परिचर्चा के माध्यम से, तो वो ये बात तो बिल्कुल बताती ही हैं कि वो भारतीय आत्मा के एक व्याख्याकार हैं। उनका जो वैचारिक चिंतन है, उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, आज जन्मशती के इस मौके पर उनके शब्दों, उनके विचारों, उनके चिंतन से प्रेरणा लेते हुए जो जीवन दृष्टि ग्रहण की है, उसको शायद हम आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा पाएं, ऐसा एक संदेश आज की परिचर्चा के माध्यम से शायद हमने अपने श्रोताओं को दिया होगा। डॉक्टर तिवारी जी, डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर नीलम जी और डॉक्टर यायावर साहब, आप सब इस परिचर्चा में हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ हमारे स्टूडियो आकर जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार।
2: आपका भी धन्यवाद।
0: अनेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा संचालन आपने किया, धन्यवाद।
3: अभी आप विशेष परिचर्चा सुन रहे थे, विद्यानिवास मिश्र, विचार और विरासत, प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी आगरा केंद्र के स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्मों सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होंगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष

बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा, हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्ता पक्ष के टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं, मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13 के 3 में और संशोधन करना है ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट, एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जता

आते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल दो अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके दो ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधामोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेद की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधवराव गोपछड़े, डॉ अनिल सुखदेवराव बोंडे और डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे होगी। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्तापक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी जमीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष

0: नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फकीरे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे।

साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। श्रोताओं, गीत तो ये हमने आपको मनोरंजन के उद्देश्य से सुनाया था, लेकिन इसके अर्थ बड़े गहरे हैं। जिसे हम एक मुहावरे में कह सकते हैं, बंदर के हाथ नारियल लग जाना, यानी अयोग्य या मूर्ख व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु या अधिकार का मिल जाना। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कभी भी अपने पद या अधिकार का सदुपयोग नहीं करेगा, बल्कि जहां वो कार्य करता है उसे बर्बाद कर देगा, वहां कार्य करने वालों का नुकसान करेगा। क्योंकि उसके पास पद है, मान और सम्मान है, तो वो उसे पचा कैसे सकता है। कहा भी गया है, प्रभुता पाए काहे मद नाही, यानी कि प्रभुता मिल जाए, ऊंचा ओहदा मिल जाए, तो मद तो अपने आप आ जाएगा। जब वो कार्य करने वालों का वहां नुकसान करेगा, हाँ, अयोग्य और चाटुकार लोगों के लिए अच्छा प्रयास अवश्य करेगा, यानी कि अयोग्य व्यक्ति

जी श्रोताओ, इस तरह के लोग जो होते हैं खुद तो अयोग्य होते हैं, योग्य लोगों से सही से बात भी नहीं करते, चेहरा छुपा के रखते हैं। यानी दो चेहरे होते हैं ऐसे लोगों के, एक कुछ और होता है, यानी बाहर कुछ और अंदर कुछ और। और ऐसे लोगों की जब भनक लोगों को लग जाती है तो वो उनसे खुद ब खुद दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां बात केवल असली नकली चेहरे या फिर दोहरे चरित्र की नहीं है, बल्कि अयोग्य और दोहरे चरित्र वाले लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं और आपका नुकसान कर सकते हैं। कुछ तो जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे मुकाबले कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हमें तो ये नसीब हो गया, हमें तो ये मिल गया, हमने तो ऐसे प्राप्त किया है। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे समाज की भी परवाह नहीं करते ऐसे लोग, और आपके घर परिवार आपके रिश्ते नातों को तोड़वा देते हैं। ऐसे लोगों की केवल नजर ही बुरी नहीं होती दोस्तों, बल्कि उनका चेहरा भी काला होता है।

दोस्तों, जिनके मुंह काले हैं, जो बुरी नजर वाले हैं, ये तो आपका कभी भला चाहेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और जानते हैं, सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब आपका कोई अपना ही इन बुरी नजर वालों से नजरें मिलाने लगे। आपके हक में ना बोलकर उन बुरी नजर वालों के हक में जाने लगे, तो ऐसे लोगों से शिकायत करना भी अपनी मोहब्बत की तौहीन करना ही हो जाता है।

0: श्रोताओ, जब कहीं किसी संस्थान को, किसी परिवार को अच्छे योग्य व्यक्ति मिलते हैं तो यकीन मानिए ये उस संस्थान का, उस परिवार का सौभाग्य होता है। इसके उलट जब अयोग्य व्यक्ति के साथ आपको कार्य करना पड़े तो ये आपका, आपके संस्थान का दुर्भाग्य होता है। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग या योग्य लोग नहीं है, बहुत है। हमने बहुत से कुशल लोगों के साथ कार्य किया है, उनके कार्य के लिए हम आज भी उन्हें तहे दिल से याद करते हैं। एक तरफ इंतजार करते हैं कि अयोग्य व्यक्ति से हमें कब छुटकारा मिले, तो दूसरी ओर हम सोचते हैं कि अच्छे योग्य सभ्य मर्यादित लोगों का कभी साथ न छूटे।
1: अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहां फिर मुला

आम अवतार और निकाह फिल्मों के गीत सुने। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, प्रयागराज, आनंद बख्शी और हसन कमाल। आवाजें थी किशोर कुमार, पंकज मिश्रा, शबीर कुमार, मोहम्मद अजीज, महेंद्र कपूर और साथियों की। संगीत रवि, आनंद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और एसडी बर्मन का था।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा क्या? आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
2: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
3: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशन थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
2: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक के कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
4: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
2: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
5: संसद के दोनों

0: सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
2: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठीचार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
1: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
3: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
4: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला

0: पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
1: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
2: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपराध अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया।

0: among a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assured medals for the country after sealing semi-final berths. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। लोकसभा में पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल मंजूर हो गया है, जिसमें सख्त जुर्माना आयद किए जाने और इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम किए जाने के इल्तिजामात हैं। राज्यसभा ने वंदे मातरम को कौमी तराने की तरह कानूनी तहफ्फुज फराहम करने से मुतालिक कानून मंजूर कर लिया है। इसने कौमी गीत की तौहीन को जुर्म करार दिया है। ओडिशा में सैलाब के सबब 4 अमवात और तकरीबन 4 लाख लोगों के मुतासर होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी शदीद बारिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक दफ्तर ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहरीन पर की गई कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया है। इसमें हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 40 हो गई है। और दौलत मुश्तरका खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही मुल्क के लिए तमगे यकीनी कर लिए हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। ये बिल पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। इस कानून में 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और कसूरवार ठहराए गए अफराद की इमलाक को जब्त किए जाने समेत मुख्तलिफ अहम इल्तजाम हैं। बिल पर बहस का जवाब देते हुए अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बिल तलबा और नौजवानों की फलाह बहबूद के तहफ्फुज के खातिर हुकूमत के अज़्म का इयादा करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के इल्जाम का जवाब देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि हुकूमत ने बार बार ये वजाहत की है कि कोई गोली नहीं चली और सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इससे कबल बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि नीट मामले पर तलबा का एहतजाज तशद्दुद या नफरत नहीं था, बल्कि नौजवानों का एक शदीद इजहार था और सभी सियासी पार्टियों को इसका एहतराम करना चाहिए। राज्यसभा ने कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। ये बिल कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक कानून 1971 में मजीद तरमीम करेगा। मुजवजा कानून कौमी तराने, जनगण मन की तरह वंदे मातरम को कानूनी तहफ्फुज फराहम करेगा। इसकी खिलाफवर्जी पर 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस बिल को मंजूर किए जाने के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026, जबकि राज्यसभा में कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर किया गया। दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में पैदायश और अमवात के इंदराज से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। ऐवान जेरी ने एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक कानून का जायजा लेने वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत कार में भी पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास 2026 के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक तौसी कर दी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई आज नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से मुलतवी करना पड़ी और इस वजह से दोनों ऐवानों में

0: रफाए सवालात नहीं हो सका। कल लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाना है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की जानिब से मरकजी वजीर दाखिला पर आज लोकसभा में किए गए तबसरे पर एसपी सिंह बघेल, रामदास आठोले और हर्ष मल्होत्रा समेत कई मरकजी वजीरों ने तनकीद की है। पार्लियामेंट के अहाते में आकाशवाणी से खसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर की जानिब से ऐवान में इस्तेमाल की गई जबान पार्लियामानी कार्रवाई के लिहाज से गैर मुनासिब थी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क तकरीबन 6 दहाइयों के तशद्दुद के बाद बाएं बाजू की उस इंतहा पसंदी से आजाद हो गया है जिसे कभी दाखिली सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा तस्वुर किया जाता था। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने बताया कि ये हसूलियाबी बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से निमटने के लिए कौमी पॉलिसी और एक्शन प्लान के मजबूत नफाज और मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान तालमेल पर मबनी कोशिशों की वजह से मुमकिन हो सकी। जनाब राय ने ऐवान को बताया कि फिलहाल कोई भी जिला बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा करार नहीं दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे ने हालिया बरसों में हुकूमती इकदामात और सनती इस्लाहात की बदौलत काबिले जिक्र तब्दीली का मुशाहिदा किया है। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में जनाब वैष्णव ने कहा कि मुल्क बतदरीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर उभर रहा है। जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड ईडीएफ हुकूमत हिंद की एक ऐसी ही पहल है जिसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में मार्केट से तहरीक पाने वाली इख्तरा को फरोग देना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा के ज्यादातर हिस्से में लगातार सैलाब और नदियों में पानी की कसीर मकदार ने रियासत को संगीन इंसानी बहरान में मुब्तला कर दिया है। इसके नतीजे में 4 लोगों की मौत हो गई है और हजारों अफराद बेसहारा हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि 304 ग्राम पंचायतों के तकरीबन 3,80,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि इंतजामिया ने तेजी से बदलती सैलाबी सूरत हाल और उथल पुथल भरे हालात के दरमियान राहत और बचाव कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। सतह आब में हुए इजाफे की वजह से बेतरानी नदी केवंझर, जाजपुर और भद्रक जिलों के अपने तास में कहर बरपा कर रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालासोर में सैलाब की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक बनी हुई है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने नवापाड़ा, कालाहांडी, नबरंगपुर और कोरापुट जिलों में शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे सैलाबी सूरत हाल के मजीद बिगड़ने के खदशात बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में गुज़श्ता 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत के कई जिलों में रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर है। बस्तर डिवीजन, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी समेत मुख्तलिफ जिलों में बड़ी नदियों में तुगयानी आ गई है, जिसके नतीजे में कई गांवों से सड़क राबता मुनकता हो गया है। कई सड़कों पर पानी के बहने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर है। मजीद तफसील हमारे रायपुर के नामा निगार से।
0: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के पानतोरा में तालिबात के रिहायशी स्कूल में पानी घुस जाने के बाद 50 से ज्यादा लड़कियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में कुछ स्कूलों में पानी भर जाने से आज तातील का ऐलान करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के वजीराला विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों और दीगर अफसरान को अलर्ट पर रहने और जरूरी एहतियाती इकदाम करने की हिदायत दी है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटे के लिए बालोद और कांकेर जिलों में शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए माहिर मौसमियात डॉक्टर गायत्री वानी ने कहा कि रायपुर, दुर्ग और जुनूबी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा से बात की और बालाई आसाम में तबाहकुन सैलाब के पस मंजर में जारी राहत सरगर्मियों का जायजा लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में आसाम के वजीर आला ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला ने जमीनी सूरत हाल से मुतालिक मालूमात हासिल की और यकीन दिलाया कि मरकज सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत, बहाली और तामीर नाव के लिए दरकार हर जरूरी मदद की फराहमी जारी रखेगा। इस दौरान ओडिशा में सैलाब से पैदा हुए हंगामी हालात में शिद्दत आ रही है, क्योंकि नदियों में सतह आब में इजाफे की वजह से हजारों

4 लाख लोगों के मुतासर होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी शदीद बारिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। और दौलत मुश्तरक खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही मुल्क के लिए तमगे यकीनी कर लिए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डीआर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। एक तरफ आसमान से बरसती जिंदगी तो दूसरी तरफ उसी बारिश का रौद्र रूप। कहीं किसान की आंखों में अच्छी फसल के सपने हैं तो कहीं बाढ़ का पानी घरों की चौखट लांघ चुका है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं शहर कुछ घंटों की बारिश में थम जा रहे हैं और कहीं एक मोबाइल पर आया छोटा सा मौसम अलर्ट हजारों जिंदगियां बचाने की उम्मीद बन जाता है। आज मॉनसून केवल एक मौसम नहीं रहा, ये विज्ञान की परीक्षा भी है, प्रशासन की तैयारी भी और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी। बदलते जलवायु परिदृश्य में मॉनसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं कुछ घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है तो कहीं लंबे समय तक वर्षा का इंतजार बना रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम आने वाले खतरों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? क्या हमारी चेतावनी प्रणाली, हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र और हमारी सामुदायिक तैयारी इस बदलती चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज होगी चर्चा। हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डीआर पटनायक, जो मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली के विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञ, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम चर्चा का विषय है में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: डॉक्टर पटनायक, शुरुआत आपके साथ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुल मॉनसूनी बारिश भले सामान्य रहे, लेकिन जिसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, यानी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं। आईएमडी अपने मेशो स्केल और अर्ली वार्निंग मॉडल्स को इस सूक्ष्म स्तर के पूर्वानुमान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरीके का अपडेट उसमें आया है, क्या नई तकनीक आई है और उसका कितना असर आप देख रहे हैं?
4: जैसे आपने पहले भी बताया कि ये क्लाइमेट चेंज जो बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर बढ़ रहा है। ये एक बहुत परिमाण में हमारा जितने सारे भी डाटा देखा गया है पिछला 100 साल 50 साल अगर हम देखेंगे तो ये जो जितना हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का इवेंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसलिए हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें जो मॉइस्चर है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसका काफी बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, और जब इंस्टेबिलिटी होता है तो वो हैवी डाउनपोर हो जाता है। इसलिए अगर पूरा रेनफॉल, अगर सीजन का मॉनसून सीजन जैसे जून टू सितंबर में अगर टोटल रेनफॉल अगर कंट्री एज ए होल अगर हम देखेंगे पिछले 30-40 साल में 50 साल में तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं दिखने को मिलता है। वो बहुत अच्छी बात है, हमारा एग्रीकल्चर देश है। लेकिन तो हमारा जो एग्रीकल्चर देश है उसमें क्या होगा कि ये तो हमको अच्छी बात है कि रेनफॉल जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। लेकिन जब हम टोटल रेनफॉल को हम डिवाइड कर देते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज्यादा एक दिन में अगर ऐसा होता है तो उसका अगर काउंट करेंगे तो वो सब दिन का बढ़ रहा है। तो आप जैसे सवाल किया कि हमारा प्रणाली में पिछले 5-10 साल में हमने क्या सुधार किया है जो कि उसका आलियन, तो हमने काफी हमारा इंप्रूवमेंट इसमें किया है। पहली तो बात यह है कि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इवेंट को पहले मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटर करने पर कि अगर कोई चीज क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ इस समय हो रहा है तो ये कि ऐसा इमीडिएटली अगर एक दिन में या 12 घंटा में दे देगा तो उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे? हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे हैं, सरफेस ऑब्जर्वेशन है, हम बैलून छोड़ते हैं, हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, राडार है, सैटेलाइट है, उसमें कंटिन्यूअसली हमारे पास आज 50 राडार है तो हमने इसमें से कंटिन्यूअसली हम देखते रहते हैं कि कोई ये मैंने कन्वेक्टिव क्लाउड बन रहा है क्या। उसके बाद ये जब हो जाता है तो इमीडिएटली हमने इसका सूचित करते हैं कि ये इसी एरिया

0: बहुत हैवी रेनफॉल होगा। दूसरा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल मॉडल, ये जो वेदर प्रेडिक्शन है खाली हम सैटेलाइट या रडार इमेज देख के हम फोरकास्ट नहीं देते, उसमें से नहीं होगा वो, थोड़े से थोड़े हमारा 2 घंटा 3 घंटा के लिए हम बता पाएंगे, लेकिन हम जब 5 दिन पहले कुछ बता रहे हैं कि 7 दिन पहले बता रहे हैं तो इस टाइप का इवेंट होने वाला है 2 दिन के बाद, इसके लिए हमें न्यूमेरिकल मॉडल चाहिए। तो न्यूमेरिकल मॉडल में हमने काफी इम्प्रूव किया है, हमारा सब जितना सारे डाटा अभी सैटेलाइट से AWS से सब आ रहा है वो मॉडल में जा रहा है, मॉडल में प्रोसेस हो रहा है, मॉडल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे पास सुपर कंप्यूटर आया है, सुपर कंप्यूटर क्यों इसलिए चाहे कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है जब वेदर प्रेडिक्शन करना पड़ता है, तो पावरफुल कंप्यूटर पहले नहीं था हमारा, अभी अभी हमने लाया है पावरफुल कंप्यूटर, क्योंकि अभी हमारे पास 20 पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा मशीन है, इसका चलते हुए हमारा जो मॉडल का जो भी है अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो इसलिए अर्ली वार्निंग जो मॉडल फोरकास्ट दे देगा तो हम अर्ली वार्निंग इसमें अच्छा से कर पा रहे हैं, और अर्ली वार्निंग के कारण चलते हमारा वार्निंग जो मैकेनिज्म बाद में, और एक चीज है ऑब्जर्वेशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक जो बोलते हैं हम जब एक डिसीजन लेते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजर को हेल्पफुल होगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजर खाली हम ये हो जाएगा कि ओडिशा में बारिश हो जाएगा ऐसा बोलने से उन्होंने पिन पॉइंट एक्शन नहीं ले पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में उसको हम स्टेट लेवल से फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर कौन सा सिटी लेवल में आते हैं, तो वो इतना फाइन ट्यून करने के लिए हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काफी मददगार होता है, और उसके लिए हमारा सैटेलाइट रडार के साथ साथ हमारा जितना भी मॉडल आउटपुट सब बन रहा है हमारा मॉडल, और हम कस्टमाइजली दूसरा मॉडल को भी यूटिलाइज करके हम एक कस्टमाइज फोरकास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल अभी जैसे ओडिशा में चल रहा है, ये काफी दिन से हमने रेड कलर वार्निंग दिया है, तो ये सब संभव है कि काफी जो ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग कम्युनिकेशन हमारा पर डाटा एसिमुलेशन न्यूमेरिकल मॉडल फिर हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये सारे कंबाइन अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इंडिया में डिपार्टमेंट, उसके चलते हुए हमारा ये फोरकास्ट एक्यूरेसी भी काफी इंप्रूव।
1: जी डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं मौसम विभाग की प्रणालियों में, जिससे कि जो पूर्वानुमान है वो 100% लगभग सही होने लगे हैं। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं कि जब भी भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी जारी होती है तो एक आम परिवार को अपने घर के स्तर पर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, खासकर अगर हम जैसे बात करें तो कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं अपने घर में, क्या उस तरीके से आपदा के लिए या भारी बारिश की चेतावनी बाढ़ की चेतावनी के लिए कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, और उसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए जो मुसीबत के समय जान बचा सकती है।
2: आनंद जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है, जब भी भारी बारिश की हम चेतावनी आती है तो जन समुदाय को तैयार रहने के लिए कहते हैं, न सिर्फ जन समुदाय बल्कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए जिन जिम्मेदार हैं उनको भी तैयार रहने को कहा जाता है। अक्सर एक आम व्यक्ति को या परिवार को जब भारी वर्षा की चेतावनी मिलती है उस समय सबसे पहले तो यही होता है कि आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर रास्ते में कहीं पर भी बाढ़ मिल सकती है, कहीं पुल टूट सकता है, कहीं रास्ते बह सकते हैं, और इस तरह की कई संभावनाएं आपदाओं की होती हैं जो भूस्खलन या बाढ़ या भूमि के खिसकने के रूप में दिखाई दे सकती हैं। तो इमरजेंसी में आपको एक तो टॉर्च, क्योंकि अक्सर जब भी भारी वर्षा होगी तो पावर सप्लाई ब्रेकआउट होगा, तो उस समय में आपको टॉर्च की एक आवश्यकता रहेगी, एक टॉर्च जरूर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको जरूरी है घर से बाहर निकलना तो आपको एक प्रॉपर अम्ब्रेला या रेनकोट वगैरह की जरूरत रहेगी, और इसके साथ में आप जो है कहीं पर अगर जा रहे हैं और कहीं मिट्टी या मलबे से क्रॉस करते हैं तो अगर आप डंडा या रस्सी भी साथ में रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो जरूरी आपकी दवाइयां वगैरह हैं जो सर्वाइवल किट्स में जरूरी होती हैं, वाइटल मेडिसिन, वो भी आपके पास उपलब्ध रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हो सकता है बाजार वगैरह भी खुले ना रहें, तो जो भी बारिश का समय होता है और पूरा चेतावनी आती है उसके अनुसार उस समय अवधि के लिए आपको पूर्ण तैयारियां अपने सर्वाइवल के लिए करके रखनी चाहिए। पहले से हम मॉक ड्रिल्स वगैरह करके रखते हैं, इवैक्यूएशन रूट का हमें पता है, कहीं पे फंस गए या रिक्तिकरण करना है तो कौन से सुरक्षित स्थल हैं या कौन से सुरक्षित भवन हैं जहां पर आप समय रहते हुए अपने बचाव के लिए जा सकते हैं, उनका भी आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आम व्यक्ति आजकल बारिश के सीजन में कहीं कहीं बाहर पर्वतीय स्थलों पर चले जाते हैं तो वहां पर बड़ा मतलब ध्यान से जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए भीड़भाड़ इलाके में या फिसलन वाले इलाके में नहीं जाएं।

0: और कहीं पर भी जैसे ज्यादा लोगों के जाने की संभावना है वहां जाने को आप अवॉइड करें, बचें, ताकि वहां पर भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की भगदड़ ना मच पाए। तो ये अक्सर होता है कि बारिश के टाइम पे मंदिर में या जो हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेज हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एकदम बारिश होती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है, उसकी वजह से भी कई बार डेथ्स हो जाती है। तो हमको तैयारी के लिए इमरजेंसी किट, जिसमें आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, वाइटल मेडिसिन होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास रस्सी या लाठी हो तो और अच्छा है, और अगर सीटी भी रखते हैं तो अच्छा रहता है दूसरों को सचेत करने के लिए या बुलाने के लिए।
1: डॉक्टर पटनायक, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मुंबई, दिल्ली और बाकी बहुत सारे महानगरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स में अर्बन फ्लडिंग की समस्या काफी देखने को मिली है। अब इन अर्बन फ्लडिंग्स को लेकर आईएमडी के फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सिस्टम, जिसे एफएफजीएस भी कहते हैं, उसका सटीक प्रभाव जमीनी स्तर पर नगर निगम और आपदा टीम तक कितनी तेजी से पहुंचाना संभव हुआ है? इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?
2: आजकल जो है अर्बन फ्लडिंग जो है एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे, जैसे अर्बनाइजेशन काफी हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है जिसमें कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है। तो जब सिटी में पहले इतना बारिश होता था तो ये इतना नोटिस नहीं हो रहा था, उसका पानी ठीक से निकल गया, ड्रेनेज सिस्टम है ये है, तो थोड़ा सा अगर बेहतर है तो उसमें से ये फ्लडिंग नहीं हो रहा। लेकिन आजकल क्या है, जब इंटेंस रेनफॉल इवेंट जब होते रहे, अगर 1 घंटा में कभी क्लाउड बस्ट टाइप का इवेंट, जो आपको भी पता है कि 1 घंटा में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाता है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट टाइप का भी बोलते हैं। तो ये है हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट जब होता है अर्बन में, तो इसमें ये अर्बन फ्लडिंग का समस्या आ रहा है। तो इसलिए अर्बन फ्लडिंग को हम, जो आप बता रहे हैं कि फास्ट फ्लड गाइडेंस सिस्टम हमारा जो एफएफजीएस है, ये एक डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन तरफ से है, ये इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारा जो इंडिया में है, हम सारे वाटर शेड रीजन के लिए हम ये अर्बन फ्लडिंग का एफएफजीएस है वो देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे एरिया के लिए भी हमारा सब मैपिंग हुआ है, तो जितना भी रेनफॉल हमको ऑब्जर्वेशन रेनफॉल मिल रहा है वो सारे उसमें आएगा। एंड उसके बाद वो जो सॉयल मॉइस्चर है, क्योंकि जब क्या होता है, जब सॉयल मॉइस्चर ऑलरेडी वेट है तो उसके बाद अगर बारिश हो जाता है तो उसका ड्रेनेज इतना जल्दी पानी निष्कासित नहीं हो पाता है, वो सब चीज उसी मॉडल में रहेगा एफएजीएस। और उसमें हमारा कितना रिस्क है ये एक तरह से हम गाइडेंस देते हैं। तो हर दिन हमारा सुबह भी बनता है, शाम को भी बनता है, 2 बार दिन में तो बन रहा है। तो अगले 6 घंटे के लिए देते हैं जो कि ऑब्जर्व रेनफॉल में कितना रिस्क है, और उसके बाद हमारा फोरकास्ट भी अगले 24 आवर्स में जो कहाँ कहाँ ये होने वाला है इसका देते हैं। आज जैसे कि अभी हमने मानसून डिप्रेशन चल रहा है, अभी ओडिशा में काफी किसी जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी हुआ है, 250 बहुत जगह में ओडिशा के इंटीरियर ओडिशा में। तो हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम में हमने इंडिकेट किया था इसमें, जैसे कि अभी फिर छत्तीसगढ़ जाएगा। तो ये एक जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है ये आपको कम टाइम में हमको जो वार्निंग है रेनफॉल को ट्रांसलेट करके, खाली रेनफॉल कितना होगा ये इतना सफिशियंट नहीं, रेनफॉल जो होगा उसके बाद बाकी सॉयल मॉइस्चर को भी देखा जाएगा, बाकी उसका कितना ड्रेनेज इसमें है, सॉयल मॉइस्चर का क्वालिटी है, अभी कितना वेट है, वो सब कंसीडर करके फ्लैश फ्लड। तो वही गाइडेंस जो हम दे रहे हैं ये काफी हद तक यूजफुल है। ऑलरेडी अर्ली वार्निंग हमने दे दिया, हैवी रेनफॉल या वेरी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दे दिया, तो फिर हम जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस भी उसके साथ साथ इमीडिएटली देते हैं कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा एरिया है, कौन सा वाटर शेड है जिसमें कि फ्लैश फ्लड गाइडेंस का रिस्क ज्यादा है।
1: इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसा डॉक्टर पटनायक बता रहे थे कि शहरों में जो कम समय में ज्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है, सूर्य प्रकाश जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब शहरों में जल भराव होता है तो अक्सर रास्तों पर चलने या बिजली के खंभों के पास जाने से हादसे हो जाते हैं, ऐसे जल भराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे कि सड़क पर निकलते समय और घरों के भीतर किन बुनियादी सावधानियों का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी वो जागरूक कर सकें?
0: आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ ये समस्याएं होती हैं शहरी क्षेत्रों में कि जो अवसंरचनाएं हैं, जो हमारी पावर लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, वो भी कई बार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या प्रभावित होती हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डेथ्स होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सभी को जो भी घर से बाहर हों, अगर सड़क पर हैं, तो ये ध्यान रखें किसी भी ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पोल या लाइव वायर्स के नीचे से ये ना क्रॉस करें और किसी तरह का रिस्क ना लें अगर वो पैदल भी चल रहे हों। दूसरा, अगर घर में आप रह रहे हैं तो जो भूतल पर रहते हैं उनके घरों में भी बाढ़ का पानी आ जाता है, भर जाता है और

कई बार उनका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम भी बिल्कुल भूतल पर ही होता है, जो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है कई बार, तो उससे को अगर हमने स्विच ऑफ नहीं किया तो उससे भी करंट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप जो है अपना मेन कंट्रोल रूम जो है या स्विच है उसको हमेशा ऑफ कर दीजिए, ताकि पावर कंटिन्यूटी की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट लगने के खतरे कम से कम हो जाए। और दूसरा, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो सब पासिस हैं या अंडरवेज हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबवेज में कई बार लो लाइंग एरिया होता है और काफी पानी भर जाता है जिसका अंदाजा हमें नहीं लगता है, तो ऐसे में भी डूबने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये दो बड़े प्रिकॉशन हैं जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी भी पानी के भराव

0: देने की जरूरत है कि आप किसी भी पानी के भराव क्षेत्र में बिना अंदाज लगाए और अनुमान के आप कहीं भी उसमें एंटर ना करें। और दूसरा, पावर सप्लाईज और करंट्स का हमेशा ध्यान रखें कि उनसे दूर रहें, बच के रहें, और कोई भी ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी को करंट लग सके। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसके अलावा ये कह रहा था कि गैस सप्लाई का भी है, हमारे यहाँ पीएनजी है दिल्ली में, जैसे उसमें भी कई बार लीकेज या कुछ चांसेस हो सकते हैं, तो उन चीजों का भी ध्यान रखें कि गैस सिलेंडर वगैरह या आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो भी आप जो है भराव वाले क्षेत्र से ऊपर रखें, मतलब जितना अगर आप ऊंचाई पर रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगी वो चीजें।
1: डॉक्टर पटनायक, अगर आपसे ये समझने की कोशिश करें कि हाल के वर्षों में डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क काफी बढ़ा है और मौसम के सटीक और नाउकास्टिंग का मतलब तत्काल पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रडार तकनीक से जो सुधार आया है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत का सुधार आप देखते हैं और इससे आम जनमानस को कितना फायदा हो रहा है, किसानों के लिए ये कितनी राहत की बात है और सरकारी तंत्र इससे किस तरह लाभान्वित हो रहा है।
2: देखिए, ये अभी जो आप बताए कि डॉपलर राडार हमारा काफी नेटवर्क बढ़ गया है, अभी हम अगर 2014-15 में जो 15-20 राडार के नीचे ही था उसमें, आज हमारा 50 राडार के आसपास आ गया। तो ये डॉपलर राडार में क्या हो रहा है कि जब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है तो सारे जगह में हम जब रडार रखेंगे तो उसका 300 किलोमीटर का भी 400 किलोमीटर इफेक्टिवली 200 किलोमीटर ये रेंज में रडार जो है, कोई भी कन्वेक्टिव सेल जो है जो कि ये हैवी रेनफॉल जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट को जो देता है उसको मॉनिटर करने के लिए रडार एक बहुत उपयोगी है। तो पर्टिकुलरली जब हम जो जगह में जो हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन का कोई मैकेनिज्म है नहीं, जैसे पहाड़ी एरिया में, उत्तराखंड एरिया, ये एरिया में भी वो रडार जो बहुत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि उसको मॉनिटर करेंगे। जैसे आपने पता नाव कास्टिंग, तो ये रडार डाटा लेके हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नाव कास्टिंग देते हैं, अभी हर 3 घंटा में हम अपना नावकास्ट देते हैं और अपडेट करते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर कोई भी खतरा है तो उसमें रेड कलर वार्निंग दिया जाता है। तो जैसे कि आजकल ये हो रहा है कि आकाशीय बिजली में बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, मैंने बहुत सारे कैजुअलिटी जो डेथ हो रहा है आकाशीय बिजली में होता है। तो ये मानसून टाइम में जो क्लाउड होता है, क्लाउड टू क्लाउड भी बिजली होता है, क्लाउड टू ग्राउंड भी बिजली होता है, तो जो क्लाउड टू ग्राउंड वाला जो बिजली स्ट्राइक होता है उसमें बहुत सारा जानमान का क्षति होता है। तो ये जो लाइटनिंग जो स्ट्राइक हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसमें हमारा नावकास्टिंग काफी हेल्पफुल है। तो हमने पहले इतना हमारा नहीं था, जो नावकास्टिंग में हमने जितना इम्प्रूवमेंट किया है, तो रडार नेटवर्क के चलते हमारे पास जो आपने और भी बताया AI ML भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, उसको भी हम यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर सेल जो कन्वेक्टिव सेल बनते हैं रडार में दिखता है वो धीरे धीरे मूव होता है। वो अगर 2 घंटा पहले अगर इसी जगह में है तो ये हमारे दिल्ली की तरफ आ रहा है, 2 घंटा के बाद यहाँ हो जाएगा, तो हमने 2 घंटा पहले ही वार्निंग दे देते। तो ये छोटा सा शॉर्ट टर्म में जो वार्निंग भी है काफी हद तक जो पॉपुलर सिटी है इसमें के लिए भी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि लोग ट्रैफिक जाम हो जाता है, आप जैसे देखे होंगे कि बारिश के कारण। तो ये सब चीज के लिए हमारा रडार जो नेटवर्क, रडार जो इंटेंसिटी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं रडार रिलेटेड, वो सब यूजफुल होता है। और दूसरी बात, जो गांव के लिए भी जो खेती में भी काम करते हैं वो एक्सपोज होते हैं, तो उसको लाइटनिंग का भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा 2 घंटा पहले भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होने का अगर संभावना अगर बताया जाता है तो वो क्या करते हैं कि उस जो सेफ एरिया में चले जाते हैं। तो वो सब चीज ये एक हिस्सा में काफी मदद करता है हमारा रडार एंड उसका जो हमारा जो टेक्निक है।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक बता रहे हैं कि थंडर स्ट्रॉम को लेकर भी जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि लोग सेफ जगह पर चले जाएं। आपसे इसी विषय पर समझना चाहते हैं कि जो सुरक्षित जगह है उसको लेकर भी बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो खुले में हैं तो किसी टीन शेड के नीचे चले जाएं या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगे। जो किसान खेतों में रहते हैं वो कहां जाएं, चूंकि आसपास कोई छिपने की जगह नहीं होती है, पक्की छत नहीं होती है, तो वो क्या करें। और एक और बड़ा मिथ है, जो लोग समझते हैं कि वो घर में हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, वो घर में हैं, वो सुरक्षित हैं। तीनों ही स्थितियों के लिए आप आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे?
0: बहुत ही संबंधित सवाल है, क्योंकि जब भी हमारे भारी वर्षा होती है उसके साथ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग, ये दोनों इवेंट्स भी अक्सर होती हैं, पर्टिकुलरली क्लाउड वर्स के टाइम पर। तो उस समय में बड़े ये ध्यान देने की बात है कि आप अगर खेत में हैं किसान लोग, तो वो पेड़ तले ना जाएं। पेड़ तले बिजली लगने की जगह घटनाएं ज्यादा होती हैं, और अगर आप खुले मैदान में दोनों पैर एक साथ इकट्ठे करके

0: उड़कू बैठ जाते हैं, जैसे मुर्गा बैठता है, तो उसमें करंट लगने की घटनाएं कम होती हैं। लाइटनिंग से हमारे यहाँ काफी डेथ्स होती रही हैं, और इसकी मेन वजह, जैसे आपने कहा कि आप टीन शेड के नीचे चले गए, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल है, तो वहां पर करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है। अगर ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और आपके जरिए अगर करंट पास करता है, तो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं छाता ले लें, पेड़ के नीचे चले जाएं, तो हम सेफ हैं। परंतु ऐसे में सेफ्टी आपके एक्शन पर है कि आप अगर उस समय में खुले में हैं और पास में नजदीक कोई सेफ शेल्टर नहीं है, तो आपको वहीं पर उकड़ू दोनों पैर जोड़ के बैठना चाहिए, ताकि आपके बॉडी के थ्रू मिनिमम लेवल से करंट पास हो और सीधा ग्राउंड में चला जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन होती है। और दूसरा, शहरों की हम बात कर रहे हैं, शहरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हम बहुत यूज करते हैं। जब भी लाइटनिंग होती है, तो उसमें अक्सर ये संभावना होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के जरिए जो लाइटनिंग का करंट फ्लो कर जाए, और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी फेल हो सकते हैं। तो कभी भी लाइटनिंग होती है, तो उसमें अक्सर हमें प्लग्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निकाल देना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि घर में लाइटनिंग की वजह से कोई करंट का प्रवाह ना हो। तो ये दोनों प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। और अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं, तो भी आप सेफ साइड में होकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, ताकि आपको करंट की संभावना कम से कम रहे।
1: डॉक्टर पटनायक, आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों में इस समय मॉनसून की वर्तमान स्थिति अलग अलग है। अगले 15 दिनों या अगले 1 महीने की हम बात करें, तो भारत के कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए अगर समझा पाए आप कि मॉनसून की क्या स्थिति रहने वाली है।
2: आज तो 29 जुलाई है, आज अगर हम देखेंगे तो एक मानसून टाइम में जो बारिश देता है, मानसून डिप्रेशन सिस्टम जो है, बे ऑफ बंगाल के से होते हुए उड़ीसा, उड़ीसा के बाद इंटीरियर उड़ीसा, थोड़ा सा झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ की तरफ मूव हो रहा है। तो आज अभी वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के तरफ भी एंटर हो रहा है। इससे चलते काफी जो वेस्टर्न ओडिशा में है, इंटीरियर ओडिशा में आज जो है रिपोर्ट हो गया, बहुत बारिश रिपोर्ट हुआ है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो गया है, कुछ कुछ जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी ज्यादा हुआ है, उससे भी ज्यादा हुआ है। बहुत सारे स्टेशन में है 200 से भी ज्यादा रेनफॉल हुआ है, तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है। तो ये एक बहुत हैवी रेनफॉल जो है वहाँ उसी एरिया में काफी फ्लडिंग उसके भी चलते, और वो थोड़ा सा वेस्टवर्ड जाएगा तो छत्तीसगढ़ एरिया में भी हमने चेतावनी दिया है, थोड़ा सा विदर्भा एरिया में भी चेतावनी दिए हैं। तो ये जो अभी एक्टिव जो मानसून सेंट्रल इंडिया मध्य भाग में है, एक दो दिन चलेगा वो, जब तक ये सिस्टम थोड़ा सा वीक ना हो जाए। तब जब ये उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि मानसून ट्रफ ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में भी थोड़ा सा बारिश होगा। जुलाई महीना एंड होने वाला है, जुलाई तो आप रेनी मंथ है, आपको पता है जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश जो होता है हमारा मानसून सीजन में जुलाई महीना में होता है। और इस बार भी जुलाई खराब नहीं हुआ है, जुलाई अच्छा हुआ है। 1 जुलाई से अगर आज दिन तक देखेंगे तो हमारा जस्ट 1% रेनफॉल कम हुआ है, जून में हमारा 38% कम हुआ था। तो जुलाई में इतना कम होने के कारण आज के डेट में हम जो कंट्री का रेनफॉल है, 1 जून से अगर हम 28 जुलाई का मानेंगे, तो लगभग 15-25 दिन थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि जो जून में जो कम हुआ था वो हमको जुलाई में काफी हद तक मेकअप हो गया है। लेकिन आप यस जो जैसा बता रहे हैं कि रेनफॉल जब देता है तो आपका हैवी रेनफॉल देता है, बाढ़ वगैरह भी सीमित आता है। और दूसरा, अगले महीने के हर दिन हम फोरकास्ट करते हैं 7 दिन के लिए, जैसे कि वार्निंग देते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन महीने का जो फोरकास्ट है हम वो महीने में एंड में करेंगे। जुलाई का एंड में अभी आ गया है, तो 31 जुलाई को हम अगस्त के लिए ओवरऑल एक फोरकास्ट भी बनाएंगे कि अगस्त मंथ कैसे रहने वाला है। और बाकी हमारा जो रेगुलर फोरकास्ट है हर दिन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चाहिए सिस्टम वगैरह, वार्निंग वगैरह, वो देते रहेंगे। एंड हर हफ्ते अगर गुरुवार को हमने एक 4 हफ्ते का फोरकास्ट भी देते हैं, तो वो भी हमारे आने वाले गुरुवार को ये हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर हम मंथली फोरकास्ट भी देते हैं। तो इसीलिए हमारे जो फोरकास्ट है सारा डिफरेंट टाइम स्केल के देंगे। अभी अभी फिलहाल मानसून अगर कंट्री एज हो लगा देखेंगे, आज तक थोड़ा सा मानसून रेनफॉल कम हुआ है, 15% कम रेनफॉल हुआ है।
1: सूर्य प्रकाश जी, आकाशवाणी के इन कार्यक्रमों की कोशिश यही होती है कि श्रोताओं की जिज्ञासाओं को हम समाधान करें और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान भी उन तक पहुंचाएं। मॉनसून में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में यात्रा करना पसंद करते हैं, आपने भी कुछ समय पहले उसका जिक्र किया था, वहां अचानक लैंडस्लाइड आ जाती है या फ्लैश फ्लड का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सैलानियों या स्थानीय लोग जो वहां की यात्रा की योजना बना रहे हैं या जो वहां हैं, फंस जाने की स्थिति में तुरंत क्या सुरक्षात्मक कदम वो उठाएं?
0: भूस्खलन काफी मात्रा में और कई जगहों पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, और उसकी जब भी ऐसा घटना में आप अगर उसमें फंस जाते हैं,

0: तो सबसे पहला तो ये कि आप अपना बचाव के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फंस गए हैं तो अगर गाड़ी में हैं तो गाड़ी को जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है उससे या तो पहले रोक दें या तुरंत आगे जा निकलने के बाद ही रोकें, बीच में नहीं रोकेंगे। ऐसे में भूस्खलन में दबने की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गाड़ी भूस्खलन क्षेत्र में खड़ी रहती है। दूसरा, अगर आप पैदल जा रहे हैं और अगर कहीं पर भूस्खलन में आप फंस जाते हैं तो आपको नियरेस्ट जो सुरक्षित बाउंड्री है उसकी तरफ जाना चाहिए, आप स्लोप एरिया में, नीचे की तरफ नहीं। लोग, आपने देखा होगा अभी जो पीछे रैली में हुआ था, लोग नीचे की तरफ भाग रहे थे, जिधर भूस्खलन चल रहा था उधर ही उसी दिशा में लोग भी भाग रहे थे, तो ऐसे में दबने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, अगर आप दर्शक हैं और आप देख रहे हैं कि कोई फंस गया है या कोई गाड़ी फंस गई है तो तुरंत हमें 112 112 पर फोन कर देना चाहिए ताकि सहायता करने वाले जो हमारे आपदा मोचन बल के कर्मी हैं वो वहां पहुंच जाएं और समय पर उनको रेस्क्यू कर पाएं। तो ये सब चीजों का ध्यान बहुत देना जरूरी है। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जो है, भूस्खलन में ज्यादातर कैजुअलिटीज दो वजह से होती हैं। एक, कोई पत्थर सिर पे आके गिर गया, हेड इंजरी हो जाती है। तो आपको जैसे भूकंप में हम हेड को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ही भूस्खलन में भी अगर आपदा में फंस जाते हैं तो अपने सिर को हमेशा बचा के रखें, उस सिर पे हाथ डाल लें या कोई और कुछ रख लें ताकि आपको हेड इंजरी नहीं हो। दूसरा, अगर मलबे में फंस जाते हैं तो मलबे में एक हम कहते हैं एस्फिक्सिएशन होता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर मलबा चला जाता है और आपको सांस लेने के लिए दिक्कत आने लग जाती है और उसकी वजह से डेथ्स होती हैं। तो ऐसे में कभी भी ऐसा हो तो आपको हमेशा अपना अंदाज लगाना है कि आप कैसे फंसे हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं। अगर आप थूकेंगे तो ग्रेविटी से थूक हमेशा आपकी ठोड़ी की तरफ आएगा, और अगर नाक की तरफ जा रहा है इसका मतलब आप उल्टे हो गए हैं। भूस्खलन में फंसने में कई बार अपने घर में है और घर पूरा उलट पलट जाता है भूस्खलन के दौरान, तो पहले तो अपनी परिस्थिति की जानकारी लेनी है कि हम सही दिशा में ऊपर की तरफ है या उलट गए हैं। तो ऐसे कई सारे प्रिकॉशंस को हमें देना है और ध्यान रखना है ताकि घबराहट ना हो और आप अपने बचाव के लिए उपाय कर पाए। इससे पूर्व आपको उनके संकेत भी देखने हैं। भूस्खलन जब भी शुरू होता है वर्षा के दौरान, जो पानी की वजह से भूस्खलन होते हैं, वो अक्सर पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती है फिर बड़े पत्थर खिसकते हैं। तो अगर कहीं से ऐसे मिट्टी खिसक रही है और बह रही है और आ रही है तो हमेशा हम उस क्षेत्र में ध्यान पूर्वक जाएं, और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी जहां जहां ऐसा भूस्खलन का खतरा होता है वहां पे बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ भूस्खलन या भूदशाव की संभावनाएं हैं, तो उन क्षेत्र में वर्षा के दौरान जाने के लिए कोशिश ना करें। यही हमारे बचाव के उपाय हैं।
1: मानसून सिर्फ बादलों का बरसना भर नहीं है, यह हमारे मिट्टी की सौंधी महक है, हमारे किसानों की उम्मीद है और हमारी नदियों की रवानी है। लेकिन प्रकृति जब अपनी रौ में आती है तो एक बात हमें साफ समझा जाती है कि तैयारी ही बचाव है और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है कि मौसम विज्ञान की सटीक तकनीक और आपदा प्रबंधन की मुस्तैदी तब तक अधूरी है जब तक हम और आप एक सजग नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जरा सी सावधानी, सही जानकारी और आपदा के समय एक दूसरे का थमा हुआ हाथ किसी का घर बहने से बचा सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर पटनायक आपका, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश आपका बहुत बहुत आभार।
2: नमस्कार।
0: धन्यवाद आपका भी।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे मैं हूं ना फिल्म का गीत, अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाजों में। जावेद अख्तर के गीत रचना को संगीत दिया था अनु मलिक ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है कर्ज फिल्म से, आइए सुनते हैं।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

कर्ज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मैंने प्यार किया, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। गीत रचना असद भोपाली की, संगीत राम लक्ष्मण का है।

मैंने प्यार किया, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम के स्वर में। गीत रचना असद भोपाली की थी, संगीत राम लक्ष्मण का। डिस्को डांसर फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। अनजान की गीत रचना को संगीत दिया है बप्पी लाहिरी ने, आवाज पार्वती खान की है।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने, आवाजें दी हैं अनुराधा पोडवाल और बाबला मेहता ने, गीत में संगीत नदीम श्रवण का है।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। समीर के गीत को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी रेडियो सखी पुष्पा शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नीतू गुप्ता का सितार पर बजाया राग पूरिया कल्याण। आपके साथ तबले पर संगत की है अर्चना श्रीवास्तव ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नीतू गुप्ता का सितार पर बजाया राग पूरिया कल्याण। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।

सभी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष

0: विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एयरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एयरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश।
2: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।